अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वरंजनी में फैयाज वसीफुद्दीन डागर का राग भटियार में द्रुपद गायन। स्वरंजनी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण

महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं सुरेश वाडेकर के इस गीत के साथ।

0: अभी आपने भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का आनंद लिया। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम। आकाशवाणी का यह दिल्ली केंद्र है। आज के चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र सुनील शास्त्री जी से उनके पिताजी के जीवन से कुछ प्रसंग।
1: जब देश के अनाज की कमी थी तो उन्होंने कहा, अपने हमारे MS स्वामीनाथन जी से पूछा कि भाई इस समस्या को कैसे हल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि साहब हम थोड़ा सा समय लगेगा, हम बताते हैं फिर आपको। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद उन्होंने बाबूजी को बताया कि अगर देश में हर परिवार से लोग जो हैं एक दिन पूरे हफ्ते में नहीं वाला एक दिन हफ्ते में खाना ना खाएं रात्रि के समय, तो हम लोग इस अनाज के संकट से लड़ाई लड़ सकते हैं और जीतेंगे। तो बाबूजी के ऊपर जब यह बोला तो बाबूजी ने कहा कैसे होगा बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि हर परिवार में से लोग आगे आएं और एक समय का भोजन छोड़ें। तो बाबूजी ने कहने से पहले लोगों से उन्होंने परिवार पर बात को लागू किया और उन्होंने हम लोग को सबको कहा कि आज हम लोग सब बैठ कर एक साथ खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। हम लोग बड़े खुश थे और बाबूजी के साथ कब मिलता था मौका, तो हम लोग को मिला मौका तो हम लोग बैठ गए और मुझे तो बाबूजी ने अपने बगल में बुला बैठा लिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे हम सोच रहे हैं कल से एक हफ्ते तक रात्रि के समय भोजन नहीं बनेगा घर में। तो मैंने कहा क्यों बाबूजी? तो उन्होंने कहा कि बस कुछ करना है, सोच रहा हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, आप कहेंगे तो हम करेंगे। सुनील तुमसे बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि तुम मेरी बात मानोगे। और तो मैंने कहा बिल्कुल मैं मानूंगा आपकी और एक हफ्ते नहीं खाएंगे। आपने कहा नहीं जाऊँगा। तो जानते थे कि मैं रोज़ कहीं ना कहीं चला जाता था दोस्त मित्रों के यहाँ, तो लोग कहाँ खाता था। उनका कि सुनील को पहले रोको, कहीं जाए ना बाहर। तो एक हफ्ते तक पूरा शास्त्री परिवार बिना रात्रि में बिना भोजन के

0: छुआ, बच्चों लोग जो छोटे थे, छोटे औरतें, उनको थोड़ा सा दूध
1: जी
0: फल वगैरह से दे दिया, लेकिन बाकी सब लोग बिल्कुल उपवास किया। तो जब एक हफ्ता हो गया, उसके बाद बाबूजी ने ये सोचा कि जब मेरा परिवार एक हफ्ते तक बिना अनाज के रह सकता है, अन्न के रह सकता है, तो हफ्ते में केवल एक दिन, अगर हम सोमवार के लिए कहें, एक दिन रात्रि में भोजन ना करें लोग, तो उसको अपील कर सकता हूँ। तो ये मैं कहूँगा बिल्कुल गांधी जी के सच्चे अनुयायी के रूप में बाबूजी ने इसको अपनाया। उन्होंने एक हफ्ते तक हम लोगों को भूखा रखा, फिर देश के लोगों से जब अपील किया तो पूरा देश खड़ा हुआ और मजबूती के साथ खड़ा हुआ। एक छोटे से छोटे ढाबे वाले ने, चाय की दुकान ने सोमवार को शाम को अपना दुकान बंद कर दी, अपने कुछ कर दिया। कहीं पर भी किसी ने अनाज का प्रयोग नहीं किया, अन्न का प्रयोग। तो इस तरह से वही बड़ी भारी एक संकट से हमारा देश उभरा। फिर बाबूजी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि उनका कहना था जवान तो हमारे सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह से किसान जो है देश के अंदर दूसरी लड़ाई चल रही है भुखमरी के खिलाफ, उसके खिलाफ अगर कोई हमारे लिए लड़ता है तो किसान लड़ता है। तो जवान का अगर हम जय जयकार करेंगे तो उसी तरह हम से किसान की भी जय जयकार करेंगे। और ये बात बिल्कुल सच ही निकली कि उन्होंने जो कहा, तो लोगों ने अपने छोटे छोटी जमीनों पर भी खेती की, फल उगाया, सब्जियों को उगाया। बाबूजी उदाहरण है उनके, तो अब देखें हीरा मोती जो हल थे, बाबूजी ने उसी से हल चलाकर अपने प्रधानमंत्री आवास का, एक जहाँ पे हरे भरी घास थी उसको हटाकर उन्होंने वहाँ पे खेती की बात, तो उन्होंने प्रेरणा भी लोगों को बहुत दी। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा भारी योगदान। बाबूजी बहुत सरल व्यक्ति थे, बहुत शानदार व्यक्ति थे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जो आधारित था लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रसंग पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड का भाग 65।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड का 65वां भाग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी समारोहे सहभागं करिष्यति। सः अस्मिन् अवसरे आयोजितं कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनांकात् प्रारब्धानां आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापन सूचकः भविष्यति। 26-1900 वर्षे संघलोकसेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्षपूर्ति अवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति। श्रीमोदी संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी स्मारक नाणकम् अथ स्मारक प्रैष्य चटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति। मंत्रिमण्डलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रबी विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुं अनुमोदनं प्रदत्तम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्युत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयम् गृहीतः।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75.6 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13.4, चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्। एतदतिरिच्य मंत्रिमण्डलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 35.1 गीगावाट् परिमितस्य

0: नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक केरलम माहे आंतरिक कर्णाटक तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता। ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा प्रदेशेषु अपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता। विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा आंतरिक कर्णाटक उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय प्रदेशेषु अपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापान देशे प्रवर्तमानास् एशिया क्रीडास् भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन चत्वारि सुवर्ण पदकानि प्राप्तानि। अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य षष्टिः अभवत्, यस्मिन् दश सुवर्ण पदकानि एकविंशति रजत पदकानि तथा एकोनत्रिंशत् कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंकः पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। तत्रैव स्क्वॉश क्रीडायां भारतस्य पुरुष दलं महिला दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टे, येन भारताय द्वे अन्ये पदके सुनिश्चिते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रीडांगणे आयोजितायाः त्रिस्पर्धायाः एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयायां स्पर्धायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं 8-0 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, UPSC के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
2: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
3: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रूपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रूपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रूपए प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DAD के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ

0: बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में मदद की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल कार्ज ने इस घटना को एक गंभीर घटना और संदिग्ध आतंकवादी हमला बताया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों और पुदुचेरी में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. He will also address the gathering on the occasion. A report.
2: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the Union Public Service Commission in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials and others. This event is part of the two-day program being held by UPSC. Yesterday, on the first day, Shatabdi Samaroh Manthan was held at Bharat Mandapam. Eminent speakers addressed the event and it was followed by panel discussions on various themes. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support price, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for sunflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal. The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System ITMS project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor GEC Phase 3 scheme. Defence Minister Rajnath Singh will attend the 279th Annual Day of the Defence Accounts Department, DAD, in New Delhi today. On the occasion, the Defence Minister is scheduled to launch various IT initiatives of DAD. These include the integration of the Indian Army Finance

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुनते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun।
0: गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी अपनी अल्पना। खूबसूरत मौसम और हाथ में प्याली चाय की उन चुस्कियों के साथ शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम की।

यहाँ साथियों, मौसम का जादू और भी खूबसूरत हो जाता है जब आप सुबह सुबह मुस्कुराते हुए उठें और दूसरों को खुशियाँ बांटें। जी हाँ, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट एक ऐसी आपके पास कीमती वस्तु है जो अगर किसी की तरफ आप देंगे तो कोई भी प्यार से आपकी हर बात मान लेगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही आपका हथियार है, इतना बड़ा हथियार है कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी बात मनवा सकते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, हर पल जिंदगी का खुशियों से जी लीजिए, यही तो है जिंदगी। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत है, फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई।

साथी उस ज़िंदगी कैसी हंसी ख्वाब है जिसमें कि मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप मुस्कुरा के मिलते तो आपकी ज़िंदगी और भी आसान और भी खूबसूरत हो जाती है। जीने का बस यही अंदाज़ होना चाहिए कि हंस कर उनसे मिलो और हर गलत चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है, चुना है हमने फिल्म प्यार में कभी कभी से। आवाज़ है शान की।

जाती हूँ, जहाँ अपनों का साथ मिल जाए वहीं ज़िंदगी मुस्कुराना सीख जाती है। और अगर थोड़ी सी, कहते हैं ना, थोड़ी सी हंसी रख ली मैंने जेब में और हर गम छोटा लगने लगा ज़िंदगी में। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। आवाज़ है निखिल पॉल की और फिल्म है बर्फी।

साथियों, हर सुबह हमें याद दिलाती है कि बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज का दिन आपके पूरी तरह से हाथ में है। तो ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को, अपने सफ़र को कैसा बनाना चाहेंगे, उसे और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए और मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को जीने का सबक सीखिए। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं मोहित चौहान।

साथियों, हर सुबह खुद को एक नई उम्मीद दीजिए। जो भी सोचा है उसे पूरा करने में अपनी सारी ताकत लगा दीजिए। जी हाँ, क्योंकि हर सुबह एक रोशनी लेकर आती है नए ख्वाबों को, आपके उन ख्वाबों, आपकी उम्मीदों को कामयाब बनाने के लिए। बस राह आपको चुननी होती है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है। बस उतार चढ़ाव तो जिंदगी के दो पहलू हैं जो कि होते ही रहते हैं। देखिए कैसे समय बीत गया और वक्त ऐसे भागता है, दिन का भी और हमारी ज़िंदगी का भी। और चलते चलते एक बहुत ही प्यारा गीत आपको सुनवाने जा रही हूँ, और कुमार सानू की आवाज़ अलका याग्निक की आवाज़ में है, लेकिन अपनी दोस्त अल्पना को इजाज़त दीजिए। छोड़ जा रही हूँ इस प्यारे से गीत के साथ आपके अपने कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार सुनिए। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर राज्य पारेषण प्रणाली

0: मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
1: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
2: आयुष्मान भारत पीएम जय,
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन

0: नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
1: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
2: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
3: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
2: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूपीएससी की सालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकजी काबीना ने 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी की फसलों के वास्ते कम अज कम इमदादी कीमतों में इजाफा किया है। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरूएकार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कबल पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के इम्कान को रद्द कर दिया है और मुतवाजन रवैये की वकालत की है। सऊदी अरब के हुकाम ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने पर भारतीय पायलट स्मिथ मछार को हकीकी हीरो करार दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सत्साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: ये प्रोग्राम साल भर जारी रहने वाली उन तकरीबात के अख्तिताम की अलामत होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर को 1926 में यूपीएससी के क्याम के 100 साल मुकम्मल होने की याद में शुरू हुई थी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूपीएससी का सद साला यादगारी सिक्का, एक यादगारी डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया उनवान से एक किताब का इजरा करेंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे जिनमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अराकीन, भारतीय हुकूमत के सीनियर हुकाम, माहिरीन तालीम, यूपीएससी के हुकाम और दीगर शामिल हैं। ये तकरीब यूपीएससी की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली 2 रोज़ा तकरीब का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन का इनेकाद किया गया था। मुमताज मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब किया जिसके बाद मुख्तलिफ मौजूआत पर पैनल मुबाहसे हुए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि MSP में सबसे ज्यादा इजाफा जाफरान की कीमत में 675 रुपये फी क्विंटल किया गया है। इसके बाद राई और सरसों की कीमतों में 413 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP

0: बीपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: वजीर मौसूफ ने कहा कि मसूर दाल की कीमत में 390 रुपए फी क्विंटल, जौ की कीमत में 136 रुपए फी क्विंटल, चने की कीमत में 83 रुपए फी क्विंटल और गेहूं की कीमत में 25 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने दिल्ली पुलिस के जरिए ट्रैफिक के बंदोबस्त के इंटेलिजेंट निजाम ITMS प्रोजेक्ट के नफाज को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 1,789 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इसमें टैक्स भी शामिल है। जनाब अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि काबीना ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC के तीसरे मरहले के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। कानों के महकमे की वजारत आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। वजारत ने कहा है कि ये साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरुएकार लाने और इन वसाइल की तवील मुद्दती यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने की समत ये एक अहम कदम है। ये नीलामी अंडमान के बहरी खित्ते में साहिल समंदर दो मादनियाती ब्लॉकों पर मुश्तमिल है जो मखलूत लाइसेंस देने के लिए होगी। वजारत ने इस बात को उजागर किया है कि उम्मीद है कि इससे मुनज्जम तलाश की हौसला अफजाई, सरमायाकारी को रागिब करने और साहिली इलाकों में मादनियात की तलाश और उनके फरोग के लिए जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजी इख्तियार किए जाने को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कबल पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के इम्कान को रद्द कर दिया है और मुतवाजन रवैये की वकालत की है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PB वराले पर मुश्तमिल एक बेंच ने यह इंदिया दिया है कि वो दिवाली के दौरान बाज पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत देगी, लेकिन इसके लिए मखसूस वक्त की हद नाफिज की जाएगी। इस तरह अदालत आलिया ने मुकम्मल पाबंदी और बेरोक टोक पटाखे छोड़ने दोनों के इम्कान को रद्द कर दिया है। अदालत ने मजहबी जज्बात और फजाई आलूदगी के नुकसानदेह असरात के दरमियान तवाजुन कायम रखने की जरूरत पर जोर दिया है। अदालत आलिया ने कहा कि मुकम्मल पाबंदी आयद करने से दिवाली मनाने वाले लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है, जबकि पूरे दिन पटाखे छोड़ने से माहौलियात और बच्चों, बुजुर्ग अफराद और बीमार लोगों समेत हसास तबीयत के अफराद पर नामुवाफिक असर पड़ेगा। अदालत आलिया शदीद फजाई आलूदगी के दिनों में दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते और दीगर शिमाली रियासतों में पटाखों पर बंदिश से मुतालिक तवील अरसे से जेर इल्तवा मामले की समाअत कर रही थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सऊदी अरब के हुक्काम ने ओमान से ताल्लुक रखने वाले उस को पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दुबई से इसराइल के शहर तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज के कैप्टन को चाकू मारकर जख्मी करने के बाद हवाई जहाज को गिराने की कोशिश की। ओमान के कोपायलट ने जहाज के कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया। दो मिनट में ही तैयारा तकरीबन 17,400 फीट नीचे आ गया। ताहम मुसाफिरों और अमले के अरकान ने कॉकपिट में घुसकर हमलावर पर काबू पा लिया और जहाज के इस्तेहकाम में मदद की। इसके बाद परवाज के रास्ते में तब्दीली करके इसे सऊदी अरब के शिमाल मगरिब में वाकई तबूक इलाकाई हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतारा गया। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इसराइल काज ने इसे सिक्योरिटी से मुतालिक संगीन वाकया और एक मुश्तबा दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। इसराइल के वजीर आजम ने कैप्टन स्मिथ मचार, जो एक भारतीय शहरी हैं, को सच्चा हीरो करार दिया जिन्होंने इसराइल जाने वाली परवाज में सवार 174 लोगों की जान बचाई। जनाब नेतन्याहू ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मचार ने गैर मामूली दिलेरी का मुजाहरा करते हुए एक बड़े सानहे को रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ मचार की सताइश की और उन्हें एक बहादुर हीरो करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंतहाई संगीन खतरे और शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मचार ने दूसरों की जान बचाने की खातिर दिलेरी, हिम्मत और पुख्ता अज़्म का मुजाहिरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि कैप्टन मचार की बहादुरी की बदौलत सैकड़ों अफराद की जान बचाने और एक बड़ा सानहा टालने में मदद मिली। वजीर आजम ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मचार एक हीरो हैं और भारत को उन पर फख्र है। जनाब मोदी ने उनकी जल्द सेहत याबी, नई कुव्वत और तंदुरुस्ती की दुआ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता आजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये

0: सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता आजम के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि जदीद तर्ज के बुनियादी ढांचे और ज्यादा मजबूत कनेक्टिविटी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत सरकार के नजरिए को किस तरह जम्मू कश्मीर में काबिल कदर चनाब और अंजी खड रेल पुलों के जरिए अमली शक्ल दी जा रही है।
1: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 26 जून को चिनाब और अंजी खड पुलों का इफ्तिताह करने के बाद कहा था कि ये रेलवे पुल भारत की इंजीनियरिंग सलाहियत की अलामत और जम्मू और कश्मीर में रابطे को मजबूत करने में एक संगे मेल की हैसियत रखते हैं। ये दोनों पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में तामीर किए गए हैं। चिनाब रेल ब्रिज दरियाए चिनाब से 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है और ये दुनिया की सबसे बुलंदी पर वाक़े रेलवे का मेहराब पुल है। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल रेलवे पुल है जो कि 96 केबल्स पर कायम है। इन पुलों से न सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक रेल रابطہ मजबूत हुआ है बल्कि लोगों और अशिया की नकल व हमल में भी बेहतरी आई है। नीज सियाहत और इकतसादी सरगर्मियों को तकवीत मिली है। इन पुलों से कश्मीर से जरी बागबानी और दस्तकारी की अशिया को तेजी से मुल्क भर की मार्केटों तक पहुंचाने में भी सहूलत पैदा हुई है। कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले एक बागबान तजम्मुल अहमद का कहना है कि इन पुलों की तामीर से रेल रابطہ मुमकिन हुआ है जिसकी वजह से सेब पैदा करने वाले किसानों के लिए अपनी पैदावार को मुल्क के दीगर हिस्सों तक पहुँचाना आसान हो गया है।
3: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
2: श्रीनगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: मर्दों के क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी के बिरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज से बल्लेबाजी करने को कहा और वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 405 रन बनाए जो एक रोजा क्रिकेट मैचों में उसका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत ने 43 ओवर्स और 3 गेंदों में महज 2 विकेट खोकर जीत का निशाना आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 133 गेंदों पर धुआंधार 233 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुए। रोहित शर्मा ने 75 गेंदों पर 101 रन स्कोर किए जो एक रोजा मैचों में उनकी 35वीं सेंचुरी है। शुभमन गिल एक रोजा मैचों में सबसे तेज रफ्तार डबल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने महज 117 गेंदों पर यह कारनामा अंजाम दिया। उन्हें अपनी शानदार इनिंग्स के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
4: शुक्रिया कोनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली परवाज की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग और पायलटों के दरमियान झगड़े की वजह सामने आने से मुतल्लिक खबर को 6 सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की सुर्खी है वजीर आजम मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बातचीत, तिजारत, दिफा और अहम टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल। पटाखों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मुकम्मल।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राग नट भैरव में बांसुरी वादन। कलाकार थे सौरभ बनौदा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स। डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

0: पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: आज हम सब जानते हैं कि भारत तेजी से एक बदलती हुई अर्थव्यवस्था है जो नई तकनीकों और युवा प्रतिभा के दौर से गुजर रहा है। विश्व भर में भारत की इस प्रतिभा की मान्यता है, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के इस युग में उद्योगों में भी परिवर्तन आ रहा है। शिक्षा और कौशल विकास जो है उस बदलती हुई जरूरतों को पूरा कर रहा है। ऐसे समय में उद्योग, शिक्षा और युवाओं के बीच उनके भविष्य को लेकर के तालमेल बिठाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब पूर्ण विषयों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री पवन जिंदल। श्री पवन जिंदल जी ने उद्योग से लेकर के शिक्षा और युवा विकास तक कई महत्वपूर्ण पहलुओं को करीब से देखा है और इनकी बातों का स्पष्टता ये होती है कि भविष्य केवल तकनीक का नहीं है बल्कि तकनीक के साथ कौशल, शिक्षा, मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी का संतुलन भी है। आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपके माध्यम से अपने सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि जो उद्योग है, शिक्षा है, कौशल है, तकनीक, युवा, सामाजिक जिम्मेवारी और उसका भविष्य है, इसमें लेकर के देखें तो वर्तमान में भारतीय उद्योग के समक्ष अवसर क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं?
3: भारत को 80 वर्ष होने जा रहे हैं आजादी के लिए। एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित थी। भारत एक दुनिया का बड़ी जनसंख्या वाला देश है। आज के इस समय में हर व्यक्ति की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए उसको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। उस रोजगार के लिए आज उद्योग का उतना ही बड़ा महत्व हो गया। युवाओं को, पुराने जो हमारे कुटीर उद्योग थे वो बंद हो गए, आज नए नए उद्योग देश में लग रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी और स्किल चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी एक बचपन से एक छोटे बिजनेस से निकलकर आज मैं गुरुग्राम, जो भारतवर्ष का आर्थिक दृष्टि से दूसरे नंबर का स्थान है, मैं काम कर रहा हूँ। परंतु मैं बताना चाहता हूँ आज के युवा को, चिंता करने का विषय नहीं। मैं खुद एक छोटे से 100 घरों के गाँव में पटियाला डिस्ट्रिक्ट में मैं पैदा हुआ। एक 10 फुट बाई 10 फुट की किराने की दुकान करने वाले बाप का बेटा हूँ। कोई बड़े आर्थिक सोर्स रखने वाला नहीं हूँ, परंतु फिर भी मैं गर्व से कह सकता हूँ भारत में बनने वाली मारुति कार, उसकी पहली सीट वो मेरे द्वारा बनाई गई 86 में।
2: बहुत अच्छा।
3: मैं 86 में 6 महीने तक जापान रहा, मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैं आज के युवा को कहता हूँ, टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, कुछ भी मुश्किलें हो, परंतु दुनिया का कोई युवा जो कुछ कर सकता है वो भारत का युवा भी कर सकता है। तो इसीलिए आज हमारे समाज में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मेरे ध्यान में आते हैं। आज एक युवा जो प्रशिक्षण करता है उसके मन में एक डर होता है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, या डिग्री है परंतु इतने बड़ी जनसंख्या के देश में और कंपटीशन में मैं कहां खड़ा हूं, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। मैं कहता हूं इसके डर से बाहर निकलिए। आज धीरूभाई अंबानी ग्रुप को पूरे विश्व में बड़े नाम से जाना जाता है, भारत के तो टॉप लोगों में आता है, परंतु धीरूभाई अंबानी को ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, केवल 10वीं पढ़े हुए थे। पेट्रोल पंप पे नौकरी की, परंतु उसने रिलायंस की स्थापना की। केवल एक 200 गज के ऑफिस में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, परंतु उनके मन में एक दृढ़ निश्चय विचार और प्रामाणिकता से काम करने का एक संकल्प था, उसके आधार पर किया। मैं आज के व्यक्ति को, आज के एंटरप्रेन्योर को जो आज काम करना चाहता है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ 3 बातें किसी भी काम के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 कॉस्टिंग, नंबर 3 कमिटमेंट। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर ये 3 बातों को पूर्ण करता है, उसके पास भले ही धन है या नहीं है, डिग्री है या नहीं है, परंतु वो 3 बातों को पूर्ण करता है तो उसको किसी बात की जरूरत नहीं। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे देश में, पूरे विश्व में। एक मसाले के क्षेत्र में MDH महाशय धर्मपाल, जो पाकिस्तान से आए थे, तांगा चलाने वाले थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था, परंतु उन्होंने एक गुणवत्ता युक्त मसाला तैयार किया जो आज पूरे विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में नंबर 1 है। उन्होंने किसी का सहयोग नहीं लिया, किसी ब्रांड एम्बेसडर को नहीं लिया, वो अपना प्रचार स्वयं करते थे, आज पूरे विश्व में उनका स्थान है। हमारे अंदर उस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति, यह होना बहुत बड़ी बात है, उसके अनुसार अपने कार्य को तन्मयता से करना, उसमें से उस प्रकार का प्रोडक्ट निर्माण करना। हमारा प्रोडक्ट बोलेगा जिसके आधार पर हम सर्वाइव करेंगे, ये हमारे जीवन में आना चाहिए।
2: दूसरा
3: उदाहरण मैं देखता हूँ, हमारे हरियाणा के ही बाबा रामदेव जी एक संत है, उन्होंने कोई इंडस्ट्री की शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु आज भारतवर्ष के बड़े उद्योगपति के नाते उनका नाम जाना जाता है। उन्होंने भी किसी ब्रांड का सहारा नहीं लिया, वो भी एडवर्टाइजमेंट खुद करते हैं। ये आज में काम करने वाले बड़े ही टेक्नोलॉजी अनेक प्रकार के स्किल के काम बदल गए, परंतु एक एंटरप्रेन्योर जब हम बनते हैं, उस दिशा में हम सोचते हैं, तो हमारे जीवन में एक देश और समाज का ध्यान रखते काम करने की निडरता, निश्चितता, दृढ़ता ये हमारे जीवन में आनी चाहिए, तो हम उन सब बुलंदियों को छू सकेंगे।
2: बहुत अच्छा। और आपने एक बात बताई कि कमिटमेंट की बात की, और आज कहा जाता है कि डिग्री पर्याप्त नहीं है, डिग्री से आगे कौशल चाहिए, निपुणता चाहिए। तो कंपनियां जो है युवाओं को आजकल शैक्षणिक आधार पे हायर नहीं कर रही है, नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि उनके व्यावहारिक और मानवीय कौशल को महत्व दे रही है। आपने ऐसे कुछ कुशल लोगों की, सफल लोगों के उदाहरण दिए हैं। अब बात आती है अध्ययन के समय युवाओं को अवसर देने की या अध्ययन के पश्चात अवसर देने की। तो ऐसी स्थिति में स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए उद्योगों के बीच और विश्वविद्यालय के बीच एक रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र है। आपने इन दोनों को बहुत ही नजदीक से देखा है और इस क्षेत्र में काम भी किया है और कर रहे हैं, तो आपके विचार में विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच ऐसा कौन सा बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही वास्तविक औद्योगिक अनुभव मिले और उस अनुभव का वो अपने अपने स्थानीय स्तर पर भी लाभ उठा सके।
3: देखिए, अभी भारतवर्ष में देश की आजादी के पश्चात एक पुराना एजुकेशन सिस्टम चलता था, परंतु देश के लगभग 60-70 वर्षों के बाद इस देश में विचार शुरू हुआ कि भारत के नागरिक को भारत के एनवायरनमेंट के मुताबिक, भारत की जरूरतों के मुताबिक शिक्षा दी जाए। उसी विचार को लेकर 29 जुलाई 2020 को भारत के मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई शिक्षा नीति उसको मंजूरी दी। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जब हम देखते हैं, उसमें केवल पढ़ाई नहीं, केवल उसमें आगे बढ़ना नहीं, उसमें चार प्रकार के स्टेप आते हैं। पहली से दूसरी क्लास, 5 से 8 वर्ष का बच्चा केवल कहानियों के द्वारा, खेल के द्वारा वो शिक्षा ग्रहण करेगा, उस पर बोझ नहीं होगा। दूसरा, 8 से 11 वर्ष तक, 5वीं क्लास तक वो बच्चा अपनी भाषा, कुछ विषयों का गणित, विज्ञान, इस प्रकार के कुछ विषयों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 11 से 14 वर्ष तक जब वो अपनी 8वीं कक्षा तक होगा, तब उसके कुछ विषय और बढ़ जाएंगे, परंतु उसके साथ साथ उसको स्किल का कोई ना कोई विषय उसमें ऐड हो जाएगा। और उसके आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का विद्यार्थी जो 14 से 18 वर्ष का होगा, उसके लिए एक अलग प्रकार की शिक्षा केवल उसको ऑप्शन है, वो अपने विषयों का चयनित कर सकता है, लचीलापन है, वो इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूँ, नई शिक्षा नीति के मुताबिक व्यक्ति सब लोगों को बहुत हाईटेक पढ़ाई करने की जरूरत है। पढ़ाई के साथ साथ जब वो अपनी केवल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करता है, अगर उसके बाद वो नई पढ़ाई करता, तब भी अपने जीवन में सक्सेसफुल उद्योगपति बन सकता है, वो बनना चाहिए। पढ़ लिख कर सरकार के पास केवल 8% से ज्यादा नौकरी देने का स्कोप नहीं है। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, वो इतनी बड़ी जनसंख्या के प्राचीन पद्धति, एक हेरिडेटरी इसकी व्यवस्था थी, उसके लिए एक बात मैं आज के युवा को कहना चाहूंगा, जो आज थोड़ा उसके मन में आता है, जब हम स्किल सिखाते हैं, मैं खासकर उत्तर भारत के साधन संपन्न परिवारों में देखता हूँ, जब उनको कहता हूँ कि आज अनेक प्रकार के स्किल के काम है, तो बच्चे के पेरेंट्स, बच्चा खुद वो कहता है, हमारा बच्चा क्या प्लम्बर बनेगा, क्या कारपेंटर बनेगा, क्या वेल्डिंग सीखकर लोहार बनेगा। मैं अभी अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक रिलेटिव है किसी कंपनी

0: केज मैनेजर है, उसकी वहाँ 6 लाख रुपए तनख्वाह है। परंतु मेरे गांव से एक और बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया था, उसको भी मैं मिला। वो वहाँ एक छोटा मोटा किसी लकड़ी के कारपेंटर के साथ काम करता था, वो लकड़ी का काम थोड़ा बहुत जानता था, उसने स्किल था उसमें, उसने वहां जाकर किया। जब मैं उसके घर गया, वो पढ़ा लिखा नहीं, परंतु वो 25 से 30 लाख रुपए कमाता है। श्रम के प्रति श्रद्धा का भाव हमारे जीवन में उत्पन्न होगा। मेरे पास गुण है, उस गुण के आधार पर मैं दुनिया में किसी भी प्रकार से सर्वाइव कर सकता हूँ, ये भाव उसके मन में, हमारे देश के नौजवान के मन में आना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं। मैं उसका एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। आज एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर है, और उस विश्वविद्यालय के साफ सफाई रख रखाव के लिए 4 उसमें स्वीपर है। अब स्वीपर के काम को कई बार हम कहते हैं छोटा काम है, मैं कहता हूँ इस विश्वविद्यालय में अगर 15 दिन की छुट्टी के लिए इसके वाइस चांसलर चले जाएंगे तो विश्वविद्यालय अच्छा चलता रहेगा, तो भी। परंतु 15 दिन स्वीपर जिनको हम छोटा काम कहते हैं वो चले जाएंगे, विश्वविद्यालय नहीं चल पाएगा। तो छोटा और बड़ा कुछ नहीं।
1: स्किल के साथ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, अनुसंधान का क्षेत्र है, सबसे बड़ी तकनीकी है, लेकिन इसके कुछ लाभ और नुकसान है। तो ये तकनीक जो है, आपको अपने अनुभव से क्या लगता है कि रोजगार के अवसर कम करेगी या युवाओं को उसके लिए अलग से अपने स्किल में बदलाव करने की जरूरत है? और विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए जब हम नौकरी से उद्यमिता तक की बात करते हैं या उद्यमिता से नौकरी की बात करते हैं, तो हमारी क्या एक पॉलिसी या युवाओं को किस तरह के सोच में बदलाव की जरूरत है?
0: आपने AI की बात की, नो डाउट मैं टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए, परंतु टेक्नोलॉजी एक मशीन है। मशीन का बदलाव इमोशन से नहीं हो सकता, मशीन में इमोशन नहीं हो सकता, आत्मीयता नहीं हो सकती। मशीन तो एक तरीके से काम करेगी, व्यक्ति को सीख के समझ के आया, उसको कुछ पढ़ा दिया, वो वैसे काम करेगा। परंतु समय पर हालत बदल गए और मशीन में बदल नहीं होगा, परंतु अपने विवेक से, अपनी समझ से व्यक्ति बदलेगा। मैं इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करता। भारत के युवा के मन का दृढ़ संकल्प, हर जब कोई एक काम बंद होता है 10 नए दरवाजे खुलते हैं, खुलेंगे, जिनकी जरूरत समाज में है। तो इसीलिए उसके मन में ये संकल्प ईमानदारी से, दृढ़ निश्चय से, प्रामाणिकता से काम करना रहेगा, तो अपने आप उस प्रकार के अवसर उसको समय समय पर प्राप्त रहेंगे। समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें चलती हैं जो होती रहेंगी।
1: निश्चित रूप से तकनीकें आएंगी, लेकिन तकनीकों के अनुसार अपने आप को कुशलता प्राप्त करने की जरूरत है। हर कोई उस तकनीक में अपने आप को अगर एक जानकारी रूप में उसको स्वीकार कर ले, तो निश्चित रूप से चुनौतियां जो आज दिख रही है वो कल अवसर बन जाएगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चुनौतियों को फेस करने की जरूरत है, आपदा में भी अवसर है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे स्थानीय तकनीक हो, स्थानीय उद्योग हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो, और हम रोजगार लेने वाले न बने बल्कि रोजगार देने वाले बने। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि उद्योगों को, युवाओं को या व्यक्ति विशेष को, चाहे उद्योग से जुड़े हों चाहे अन्य क्षेत्र से जुड़े हों, उनको समाज में किस तरह का सार्थक योगदान देना चाहिए या वो दे सकते हैं?
0: देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में मूल्यों का बड़ा महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति में उद्योग में भी ये ठीक है, निश्चित रूप में कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ लाभ मिलना चाहिए। मैं जब छोटा था, आज से 60 वर्ष पूर्व, हमारे पिताजी हमें बोलते थे, भारत के उद्योग की सोच लूट नहीं है, पारिवारिक भाव है। वो बोलते थे हमारा प्रॉफिट कितना चाहिए, 1 रुपया लाभ है मेरे भैया।
1: अच्छा,
0: 16 आने का 1 रुपया था।
1: हाँ हाँ।
0: एक आना 1 रुपए के पीछे लाभ होना चाहिए। कितने परसेंट हुआ? लगभग 6%। 6% में अपने माल को बेचो। आज हम देखते हैं कई बार मल्टीनेशनल ब्रांड के, हमारे आज का युवा स्वदेशी ना पहनकर उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट जिसके ऊपर एक ब्रांड नाम लगा हुआ है, वो लगते ही 1000 की टी शर्ट 20000 में बेचता है। ये लूट है। भारत का दृष्टिकोण पूरे विश्व को मानव मूल्य के आधार पर एक परिवार के रूप में देखता है, व्यापार के रूप में नहीं देखता। हमारा हाथ दूसरे की जेब में नहीं है। तो हम केवल समाज को और विश्व को शांति और भाईचारे का, आत्मीयता का एक संदेश देने वाला देश है।
1: श्री पवन जिंदल जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने शिक्षा और उद्योग के बीच में तालमेल, आपने नए जो तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, युवाओं को किस तरह से अपना एप्टीट्यूड और स्किल उन्हें बदलने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, और खास करके आपने उद्यमिता के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेवारी की दिशा में किस तरह से हमारे देश के लोगों को सक्षम होना चाहिए और समर्पित भी होना चाहिए, इन सब बातों पर उदाहरण सहित

0: विस्तृत जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: उद्योग पत्रिका।
3: अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे उद्योग पत्रिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। और आइए अब कार्यक्रम का वक्त हुआ है पंजाबी कार्यक्रम का, मिट्टी दी महक। तो आइए सुनते हैं ये प्रोग्राम।

ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ ਪੋ ਵਿੱਚ।

ओ सुनी कुड़िए मछली वालिए मछली ना लिसकाइए, सुनी कुड़िए मछली वालिए मछली ना लिसकाइए, जिस दिन बाँफड़िए

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DAD के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकीय पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल है जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इससे व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। न्यायाधीश MM सुंदरेश और PB वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय की सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाश।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार। आकाश

3 मीटर अर्थात 849 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब कार्यक्रम का वक्त हुआ है आपकी पसंद यानी आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। जी हाँ, और आपके फिल्म संगीत की फरमाइश का प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बिल्कुल सही, ये ज़िंदगी हसीन है अगर हंसी बना सको। और हसीन के साथ साथ मुझे याद आ रहा है कि ये बातें तो मैं बहुत सारी आपसे करती ही रहूँगी बीच बीच में, लेकिन सबसे पहले जो हमारी काम की बातें हैं वो हैं आपके मैसेज, आपके हमारे पास भेजे हुए सवाल। जी हाँ, और सवालों के साथ साथ आपकी फरमाइश, आपकी पसंद, क्योंकि ज़िंदगी को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें शिकायतों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत पल छुपे हुए हैं, और बस ज़रूरत है उन्हें महसूस करने की, जिस तरह से हम महसूस करते हैं आपके उन मैसेजेस को। जी हाँ, और हमारे पास सबसे पहले जो मैसेज आया है मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि असालत पूरा मुरादाबाद से मैसेज है, और उन्होंने कहा है मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी और तनवीर आलम अंसारी का। इन्होंने कहा है कि कोई भी खूबसूरत सा गीत आप अपनी पसंद से सुनवा दे, तो लीजिए सुनिए।

और मैं तो ये कहूंगी कि कभी सुबह की पहली किरण चेहरे पर पड़ती है, कभी चाय की प्याली के साथ किसी अपनी की आवाज दिल को सुकून दे जाती है, और कभी किसी पुराने गीत की धुन हमें बीते हुए खूबसूरत दिनों में ले जाती है, और बिना कभी भी किसी खास वजह से मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। और क्योंकि मुस्कान चेहरे पर आनी बहुत ज़रूरी है, साथ ही मैं ये कहूँगी कि कुछ मैसेजेस और भी हमारे पास आए हैं मुस्कान के साथ साथ। मुझे याद आ रहा है एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज, ये है हमारी मेरठ से सुनैना गुप्ता, जो हर बार लिखती हैं। रीता गुप्ता, नीरज गुप्ता, रेखा गुप्ता और शिल्पी गुप्ता ने ये खूबसूरत से गीत की फरमाइश की है, तो चलिए सुनते हैं इनका ये खूबसूरत सा गीत।

देखिए ना, कितने सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं और मैं किस किस का मैसेज पढ़ूं ये समझ में नहीं आ रहा। पहले किसका पढ़ूं? चलिए पहले और दूसरे और तीसरे सबका पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सब हमसे खुश रहें। और इसी खुशी के साथ मैं अब एक मैसेज पढ़ने जा रही हूँ, वो है शोभापुर गाँव मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। इन्होंने भी लिखा है कि कोई भी प्यारा सा गीत आप हमें सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश में अभी पूरी किए देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और मैसेज पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। ये खंडवा मध्य प्रदेश से ममता पमारकांडे, संजय मारकांडे और बेबी किटू का, इन्होंने भी एक फिल्म के गाने की फरमाइश की है। तो चलिए आप दोनों की फरमाइश पूरी करते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास आ चुके हैं। यही तो है जिंदगी की खूबसूरती। हम जब बात कर रहे हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे, जब मनचाही चीज हमें मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, हम फिर किसी बात को लेकर फिर परेशानी में बैठ जाते हैं। तो ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन चलिए हम परेशानियों को छोड़ देते हैं और परेशानियों के साथ साथ खूबसूरत से मैसेज पढ़ते हैं जो आप हमें भेज रहे हैं। और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद का ही प्रोग्राम आपकी फरमाइश गीतों भरी, और साथ में मैं हूं आपकी दोस्त और हूं सिमरन कौर। तो चलिए अब मैं पढ़ती हूं, सेक्टर मोहाली चंडीगढ़ से मैसेज आया है। ये है TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का। और साथ में कालका से आया है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, पिता बजाज का। इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। तो चलिए इनकी पहले फरमाइश पूरी करते हैं और फिर आपसे खूब ढेर सारी बातें करेंगे।

और अब इनकी फरमाइश तो पूरी की है, लेकिन साथ साथ में हमें और भी फरमाइश आ रही है बहुत सारी। ये भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा और कपिल छीपा जी की फरमाइश आ गई है, और साथ ही हमारे पास एक और मैसेज भी आ गया है। ये है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेक की, रुद्रा रामटेक की और श्राव्य रामटेक का। इन्होंने भी कहा है कि अपनी पसंद से कोई भी आप गीत सुनवा दीजिए, तो चलिए अपनी पसंद से हम गीत सुनवा देते हैं।

और बात भी सच है, बात ये सच है कि जिंदगी खूबसूरत बनने का इंतजार नहीं करती, वो तो हर दिन हमारे सामने खूबसूरत पल लेकर आती रहती है। जैसे कि आप खूबसूरत से ढेर सारे मैसेज लेकर आए हैं, हम आज जो पढ़ रहे हैं। अब मेरे पास एक मैसेज आ गया है, ये भी एक मैसेज है मुरादाबाद से। इन्होंने भी लिखा है कि मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, इतने सारे लोगों का नाम मैंने देखिए पढ़िया। आप तो खुश हो जाएंगे नाम आप सुनकर अपना नाम, क्योंकि आप हमेशा हमेशा की शिकायत करते हैं कि हमारा नाम नहीं लेते। लीजिए, और साथ में ये भी लिखा

मैं तो ये कहूंगी दोस्तों कि जिंदगी बहुत लंबी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन खूबसूरत हो ये जरूरी है। तो अब इसी खूबसूरती के साथ में एक और मैसेज पढ़ूं, क्योंकि खुश हो जाएंगे वो अपना नाम सुन के, जिनका नाम है रामेश्वर कठारिया, उमा कांति कठारिया और कमलेश कठारिया। ये इन्होंने भेजा है हमें ग्राम पोस्ट मुंगी सापुर कानपुर से। इन्होंने कहा है कि बहुत बहुत मुबारक हो आपका, आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है और आज आपने हमारा नाम पढ़ लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। जी, और आपका नाम पढ़ लिया है आप बहुत खुश भी होंगे, है ना, क्योंकि आपकी फरमाइश हमने पूरी की। और साथ में इन्होंने लिखा है कि हमारा मेल तो आपने शामिल कर लीजिए, लेकिन साथ में गीत में हमें ज़रूर भी शामिल कर लीजिए, अपने कोई पसंद के गीत को सुनाकर वो हमारा पसंदीदा गीत बन जाएगा। तो लीजिए आप भी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

और अब हमारे पास एक और मैसेज आ गया है, ये है गांव नथाना से, पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। इन्होंने भी कहा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें, खुश रहें। जी हाँ, आप तो फिर सुनिए हमारी पसंद का और साथ में वो आपकी भी पसंद बन जाएगी।

और साथ में हमारे पास एक मैसेज और आया है, चलते चलते मैं ये भी पढ़ दूँ। धनौरी तेलीवाड़ा तेलीवाड़ा उत्तराखंड निसार से, ये निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बेबी आलिया आयान बाबू का, ये भी कह रहे हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए, तो इनकी फरमाइश पूरी करते हैं।

और हम कहेंगे जो मिला उसके लिए शुक्रिया, और जो नहीं मिला उसका भी कोई मन नहीं, उसका भी शुक्रिया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी आज जो हसीन है और इसे पूरी शिद्दत से जीना चाहते हैं, और चाहते रहिए, क्योंकि इसी वादे के साथ फिर होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक के लिए आपकी फरमाइश लेके हम हाजिर हो जाएंगे। सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, यही बात तो सच में मानने वाली है। और साथ में जब हम जिंदगी की बातें करते हैं तो हमें याद आता है कि मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनी जिंदगी, अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को दिल से महसूस करते रहिए, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलों से मिलती है। और इस मुश्किल घड़ी में जब हम मुस्कुराते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि हम हाजिर हो जाएंगे हर बार आपके लिए, खास आपकी फरमाइश, आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर। तो चलिए, अब ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर, 819 किलो हर्ट्ज पर, और DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू

0: और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया और लोगों की जान बच गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने साबित कर दिया कि असली हीरो सबसे मुश्किल समय में ही सामने आते हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी अधिकारी और देशभर के अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएडी के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकीय पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 101वें स्थापना दिवस पर उन सभी नर्सिंग कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है जो एक सदी से भी अधिक समय से समर्पण, करुणा और सेवा की भावना के साथ बहादुर सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में सफदरजंग मकबरे पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत घर से होनी चाहिए और इसका विस्तार कार्यालयों, आसपास के क्षेत्रों तथा सार्वजनिक स्थानों तक होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वच्छता के लिए किए गए योगदान का भी जिक्र किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान की थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. He will also address the gathering on the occasion. The program will mark the culmination of the year.

0: यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारी, शिक्षाविद और काफी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस सब का विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान, मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट विच इज मार्किंग द सेंटिनरी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट अपॉइंट्स इंडिया सिविल सर्वेंट्स। एंड नाउ श्री अजय कुमार, चेयरमैन यूपीएससी, इज एड्रेसिंग।
2: माननीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री सोमनाथन, संघ लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यगण, राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्मान्य अध्यक्ष एवं सदस्यगण, संघ लोक सेवा आयोग के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और सदस्यगण, वर्तमान और सेवानिवृत्त सम्मान्य अधिकारीगण, सम्मान्य वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्रिय सहयोगियों, संघ लोक सेवा आयोग की शताब्दी के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और सम्मान की बात है। मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे संस्थान की अध्यक्षता करता हूं जो सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों के लिए सुयोग्य अधिकारियों का चयन करता है। यह वे अधिकारी हैं जो दशकों से राष्ट्र के निर्माण एवं सुरक्षा में लगे रहे हैं और आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेवारी भी इनके कंधों पर रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम केवल आयोग के 100 वर्षों की का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि लोक विश्वास के 100 वर्षों का महोत्सव भी मना रहे हैं। आजादी के बाद पीढ़ियों से देश के युवा देश सेवा के सपने लेकर आयोग के द्वार पर आते रहे हैं और आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें केवल और केवल उनकी योग्यता की कसौटी पर ही कसा जाए, कोई भेदभाव नहीं, पूरी निष्पक्षता से उनका चयन हो। आयोग पर विश्वास केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये भारत के संविधान द्वारा आयोग को सौंपी गई समस्त जिम्मेवारियों में झलकता है, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, डेपुटेशन या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मामला हो। आयोग ये भली भांति समझता है कि विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं और उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी साधना है, इसलिए आयोग के लिए हर कार्य केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व है जिसे हम प्रतिबद्धता, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा से निभाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आयोग हर साल लगभग 250 भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करता है। इसका अर्थ है लगभग हर वर्किंग डे पर आयोग कोई ना कोई नया परिणाम घोषित करता है। सन 2013 में हमारी परीक्षाएं केवल 45 शहरों में आयोजित होती थीं, आज देश के 86 शहरों में होती हैं। आज सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में लगभग 30% महिलाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डुप्लीकेट एप्लीकेशंस की पहचान, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए करोड़ों दस्तावेजों का ओसीआर द्वारा रियल टाइम इवैल्यूएशन और परीक्षा केंद्रों पर लाखों उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन कुछ ऐसे हालिया उपाय हैं जिन्हें आयोग ने निष्पक्षता और सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम शताब्दी का उत्सव मना रहे हैं तो हम कृतज्ञता पूर्वक उन सभी का भी स्मरण करते हैं जिनकी साधना से इस संस्थान को यह गरिमा मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस शताब्दी समारोह को हम सभी के लिए और भी स्मरणीय बना दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से मैं माननीय

0: प्रधानमंत्री जी और समस्त सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से विनम्र निवेदन, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय
1: और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
3: परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या अहमियत है, क्या इतिहास है। आज के दिन हम एक ऐसी संस्था के 100 साल मना रहे हैं जिसका जन्म हिंदुस्तान की आजादी से पहले हुआ था। देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज द लेगेसी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द फ्लेवर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। 100 वर्षों के इस गौरवमय यात्रा में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस विशाल देश में अनेकों अनगिनत छिपी हुई विभूतियों को तलाशा, खोजा, फिर तराशा और तराश कर इस काबिल बनाया कि वो देश की प्रशासनिक जिम्मेवारियां निभा सके। Therefore, UPSC truly, truly personifies Sardar Patel's vision of strong, powerful and professional civil services, the steel frame of India. मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि 100 साल के इस लंबे सफर में पिछले 10-12 साल एक खास मकाम रखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गवर्नेंस रिफॉर्म्स के चलते इन 12-13 सालों में यूपीएससी ने कई आयाम हासिल किए, कई कीर्तिमान स्थापित किए। नतीजे के तौर पर जहां यूपीएससी के द्वारा होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता में इजाफा हुआ और लोगों का भरोसा भी बढ़ा। यदि बात करें संख्या की तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में यूपीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या रही 45,431 और इसकी तुलना में एनडीए के पहले 10 वर्षों में ये संख्या बढ़ करके हो गई 50,906 और अगर हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो ये आंकड़ा 65,000 पार कर जाता है। अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए जैसे यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंटेग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर, जैसे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, जैसे प्रोविजनल आंसर की ऑन द वेबसाइट और प्रतिभा सेतु सिविल सर्विसेज एग्जाम के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रह गए उनके लिए विकल्पित जॉब ऑप्शंस, और अभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। आज यूपीएससी एक रोल मॉडल बन चुका है देश विदेश की हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। आज दुनिया भर से अनेकों मुल्कों से प्रतिनिधि मंडल यहां आकर के यूपीएससी की नियुक्ति प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। आज यूपीएससी एक बेंचमार्क है, एक यार्डस्टिक है, एक मापदंड है जिसके ऊपर हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरा उतरना चाहती है। और अंत में केवल इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे सामने सन 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रचयिता है यूपीएससी। यूपीएससी इज इंडीड द आर्किटेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू डेस्टिनेशन 2047। विरासत और विकास का ये खूबसूरत मिश्रण इसी तरह बना रहे, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
4: That was Dr. Jitendra Singh,
2: आपके मुझे अपने उद्बोधन के लिए हृदय से आभार। माननीय मंत्री महोदय,
4: in charge of the Department of Personal

0: personnel training, pensions and grievances. And the Honourable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is the guest of honour at the centenary celebrations of the Union Public Service Commission. And a short film on UPSC.
1: करोड़ों सपने और एक अटूट कसौटी मेरिट साल दर साल जनसेवा के लिए 200 से अधिक परीक्षाओं के माध्यम से सबसे योग्य प्रतिभा को चुनना यूपीएससी द्वारा सटीकता का राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसमें भाग लेती है भारत की विविधता 48 विषय 22 संवैधानिक भाषाएं लाखों परीक्षक और अंत में सिर्फ एक मेरिट लिस्ट इतनी विविधता को एक ही राष्ट्रीय कसौटी पर लाना यही यूपीएससी की उपलब्धि है 100 वर्षों में परीक्षा का आकार बढ़ा तो अवसर का दायरा भी 1957-58 में लगभग 1000 अनुसूचित जाति कैंडिडेट से 450 गुना बढ़ना 100 से भी कम अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट से आज 1500 गुना बढ़ना दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए सेंटर ऑफ चॉइस अतिरिक्त समय स्क्राइब की सहायता मिलना बदलते भारत के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी 1952 में 3 से बढ़कर 2025 में लगभग 300 हुई जिनमें टॉप 25 में 11 महिलाएं शामिल हैं लाखों कैंडिडेट्स हजारों परीक्षा केंद्र निष्पक्षता की रक्षा कैसे हो यूपीएससी ने चुनी न महंगी मशीन न भारी ढांचा बस एक स्मार्टफोन 2025 से सभी 2072 केंद्रों पर रियल टाइम फेस ऑथेंटिकेशन 7 सेकंड में पहचान हर मिनट 12,000 सत्यापन एआई से एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स की जांच प्रतिभा सेतु अंतिम सूची से चूक गए प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स को देता है एक और अवसर तभी तो सर्वोच्च अदालत से लेकर लाखों युवाओं का यूपीएससी पर है अटूट भरोसा
2: यूपीएससी एंड इट्स कंडक्ट is always top notch. There is no problem in conducting of papers. There is no rescheduling of papers, no cancellation of papers. I think that's almost the best body you can get.
3: बहुत ही ज़्यादा fair selection होता है कि आप आओगे, आप अपनी तैयारी करके आओ और आपको मौका दिया जाएगा और आपका evaluation होगा.
1: 100 वर्षों में भारत बदला, UPSC भी बदला, लेकिन लक्ष्य वही है, प्रतिभा की तलाश. निष्पक्षता का संकल्प और अडिग रहकर हर कर्तव्य का पालन
4: कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं संकल्प है ये समय तेजी से बदलाव का समय है आपकी भूमिका भी आपके अधिकारों से नहीं आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी
1: यूपीएससी 100 years of selecting India.
5: संघ लोक सेवा आयोग के 100 वर्षों की यात्रा को दिखाते हुए फिल्म का प्रदर्शन किया गया भारत मंडप
6: और देशवासियों की सेवा आराधना कभी प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का गौरव पाता है तभी गुलामी की मानसिकता को त्याग कर कर्तव्य पथ कर्तव्य का बोध कराता है और हर
5: भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं और एक शताब्दी स्मारक टिकट और सिक्का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया जा रहा है
0: And the Honourable Prime Minister will now release a commemorative postage stamp, a commemorative coin and a publication titled The 100 Landmark Judgments. And the postage stamp is priced at 5 rupees and it says 100 years of Union Public Service Commission. It's indeed a collector's item. And the postage stamp and cover is a special

0: commemorative postage stamp and cover that is available as a collector's item. And this also, a beautiful coin which depicts the UPSC building from 1926 to 2026, and it is valued at 100 rupees. And the publication, 100 Landmark Judgments. The commemorative postage stamp, the commemorative coin, and 100 Landmark Judgments publication have been released by the Honorable Prime Minister.
1: Maranee Pradhanmantri ne smarak ticket aur sikka jari kiya. आपको बता दें यूपीएससी के 100 वर्ष के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया रहा है. अब समारोह
0: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द गैदरिंग हियर टू मार्क 100 इयर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी.
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीके मिश्रा जी, टीवी सोमनाथन जी, अजय कुमार जी, यूपीएससी के सभी माननीय सदस्यगण, अलग अलग राज्यों से आए सभी पीएससी के चेयरमैन, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं आज इस बात करने से पहले कल जो एक घटना घटी और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है. आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई. उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है. मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें. साथियों, आज का ये दिन यूपीएससी के 100 वर्षों के उत्सव के साथ ही एक विरासत का भी उत्सव है. ये उत्सव उस आकांक्षा का है जिसे हर वर्ष लाखों लाख युवा उसे जीते हैं. ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है. 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली,

टेक्नोलॉजी बदली, सिलेबस बदले, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। और ये आप सभी की बहुत बड़ी पूंजी है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर अभी यहीं स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है। मैं 100 वर्ष की इस यात्रा से जुड़े सभी महानुभावों का वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं एक छोटी सी गैलरी बनाई है, उसका निरीक्षण कर रहा था और आप सबसे भी कहूंगा कि 10-15 मिनट लगेंगे, जरूर देखें। और मैंने उसमें 75 साल के कार्यक्रम का भी एक चित्र देखा, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ दिखते हैं, आज 90 साल की आयु में हमारे बीच मौजूद है। साथियों, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस यात्रा को विश्वास में बदला है, समयाकुल परिवर्तन किए हैं और संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। जब मैं गैलरी देख रहा था तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी प्रक्रिया से जब गुजरे थे, उसकी सारी जानकारी वहां है। और मेरा इस बात पर ध्यान गया कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन संस्कृत का पेपर हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में पेपर लिखा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करूंगा। आजादी के बाद उनके सामने केवल एक देश को आजाद रखने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने एक राष्ट्र को चलाने की चुनौती भी थी। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस स्टील फ्रेम की जरूरत थी, वो स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। उन्होंने इस संस्था को आजाद भारत का एक प्रमुख स्तंभ बनाया, इसे सशक्त किया। साथियों, 1926 में जब इस संस्थान की नींव रखी गई थी, तब उस समय की प्राथमिकताएं अलग थी। उस समय व्यवस्था का फोकस और उसका समर्पण दोनों ही ब्रिटिश राज के प्रति था। देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के सपने और भारत की व्यवस्था, ये फोकस में रहे, केंद्र में रहे। बीते दशकों में यूपीएससी ने अपने दायित्वों को बेहतरीन तरीके से निभाया है और इस बारे में यहां मन से भी काफी बातें हुई है, और इसलिए मैं न उसका पुनरावर्तन करना चाहता हूं, न ही उसके विस्तार में जाना चाहता हूं। इतिहास से आगे बढ़कर अब हमारे सामने भारत का भविष्य इंतजार कर रहा है।

21वीं सदी का एक क्वार्टर 25 साल बीत चुके हैं। आने वाले 20-25 साल भारत के लिए, भारत के हर व्यक्ति, भारत की हर संस्था के लिए बहुत अहम है। इसलिए आज मैं अपनी चर्चा का फोकस इसी दिशा में रखूंगा। साथियों, विकसित भारत के लिए अब जिस तरह की गवर्नेंस देश को चाहिए, उसका बहुत बड़ा माध्यम यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोग भी हैं। आज आप जिन युवाओं की भर्ती कर रहे हैं, वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और वही विकसित भारत के सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है। पहली कसौटी है नेशन फर्स्ट और दूसरी कसौटी है सिटीजन फर्स्ट। यही दो कसौटियां हैं जिन पर हर सिलेक्शन को कसा जाना है और जब इस भाव से कैंडिडेट को परखा जाएगा, इस भाव से भरे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। साथियों, 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। भारत आज के मुकाबले और अधिक अर्बन होगा, गांव और शहरों का अंतर कम होगा और हमारे नागरिकों, खासकर युवाओं के एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आज ही इसका बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सवाल सिर्फ सर्विस डिलीवरी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पब्लिक सर्विसेज आज की इंस्टेंट डिलीवरी वाली दुनिया की गति उसको पकड़ पा रहे हैं क्या, उस हिसाब से चल पा रहे हैं क्या। आज नागरिक किसी सर्विस के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना चाहता। जब एआई हजारों डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में प्रोसेस कर सकता है, जब सरकार के पास रियल टाइम डाटा उपलब्ध है, तो नागरिक तेजी से समाधान चाहता है। यही बदलती हुई सोच हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है। इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं, पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे वो युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है। क्योंकि जब मोटिवेशन सही होगा तो बदलती जन आकांक्षाओं के साथ चलना भी आसान होगा।

डलना भी आसान होगा। साथियों, आप में से काफी लोग इस बात से परिचित है कि मैं जब ट्रेनी ऑफिसर से मिलता हूं तो उनसे कहता हूं कि वे लिख कर रखे प्रारंभ में ही और खुद लिख करके उसको रखे, वे सिविल सर्विस में क्यों आए हैं। क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नई चुनौतियां आती हैं, ऐसे समय में वही छोटा सा नोट उन्हें उनके मूल उद्देश्य की याद दिलाता है। यह उनके लिए एक सेल्फ अप्रेजल टूल भी बन जाता है। यूपीएससी और राज्यों के आयोग भी कुछ ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। साथियों, हमने अतीत का वो दौर देखा है जब माना जाता था कि सरकार ही माई बाप है, लेकिन आज ये दौर है जिसमें हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। यानी देश का नागरिक हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। इसलिए साथियों, आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मूल सिद्धांत है प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस। प्रो पीपल यानी सरकार की सुविधा को देखते हुए नहीं, बल्कि नागरिक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम करना। प्रोएक्टिव यानी जब समस्या आए तब एक्शन के बजाय समस्या को पहले ही एंटिसिपेट करके उसके समाधान तैयार हो। गुड गवर्नेंस यानी सरकार का अभाव भी ना हो, दबाव भी ना हो और अनावश्यक प्रभाव भी ना हो। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही जगह हमें अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इसी स्पिरिट के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो देश की आवश्यकताओं को समझे, जो कानून का पालन कराए, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है। साथियों, आज जिस तेजी से युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो हम सब देख रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें नई तरह की चुनौतियां समाज के सामने आने जा रही है। एआई को लेकर इस समय विश्व में जो चर्चा छिड़ी हुई है उससे हम सब परिचित हैं। ऐसे में हमारे सिविल सर्वेंट्स भी अलग तरह की परिस्थितियों में काम करेंगे। इन्फॉर्मेशन वॉर की स्थिति होगी,

अल्गोरिथमिक बायस के चैलेंज होंगे, क्लाइमेट जस्टिस जैसे कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे। ऐसे में हमें चयन प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूरदृष्टि को टेस्ट करने का भी, उस प्रयासों को भी प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हम सभी जानते हैं देश आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से चल रहा है। ऐसे समय में हमारी परीक्षा कराने वाली एजेंसीज को उन रिफॉर्म्स पर तेजी से काम करना होगा जो आज के समय की मांग है। जैसे परीक्षाओं को कराने में लगने वाला समय एक बहुत अहम विषय है। परीक्षा को हमें केवल एक इवेंट की तरह नहीं देखना है, ये इवेंट से कहीं अधिक युवाओं के भविष्य, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। परीक्षाओं में कुछ महीनों की देरी युवाओं के लिए बड़ा संकट बन सकती है। कोचिंग की फीस, रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्च, ये बहुत बड़ा बोझ उस परिवार पर होता है। इसलिए हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम टाइम सर्टेनिटी के सिद्धांत को अपनाए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यूपीएससी को, देश के सभी चयन आयोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बाढ़ को लोक किए बिना हमारी एग्जामिनेशन साइकिल छोटी कैसे हो। वैसे मैं अभी गैलरी में देख रहा था, करीब 100 दिन कम किए हैं, ये तो अब बधाई के पात्र है ही है और मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, यह एक इक्विटी रिफॉर्म भी होगा। साथियों, आप सभी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस और डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। पिछले 10 साल में एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हुआ है जिसमें देश के सभी सीएस इन दिन साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। उसी प्रकार से 3 दिन के लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश के सभी डीजीपी इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं। और इन कॉन्फ्रेंस में एक प्रयास होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जाने, समझे, सीखे और उचित लगे तो उन्हें अपने राज्य में लागू करें। मुझे बताया गया है कि यूपीएससी हर वर्ष स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। अब उसको और विस्तार देकर के और अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अधिक नए विचारों से भरने के लिए भी उसके रूप रंग व्यवस्था को कैसे नया आयाम दिया जाए, उस पर जरूर आप सोचते होंगे। ऐसे प्रयासों से अलग अलग संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा होती है, लेकिन साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी ये कैसे बढ़े, इस पर भी फोकस चर्चा होनी चाहिए। क्रॉस लर्निंग के इस प्रयास से यूपीएससी को भी फायदा होगा और हर राज्य के चुनाव चयन आयोग को भी जरूर लाभ होगा। हमें प्रोसेस और प्रोसीड्यूरल के मानकों को स्टैंडर्डाइज करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इससे युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, एक और विषय, यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है।

ये काम भी निरंतर होते रहना चाहिए। मिशन कर्मयोगी के तहत जो आईगॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका उपयोग हमारी इन अंदरूनी व्यवस्थाओं के लिए भी, हमारे साथ काम करने वाली टीम के कैपेबिलिटी के लिए भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, आप सभी को हमेशा याद रखना है कि आपका काम युवा शक्ति के भविष्य से जुड़ा है, यानी युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का जो मिशन है आप उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और बीते वर्षों में आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई भी है। जब यूपीएससी का गठन हुआ था तब बड़े शहरों, समर्थ परिवारों और बड़े संस्थानों से पढ़े युवाओं को अवसरों का लाभ अधिक मिलता था, लेकिन आज गांवों और कस्बों के युवा भी पब्लिक सर्विस में पहुंच रहे हैं। हमारी बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1952 में सिविल सर्विसेज में विमेन कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 3% थी, 3%। आज यह 30%, 30% से अधिक हो चुकी है। और यूपीएससी के पूरे इतिहास में 4 विमेन चेयरपर्सन रही है पूरे यूपीएससी के इतिहास में। ताली बजने का समय अब आएगा। पूरे यूपीएससी के हिस्ट्री में 4, उसमें से 3 2014 के बाद बनी है। ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि देश में अवसरों का दायरा कितना बढ़ा है। साथियों, 1976 में जब यूपीएससी को 50 साल हुए थे, उस समय की तुलना में परीक्षा देने वालों की संख्या में 45 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है, 45 टाइम। यानी आज हमारे सामने टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल है। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अब हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि जब इतना बड़ा टैलेंट पूल हो, पूरी दुनिया जिस पर ईर्ष्या करती है, जब सामने इतना बड़ा टैलेंट पूल है, तो आप सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ग्राउंड लेवल पर लोग उसी को गवर्नमेंट मानेंगे। इसलिए आप सभी पर सही व्यक्ति के चयन का बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, यूपीएससी ने अपने पहले 100 साल में अपनी विश्वसनीयता को निरंतर मजबूत किया है। अभी संस्था को अपनी दूसरी सदी में नई संभावनाओं, नई चुनौतियों के हिसाब से विश्वसनीयता को और समृद्ध कर रहा है। जो वैल्यूज आज तक हमारी ताकत रही है, उन्हें बनाए रखते हुए भविष्य के अनुरूप अपग्रेड भी करना है। यूपीएससी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता,

0: Service Commission said that he spoke to the parents and the spouse of Captain Smith Machar, who saved many lives in an aircraft that was on its way from Dubai to Israel yesterday. And he said that this displays India's commitment to peace and to fight terrorism. The Prime Minister said that he was pleased to see a photograph of Netaji Subhash Chandra Bose, who appeared and passed the 1920 UPSC examination, and he had appeared for the exams and wrote the paper in Sanskrit. The Prime Minister observed that the Union Public Service Commission played a pivotal role in shaping the roadmap of our bureaucrats and our police officers. He said that the coming two decades would be extremely significant for every citizen and every institution as India embarks on Viksit Bharat. During Viksit Bharat governance, UPSC and state PSCs will play a great role. He said that two touchstones should be remembered by the civil servants. The first is nation first and the other citizen first. 2047's India will be totally different from now. Nagarik Devo Bhava should be the mantra of every civil servant as it is the mantra of the government. Service to citizens should be the top priority of officers of the central and state governments. Citizens require quick solutions to their grievances. The examination cycle's timeline may be brought down further, observed the Prime Minister. He urged the Commission to standardize processes and procedures and said that UPSC is the link between Yuva Shakti and Rashtra Shakti.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने यूपीएससी की ऐतिहासिक यात्रा, लोक सेवा की भूमिका और देश के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने इस समय युवाओं और लोक सेवा में उनकी भूमिका की चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में प्रतिभा, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के महत्व को भी रेखांकित किया। श्रोताओं, 1 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में आयोजित समारोह संघ लोक सेवा आयोग की 100 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा को एक साथ देखने का अवसर प्रदान करता है। 1 अक्टूबर 1926 को शुरू हुई यात्रा, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चरण और स्वतंत्र भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का संवैधानिक स्वरूप, इन सभी प्रवाणों से गुजरते हुए यूपीएससी ने आज अपना शताब्दी समारोह मनाया। आज का यह समारोह अतीत की विरासत को स्मरण करने के साथ साथ आने वाले समय के लिए नई सोच, नई दिशा पर विचार पर करने का एक अवसर भी है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस विशेष प्रसारण से मैं शहसियार खान, अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100

0: महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनके बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said over the 100-year journey of UPSC, the generations, governments, technology and syllabi have changed, but the trust in this institution remains as unwavering as ever. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Modi stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office, but to public service. He said today, 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive, good governance.
0: Hamari civil services se bhi naye badlav ki mang karti hai. इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की

சாந்தன். कुछ रिश्ते छांव की तरह होते हैं, कुछ यादें तुलसी की पौधी सी महकती हैं, कुछ बातें रसोई से उठती खुशबू की तरह मन में बस जाती हैं। घर इन्हीं से बनता है और आंगन इन्हीं से आबाद होता है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन, और इसी के साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए जिंदगी की इसी गर्माहट को महसूस करते हैं घर आंगन में, क्योंकि घर में आपसे कोई कहे चाहे ना कहे कि उसे आपसे प्यार है, लेकिन हाँ प्यार तो है, क्योंकि ये सिर्फ कहने का मोहताज नहीं होता, ये महसूस करने का मोहताज होता है।

फिल्म खरौंदा, आवाज रुना लला, आप सुन रहे थे ये गाना। अच्छा दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में हमारे त्योहारों का जो पूरा मौसम है वो शुरू हो जाएगा, तो बातें बस उसी से जुड़ी हुई थोड़ी आपसे करना चाहूंगी कि त्योहार आते हैं तो घर ना जैसे थोड़ा और घर हो जाता है, मानेंगे ना? और रसोई से आती खुशबू, दरवाजे पर सजावट, नए कपड़ों की तैयारी और सबसे बढ़कर अपनों के साथ बैठने का इंतजार। लेकिन आजकल त्योहार का ना एक हिस्सा हमारी मोबाइल की तस्वीरों में भी बसता है, मानेंगे ना? सजावट हुई तो तस्वीर, खाना बना तो तस्वीर, परिवार साथ बैठा दो तस्वीर। और कई बार तस्वीर लेने के चक्कर में हम उस पल को जीना ही भूल जाते हैं जिसे बाद में याद करना था। फिर जरा सोचिए, बचपन में मनाए गए त्योहारों की कितनी तस्वीरें हमें अभी भी सचमुच याद है? शायद बहुत कम, लेकिन यह जरूर याद है कि दादी के हाथ की मिठाई कैसी लगती थी, माँ सुबह से रसोई में क्या क्या बनाती थी, भाई बहनों के साथ कैसी शरारत होती थी, या त्योहार पर कौन दूर से चलकर हमारे घर आया था। याद रहती है ना, बहुत सी ऐसी हमारे बचपन की यादें हमारे साथ ता उम्र चलती रहती हैं। यानी त्योहारों की असली याद शायद कैमरे में कम और एहसास में ज्यादा रहती है। तो देखिए, ये हम जरूर कहेंगे कि तस्वीर जरूर खींचिए, उन्हें सहेजिए भी, मगर कुछ पल कैमरे से दूर रहकर अपने लोगों के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, अपनी सुनाइए, साथ खाना खाइए, हंसिए। क्योंकि कुछ तस्वीरें दीवार पर लग जाती हैं, कुछ मोबाइल में रह जाती हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो तस्वीर बिना भी पूरी तरह हमारे भीतर रहते हैं। लेकिन देखिए, तस्वीर होती हैं तो यादें भी होती हैं। तो आज उसी से जुड़ा सवाल मैं आपके साथ करना चाहूंगी कि आपको अपनी कौन सी ऐसी तस्वीर याद है जिसके साथ आपकी कोई बहुत गहरी याद जुड़ी हुई है, बचपन की हो, जवानी की हो, अभी की हो, कोई भी हो सकती है। क्योंकि ना आपको वो तस्वीरें आपके जहन में पूरे समय बस जाती हैं, कुछ ऐसी खास तस्वीरें होती हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। और आप हमें कहाँ बताएंगे? जी हाँ, fmgoldga@gmail.com पर।

मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म माया का ये गीत। और देखिए, तस्वीर से जुड़ा हुआ सवाल हमने आपसे किया है कि आपके जहन में अभी भी कौन सी ऐसी तस्वीर है जिसके साथ आपकी बहुत बेशकीमती यादें जुड़ी हुई हैं, तो हमें बताइए fmgoldga@gmail.com पर। और आप सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम घर आंगन। देखिए दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर अपने भीतर कई ऐसी स्मृतियां समेटे हुए हैं जो हमें सेवा, सम्मान और साहस के अलग अलग रूपों से परिचित कराती है। आज ही के दिन ना भारतीय सेना की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का स्थापना दिवस मनाया जाता है और सैन्य नर्सिंग की परंपरा भारत में 1888 से जुड़ी है, जबकि इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की औपचारिक स्थापना आज ही के दिन यानी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। युद्ध के कठिन समय से लेकर शांति के दिनों तक सैन्य नर्सों ने घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सेवा की यही भावना हमें आज के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की ओर भी ले जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने ना 1 अक्टूबर को यह दिवस उन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके अधिकारों, गरिमा और बेहतर जीवन के प्रति जागरूकता के लिए समर्पित किया है। उम्र बढ़ना जीवन की स्वाभाविक यात्रा है ना? और इसीलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि हम अपने बुजुर्गों की देखभाल कैसे करते हैं, बल्कि यह भी है कि उन्हें परिवार और समाज में कितना सम्मान और अपनापन देते हैं। इसी तारीख को हम डॉक्टर एनी बेसेंट को भी अपनी जयंती उनकी जयंती पर याद करते हैं। 1 अक्टूबर 1847 को जन्मी एनी बेसेंट ने भारत में शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वशासन के विचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और फिर स्मरण आता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का, जिनकी पुण्यतिथि भी हम 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं, मतलब आज ही उनकी पुण्यतिथि भी है। 1930 के पेशावर कांड में उन्होंने निहत्य प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उनका यह निर्णय साहस और अंतरात्मा की आवाज का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया था। 1 अक्टूबर 1989 को उनका निधन हुआ था। तो देखिए, एक ही

हमें चार अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं, है ना? और किसी की वर्दी में सेवा, किसी के जीवन में उम्र का सम्मान, किसी के विचारों में बदलाव की चाह और किसी के निर्णय में अदम्य साहस। 1 अक्टूबर शायद हमें यही याद दिलाता है कि समाज सिर्फ बड़ी घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हैं।

फिल्म शोर में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत। और देखिए हमारे सवाल के जवाब में हमारे साथ हमारे कौन कौन से दोस्त जुड़े हैं। तो ये हैं नवीन भाटिया जी मोतीनगर नई दिल्ली से, लिखते हैं स्कूल डेज की फोटो आज है जो आज तक संभाल के रखी है 10th क्लास की। हाँ, वो वाले समय की ना फोटो सच में सबको दिन में और दिल में हमेशा रहती है। फिर हमारे साथ कौन जुड़े हैं, ये है उमेश कुमार जी खयाला से, लिखते हैं नमस्ते मैडम जी, हमारी बचपन की तस्वीर हम सब बहन भाई की साथ में वो आज तक है और हमारे माताजी पिताजी की वो तस्वीर भी अच्छी लगती और याद आती है जब हम छोटे छोटे दिखते थे। हाँ, ये सारी बातें ना हम सभी को बहुत याद आती हैं। बचपन की कुछ तस्वीर सच में हमारे दिमाग में हमारे ख्यालों में हमेशा रह जाती है। फिर अच्छा चरणदास जी लिखते हैं, अच्छा राजू अग्रवाल जी, केशव, विनोद टेलर, साहिल चौधरीवास हिसार हरियाणा से लिखते हैं कि आपके नमस्कार कहती आवाज़ पहचान गया। क्या बात है, शुक्रिया। मतलब आप हमारे साथ में इतने दिल से जुड़े हैं कि आप हमारे लहजे से पहचान जाते हैं कि कौन बोल रहा है। धन्यवाद। ये लिखते हैं कि मैं 3 साल का बच्चा था तब से लेकर आज तक सब कुछ मेरे दिमाग में मौजूद है, लेकिन एक तस्वीर कभी नहीं भूलूंगा, मेरी बेटी का लड़का। ओहो, ये ना देखिए मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनका लिख रहे हैं कि उनके 7 साल का मासूम हम छोड़कर चला गया। देखिए मतलब ये मेरी संवेदना है आपके परिवार के साथ, और आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर इसके बाद में हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी जी, इनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं, आदरणीय सोनाली जी स्वस्थ साधर प्रणाम, आपको भी हमारा प्रणाम सर। फिर लिखते हैं कि बचपन की बहन और भाइयों की ब्लैक एंड वाइट ग्रुप फोटो जो आज भी हमारे दिल में बहुत बड़ी याद है और हमेशा रहेगी। आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मुखी जी। आप सभी दोस्त हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगातार कहीं ना कहीं एक प्यार जैसी कौंधती रहती हैं, एक लहर उठाती रहती हैं, कुछ तस्वीर दिमाग में हमेशा बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, 100.1 MHz FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका और हमारा प्यारा कार्यक्रम घर आंगन। साथ ही आप हमें आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी सुन पा रहे हैं, और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। देखिए हम अक्सर चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा हो, है ना, आप भी यही चाहते हैं। तो सड़कें चमकती रहें, गलियों में कूड़ा न हो, नालियां साफ रहें और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी ना दिखाई दे। वाह वाह, कितना अच्छा लगता है ना ऐसा। हम सभी चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला इतना ही साफ सुथरा हो। लेकिन एक सवाल है, क्या साफ सुथरा शहर सिर्फ सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी है? देखिए सुबह जब सफाई कर्मी सड़क पर झाड़ू लगाता है तो उसके कुछ घंटे बाद उसी सड़क पर कचरे का टुकड़ा कौन छोड़ जाता है? कूड़ेदान सामने होते हुए भी उसके बाहर कचरा कौन रख देता है? और घर से निकला छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जब नाली में पहुंचता है तो वह आखिर वहां तक आता कैसे है? सोचा है कभी? सोचा तो होगा, क्योंकि सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शहर हमारा भी तो है। फिर साफ सफाई को सिर्फ झाड़ू और कूड़ा उठाने तक सीमित कर देना शायद ठीक नहीं, यह हमारी रोजमर्रा की आदतों से भी तो जुड़ा हुआ है। घर का कचरा सही जगह पर डालना, गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा न फैलाना और किसी दूसरे की मेहनत का सम्मान करना, ये छोटी छोटी बातें मिलकर शहर की तस्वीर बदलती हैं। और शायद सफाई कर्मी के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि वह जिस जगह को साफ करके जाए हम उसे दोबारा गंदा ना करें, क्योंकि शहर की सफाई में झाड़ू किसी एक के हाथ में हो सकती है लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक समावेशी इसमें योगदान जरूरी है ना। फिर आप जहां जाएंगे हर जगह आपको खूबसूरत निगाहें और खूबसूरत चीजों का दर्शन होगा, है ना।

फिल्म प्रेम परबत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। देखिए हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ी है, लिखते हैं सोनाली बेटा राम राम राम राम सर। फिर ये लिख रहे हैं कौन, ये हैं गौरीशंकर जी नांग।

से ये लिखते हैं, बचपन में जो दीवार पर तस्वीर बनाया करते थे दिवाली के टाइम पर, वह आज भी याद है। उस दौरान घर में कैमरे का साधन भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, लेकिन रेडियो सुनते थे। वह यादें दिमाग में फिट रहती हैं। जो मन में खुशी उस टाइम पर महसूस होती थी वह आज नहीं है। अब तो अपनी सोच बदल कर खुश रहने की कोशिश करते हैं, सब अच्छा ही होगा। सच बात है, और आपकी यही पॉजिटिव जो बातें हैं, जो सकारात्मक सोच है, ये हमेशा बना कर रखिएगा। फिर हमारे साथ ये जुड़े हैं चौधरी वास जी, जी पंकज बिंदल जी हैं। ये लिखते हैं कि उनके पिताजी को तस्वीरों से बहुत प्रेम है और वो पूरे समय अपने घर में अपने पसंदीदा लोगों की तस्वीरें लगा के रखते हैं। क्या बात है। देखिए, ऐसी ही चीज़ें जो होती है ना, वो हमें अपने उन बीते दिनों की याद दिलाती है जब हमारे पास वो जो समय था वो शायद उन्हीं में कैद होकर रह गया। तो उन तस्वीरों को देखकर हम लगातार उन्हीं सारी बातों को दोबारा से याद करते हैं। चलिए, जब हम बात करते हैं पुराने समय की तस्वीरों की, तो ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताना जरूरी समझते हैं जो हमारी धरोहर से जुड़ी हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। यह है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का भूसरा गांव। ये ना अपनी एक ऐसी पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है जिसमें सुई और धागे के सहारे कपड़े पर सिर्फ आकृतियां ही नहीं बल्कि जीवन के रंग भी उकेरे जाते हैं। यह कला, पता है आपको क्या नाम है इसका? ये है सुजनी कढ़ाई। सुजनी की परंपरा बहुत पुरानी है और पहले पुराने कपड़ों की कई परतों को सिलकर उन पर रंगीन धागों से कढ़ाई की जाती थी। इनका इस्तेमाल खास तौर पर नवजात शिशुओं के लिए बिछावन या ओढ़नी के कपड़े के रूप में किया जाता था। और धीरे धीरे इस कढ़ाई में रोजमर्रा के जीवन, प्रकृति और सामाजिक अनुभवों से जुड़े चित्र भी दिखाई देने लगे। फिर आपको पता है दोस्तों, भूसरा की जो महिला कारीगरों ने ना इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। खास बात यह है कि सूजनी कढ़ाई सिर्फ सजावट नहीं रही बल्कि ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी कल्पना को अभिव्यक्ति देने का माध्यम भी बन गई। इस पारंपरिक कला को 2006 में भौगोलिक संकेत यानी GI मान्यता मिली। सोचिए, एक सुई, कुछ धागे और कपड़ों का एक साधारण सा टुकड़ा और उससे बनती ऐसी कहानी जो पीढ़ियों का सफर तय कर लेती है। यही तो हमारी लोककला की खूबसूरती है ना? हाथों का हुनर जब परंपरा से मिलता है तो साधारण कपड़ा भी एक विरासत बन जाता है। और इसी तरह विरासत है क्या हमारे लोकगीत भी। तो आइए सुनते हैं लोकगीत की मिठास लिए ये एक गाना जो फिल्म हीरा मोती से है।

फिल्म हीरा मोती में आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में ये एक बहुत प्यारा सा गीत। अच्छा देखिए, बातों बातों से बातें निकलती हैं तो यादें भी आपको बार बार आती है। तो ऐसे ही हमारे जो श्रोता हैं उमेश कुमार जी, वो एक और हमें मेल करते हैं और फिर उसमें अपनी यादें सहेज रहे हैं। कह रहे हैं, नमस्ते मैडम जी, मेरे पिताजी ने दीवार पर लक्ष्मी माता जी की तस्वीर बनाई हुई थी जब हम छोटे थे, वो तस्वीर भी आज तक बहुत याद है। अरे वाह, देखिए फिर ऐसी ही तो चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहती हैं। तो बस आप भी हमारे साथ अपनी यादों को संजोइए, हमें बताइए आपकी कौन सी तस्वीर आपकी सबसे ज्यादा करीब है। दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे। वह घर से बाहर निकले तो मन में डर न हो, रास्ते सुरक्षित हों और उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन बेटी की सुरक्षा की बात करते हुए, क्या हम कभी यह भी सोचते हैं कि उसे खुद अपने लिए खड़े होने के काबिल कैसे बनाया जाए? बेटी को ना सिर्फ यह बताना काफ़ी नहीं है कि किन रास्तों से बचना है, किससे सावधान रहना है, बल्कि उसे यह भी पता होना चाहिए कि मुश्किल परिस्थिति में अपनी बात कैसे रखनी है, मदद कैसे मांगनी है, अपने फैसले कैसे लेने हैं और अपने अधिकारों को कैसे समझना है। और आत्मनिर्भरता सिर्फ नौकरी करने या पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। अपने छोटे बड़े फैसले खुद लेने का भरोसा, पैसों को समझने की आदत, घर और बाहर के जरूरी काम संभाल पाने का आत्मविश्वास, ये सब उसकी आत्मनिर्भरता का ही हिस्सा है। कई बार ना प्यार में हम बेटियों के लिए हर मुश्किल आसान कर देते हैं और करना कर देना चाहते हैं, लेकिन हर मुश्किल को उनसे दूर कर देना शायद उन्हें मजबूत बनाने का तरीका नहीं है। देखिए, प्यार कीजिए, लाड़ कीजिए, लेकिन ना उन्हें रास्ते खुद तय करने दीजिए, कुछ फैसले खुद लेने दीजिए और कभी कभी गलती करने की गुंजाइश भी दीजिए, है ना? क्योंकि बेटियों के साथ हमेशा कोई और खड़ा रहे यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जब कभी उसे अकेले खड़ा होना पड़े तब उसे अपने भीतर की ताकत पर भरोसा हो। सुरक्षित बेटी जरूरी है, लेकिन सुरक्षित होने के साथ अपने फैसले खुद लेने वाली, अपने पैरों पर खड़ी और अपने जीवन की दिशा तय करने वाली बेटी, शायद यही उसकी असली मजबूती है।

फिल्म खामोशी द म्यूजिकल, इसमें आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति के साथ कुमार शानू की आवाज़ में ये गीत। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप भी मानेंगे कि कभी कभी समझ शब्दों की बहुत मोहताज नहीं होती, है ना? सामने वाला कुछ भी कहे या कुछ कहे भी नहीं, फिर भी उसकी आंखों का ठहराव, आवाज़ की हल्की सी थरथराहट या अचानक आई खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। रिश्तों की असली खूबसूरती शायद इसी में है कि हर बात कहनी ना पड़े, कुछ बातें इशारों में ही पढ़ ली जाएं। किसी के मैं ठीक हूँ कि पीछे जो छिपी उदासी है उसको पहचान लेना, किसी की हंसी में थकान सुन लेना या बिना पूछे उसके पास चुपचाप बैठ जाना, यही तो वह समझ है जो कभी शब्दों से कहीं आगे होती है ना? और जिन्हें समझना आता है उन्हें हर बात बतानी नहीं पड़ती, और जिन्हें नहीं समझना उनके सामने पूरी कहानी कह देने के बाद भी कुछ अधूरा ही रह जाता है। इसलिए आप भी समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बार बहुत सी बातें अनकही भी होती हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं।

0: फिल्म आंगन की कली। इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और दोस्तों, अब घड़ी हमें यही इशारा कर रही है और आप भी समझ गए कि अब हम इस कार्यक्रम को आगे और नहीं बढ़ा सकते। ये कार्यक्रम का जो सफर आपने तय किया, वो किया आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब खुश रहें। इन्हीं मनोकामनाओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए अनुमति, नमस्कार। घर आंगन,
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों।
1: हम ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल और एकीकरण पर बहुत जोर दे रही है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर श्री सिंह ने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत कर दिया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर और कुशल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। फाइनल शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एशियाई खेल 2026 में भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखो यांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। गणेश ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिल्म प्रेम गीत के उसी सुहाने सफर पर। जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ किस्से, उसके संगीत के बारे में, उसकी कहानी के बारे में, और सुनेंगे वो गाने जो आज भी आपकी और हमारी जुबान पर चढ़े हुए हैं। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ, और अपने संदेशों के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, और शुरुआत में लीजिए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म प्रेम गीत से। तो करते हैं सफ़र की शुरुआत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ। और आज की फिल्म प्रेम गीत सन 1981 में बनी ये बॉलीवुड फिल्म, जिसका निर्देशन किया सुदेश सर ने। और इस फिल्म के कलाकारों की अगर बात करें तो राज बब्बर और अनीता राज के खूबसूरत अदाकारी से सजी ये फिल्म प्रेम गीत। और अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इतनी इमोशनल, इतनी प्यारी कहानी है ना, कि वाकई में इस फिल्म को देखते हुए ना हर कोई इंसान इस फिल्म की कहानी में डूब जाता है। और कहानी हम आपको बता देते हैं भाई, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो कहानी सुनकर मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आप ज़रूर इस फिल्म को देखने का मन करेगा आपका। फिल्म की कहानी घूमती है आकाश यानी कि राज बब्बर के इर्द गिर्द, जो कि

मशहूर शायर हैं और अपने अलग नाम यानी कि निशांत से वो शायरी लिखते हैं। आकाश की जो शायरी है उसकी दीवानी होती है शिखा यानी कि अनीता राज, जो कि एक डांसर हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की हैं। खतों से सिलसिला शुरू होता है उन दोनों का धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन होती हैं, बहुत बड़ी दीवानी होती हैं आकाश की शायरी की, और ख़तों से सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में बदल जाता है और आकाश अपनी शायरी से शिखा का दिल जीत लेता है। दोनों सपने देखते हैं कि शादी में बनने का, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में तो उनके कुछ और ही मन लिखा था। कहानी में ट्विस्ट या कहें कि एक दर्दनाक मोड़ आता है जब अचानक से शिखा की तबीयत खराब होती है और जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि शिखा को ब्रेन ट्यूमर है और उसकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। ये बात जानने के बाद आकाश पर तो मानो मतलब एकदम से बहुत सारा दुख आकर के गिर जाता है और वो बहुत परेशान होता है, लेकिन शिखा के सामने वो सब सच्चाई नहीं आने देता है और अपने दिल में उस दर्द को छिपाकर वो शिखा की जो ज़िंदगी होती है पूरी तरह से उसको खुशियों और प्यार से भरने में लग जाता है। शिखा को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देता कि उसकी जो सांसें हैं वो गिन कर चल रही हैं। और अंत में आता है फिल्म का आखिरी हिस्सा या कहें कि क्लाइमेक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। यहाँ पर शिखा आकाश की बाहों में दम तोड़ देती है, लेकिन उसके प्यार का गीत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक छोटे रूप में कहें तो जो प्रेम गीत फिल्म है वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि प्यार में त्याग, समर्पण और हर पल को खुलकर जीने की एक खूबसूरत सी कहानी है, है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो लीजिए चलते हैं अगले पड़ाव पर आशा जी की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 1981 की ये खूबसूरत सी रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म प्रेम गीत। जी दोस्तों, इस फिल्म यानी कि प्रेम गीत से हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मिली एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री। जी हाँ दोस्तों, वो अभिनेत्री अनीता राज। जी हाँ दोस्तों, अनीता राज की ये पहली फिल्म थी, और इस पहली ही फिल्म में उन्होंने काम किया राज बब्बर जी के साथ में, और उनकी दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इतनी पसंद की गई कि वो रातों रात लोगों के दिलों पर छा गई। और राज बब्बर साहब को इस फिल्म में लेने के पीछे भी एक अलग ही कहानी है, क्योंकि राज बब्बर साहब ने उससे पहले सन 1980 में B.R. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में काम किया था, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। और उनकी उस फिल्म में जो एक्टिंग थी, इतनी दमदार एक्टिंग उन्होंने की थी कि इंडस्ट्री को उन्होंने पूरी तरह हिला के रख दिया था। और हर निर्माता निर्देशक समझ गया था कि भाई, ये निर्द जो ये निर ये जो कलाकार है, ये अभिनेता है, हर किरदार में, हर तरह के किरदार में जान फूंक सकता है। और क्योंकि जो हमारे इस फिल्म के निर्देशक हैं, उनको चाहिए था कोई ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा अभिनेता जो कि उनके इस बहुत ही इमोशनल और थोड़े गहराई से जुड़े हुए किरदार में जान फूंक सके, और उस किरदार के लिए राज बब्बर से बेहतर अभिनेता कोई हो ही नहीं सकता था। और यही सोचकर सुदेश इस्सर जी ने इस फिल्म में नए कॉम्बिनेशन, एक नई फ्रेश जोड़ी को लाने का फैसला किया, और बनी ये खूबसूरत जोड़ी अनीता राज और राज बब्बर साहब की। वैसे आपको बता दें कि जो अनीता राज हैं, वो अभिनेता जगदीश राज जी की बेटी हैं, और उन्होंने इसी फिल्म से किया अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत। वैसे जब अनीता राज इस फिल्म में आई, और उन्होंने जब पहला दिन शूटिंग का, तो वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत नर्वस थी कि राज बब्बर साहब जो कि उस वक्त में बहुत ज़्यादा फेमस थे, और उनकी जो आवाज़ थी वो जिस तरह की एक इंटेंस आवाज़ उनकी थी, उसका तो उस वक्त में हर कोई दीवाना था। उनके साथ काम करते करते वो बहुत नर्वस थी, और जब इस फिल्म की शूटिंग शिमला में हो रही थी, एक रोमांटिक डांस सीन की, तो अनीता राज जी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। और जब राज बब्बर साहब ने ये देखा कि भाई, जो ये लड़की है तो बहुत बुरी तरह घबराई हुई, इस तरह से कैसे फिल्म की शूटिंग होगी, किस तरह से केमिस्ट्री दिखेगी, तो वो अनीता जी के पास गए और उन्होंने बोला कि देखो भाई, मुझे समझो ही नहीं कि मैं राज बब्बर हूँ, तुम मुझे आकाश समझो जो कि तुम्हारा दोस्त है, बिल्कुल उसी की तरह, अपने एक दोस्त की तरह से मेरे साथ में काम करो। और बस फिर क्या था, अनीता राज का जो डर है वो एक चुटकी में गायब हो गया, और उसके बाद दोनों ने कितनी सहजता के साथ में एक्टिंग की, और किस तरह की केमिस्ट्री उनकी पर्दे पर दिखी है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल फिल्म प्रेम गीत से जगजीत सिंह की आवाज़ में।

जी दोस्तों, क्या खूबसूरत गीत, क्या शब्द है ना। वाकई में जब इस फिल्म के संगीत की बात आती है ना, तो वाकई पूरी तरह से दिल में उतर जाता है, क्योंकि जो इस फिल्म के गीत हैं उनके शब्द भी पूरी तरह से हमारी रूह में उतर जाते हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि इस फिल्म का जो संगीत है वो भारतीय सिनेमा के गजल सम्राट जगजीत सिंह जी ने बनाया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का पूरा संगीत जगजीत सिंह जी ने तैयार किया, और इसके जितने भी दिलकश गीत हैं उनको लिखा मशहूर गीतकार इंदीवर जी ने। शायरी

संगीत का एक खूबसूरत बेजोड़ तालमेल जो आज भी सुनने वाले को एकदम तरोताज़ा कर देता है। और उस पर ये गीत जो कि अभी आपने सुना, भाई ये तो जगजीत सिंह जी की करियर का वो गीत है, ये उनकी पहचान इस गीत से है। बेशक उन्होंने बहुत सी गज़लें की, लेकिन ये गीत ऐसा है कि इस गीत को सुनते ही सबसे पहले जगजीत सिंह का नाम याद आता है ना जी दोस्तों। और जब हम प्रोग्राम को करते हैं तो हमें भी याद आते हैं हमारे बहुत से श्रोता जिनके संदेश हम तक आ चुके हैं। संदेश हम शामिल कर लेते हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव जगुताई, कुमार संचित, प्रथमेश सरवद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजल का पंजाब खेड़ा परिवार से जुड़े हुए हमारे साथ भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवांशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंडा टोला बालो छत्तीसगढ़ से डोमिंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और निमित जी हमारे साथ जुड़े हैं। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता गीता जुड़े हैं। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, शिप्रा गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांवफरा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुँचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जिला पश्चिम सिंह भूप चाईभासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि गोप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह, मीता जी जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से। और ये अगला संदेश मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता जी का है और ये संदेश आया है राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विनोद टेलर, साहिल का गांव चौधरीवास, हरियाणा हिसार से। और ये अगला संदेश आया है हमारे पास कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से, और इसको भेजने वाले हैं संदीप, ज्योति, मन्नत मक्कड़ और भारत मक्कड़ जी का। डीबी राणा जी जुड़े हमारे साथ नेहरू विहार से। और ये अगला संदेश हम तक आया अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता और नन्हे पोती अन्विका, तनुश्री गुप्ता जी का, पीहरा बाजार, झुमरी तलैया से। और ये अगला संदेश हम तक पहुँचाने वाले हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पल्स और विलिस डिकैस्ट्रो के साथ जनकपुरी सहारनपुर से। सुदर्शन मुखी अनीता जी के साथ जुड़े हैं, सिमरन मुखी उनके साथ हैं। शांति नगर सोनीपत से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से जी दोस्तों। और अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाया है स्वर्ण सिंह जी का, एक बार फिर से संदेश है गाँव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और उनके परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े। और दोस्तों आज हमारे इस कार्यक्रम एक ही फिल्म में हमने बात की, फिल्म प्रेम गीत के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म का नाम बिल्कुल पूरी तरह इसकी कहानी और गीतों पर सार्थक होता है, प्रेम गीत। जितने भी गीत हैं सब प्यार से भरे हुए हैं। तो दोस्तों अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए इस कार्यक्रम की समाप्ति की, जाएगा कहीं नहीं। 2:30 पर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम एक ही कलाकार, और 3:00 मैटिनी मेलेडीज़ के साथ अर्चना गोयल जी। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 1:40 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPSC दे शताब्दी समारोह नूं संबोधन कीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार हथियारबंद फौजां विच तालमेल अते एकीकरण ते बेहद जोर दे रही है। सरकार ने खंड डीलरां लई भंडार रखण दी म्याद घटा के 15 दिन कीती ते भंडार रखण दी सीमा 1000 क्विंटल तय कीती है। केंद्रीय व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EU आजाद व्यापार समझौते ते दस्तखत करन अते लागू करन वल होई प्रगति दी समीक्षा की थी। एशियाई खेडां विच भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु ने मर्दां दा व्यक्तिगत कांसी दा तमगा जित्तिया है। ते मर्दां दे क्रिकेट विच भारत ने श्रीलंका नूं 124 रनां नाल हरा के पाकिस्तान खिलाफ फाइनल विच थां बना ली है। खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि UPSC दे 100 सालां दे सफर विच पीढ़ियां, सरकारां, टेक्नोलॉजी अते सिलेबस बदले ने, पर इस संस्था विच विश्वास पहला वांग ही अटुट बनिया होया है। आज नवी दिल्ली दे भारत मंडपम विखे संघ लोक सेवा कमिशन UPSC दे शताब्दी समारोह नूं संबोधन करदिआं श्री मोदी ने नौजवानां नूं जनतक सेवा विच लियाउण दी जरूरत ते जोर दित्ता, जो सरकारी अहुदिआं तों नहीं सगों जनतक सेवा तों प्रेरित होण।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं,

0: हुए चुनाव मोदी ने सरकारी सर्विसेज में ऐसे नौजवानों को लाए जाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों के हुसूल के बजाय अवाम की खिदमत के जज्बे से सरकारी मुलाजिमत इख्तियार करें।
1: हम ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत काम के एक नए कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है जिसका बुनियादी उसूल अवाम दोस्त, निहायत सरगर्म और बेहतर हुक्मरानी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत का मंत्र है नागरिक देवो भवा, यानी शहरी ही सबसे अहम है और शहरियों की खिदमत सरकार की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है उसे बड़ी हद तक यूपीएससी और रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारों के जरिए यकीनी बनाया जा सकेगा। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 बरस के दौरान कई अहम संगे मील तय किए हैं और इसमें कई नए पहलू शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए की जाने वाली सरकारी तकर्रियों में इजाफा हुआ है जबकि भर्ती के निजाम में शफाफियत भी बेहतर हुई है जिसके नतीजे में अवाम का एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। यूपीएससी के चेयरपर्सन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से मुल्क की नौजवान नस्लें मुल्क की खिदमत के ख्वाब लेकर कमीशन के पास आती रही हैं और यूपीएससी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि उम्मीदवारों को सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर ही परखा जाए। इस मौके पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का और यादगारी डाक टिकट जारी किया और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया किताब का भी इजरा किया। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है और स्टॉक रखने की हद 1000 क्विंटल मुकर्रर की है। इसका इतलाक इस महीने की 15 तारीख से होगा और ये नवंबर तक नाफिज रहेगी। सारिफिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि सरकार ने शक्कर का स्टॉक रखने के जाब्तों पर नजरसानी की है ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत मुसल्ला अफवाज को मजबूत करने पर मखसूस तवज्जो दे रही है। आज नई दिल्ली में दिफाई अकाउंट्स के दिन के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि अगर मुआशी निजाम को भी मजबूत कर दिया जाए तो इससे पूरा दिफाई इंतजाम और भी मुअसर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिफाई अकाउंट्स का महकमा पूरी वजारत दिफा को जोड़ता है और ये दिफाई निजाम की बुनियाद है। जनाब सिंह ने महकमे से अपील की कि कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर मियारी ऑडिटिंग में बेहतरीन इकदामात को अपनाया जाए। जनाब सिंह ने बताया कि गुज़श्ता माली साल में अखराजात का इंदिराज तकरीबन 100% रहा। उन्होंने मजीद कहा कि ये हुसूलियाबी एक संगे मील की हैसियत रखती है। भारत ने खुराक की यकीनी फराहमी के लिए खुराक को आलाई कार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने यह बात अमरीका के मिलवॉकी में G20 वजराए तिजारत की मीटिंग के इजलास के दौरान कही। जनाब गोयल ने उजागर किया कि मुश्तरक मकसद ये होना चाहिए कि खुराक की यकीनी फराहमी इस्तेहकाम और तआवुन का जरिया बनी रहे। वजीर तिजारत ने भारत यूरोप यूनियन आजाद तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत और इसके निफाज की जानिब पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने G20 वजराए तिजारत की मीटिंग के मौके पर तिजारत और इक्तिसादी सिक्योरिटी के यूरोपीय कमिश्नर के साथ बातचीत की। सऊदी अरब के हुकाम ने ओमान से ताल्लुक रखने वाले उसको पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दुबई से इसराइल के शहर तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज के कैप्टन को चाकू मारकर जख्मी करने के बाद हवाई जहाज को गिराने की कोशिश की थी। ओमान के को पायलट ने जहाज के कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया। 2 मिनट में यह तैयारा तकरीबन 17,400 फीट नीचे आ गया।

0: बचाने के लिए बेपनाह हौसले और गैर मामूली अज़्म का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा है और ये मुसलसल आज भी जारी है। आज हम इस खसूसी सीरीज में इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि कैसे असम में ब्रह्मपुत्र दरिया पर बोगीबील पुल की तकमील से लोगों की जिंदगी में तब्दीली आई है।
1: ब्रह्मपुत्र दरिया पर तामीर शुदा बोगीबील दरिया शुमाली किनारे को जनूबी किनारे से जोड़ता है। साल 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इस पुल के इफ्तिताह के बाद आसाम के नकलो हमल के निजाम को नई तहरीक मिली। 2018 में इस पुल का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने इसे खित्ते के अवाम के लिए लाइफ लाइन से ताबीर किया था। आसाम से राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला।
0: तालिबान की तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में कम से कम 9 अफगान शहरियों की मौत हो गई जबकि 11 दीगर जख्मी हो गए। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कल हुए हमलों में कुनार के शल्तान जिले और हेलमंद के गार्मसेर जिले में 3 मकानात तबाह हो गए। ये ताजा हमले अफगानिस्तान के मुतअद्दिद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में तेजी आने के दौरान किए गए। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिनकल नोबल ने छोटी कश्ती के मुकाबले में आज चांदी का तमगा जीता। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का 21वीं सदी का काम करने का माहौल अवाम नवाज पहले से सरगर्म और अच्छी हुक्मरानी के उसूल पर मबनी है। वजीर आजम ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फसाइल को मौसर अंदाज से बरूए कार लाने की खातिर दिफाई बंदोबस्त के लिए मजबूत माली निजाम पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के वजराए तजारत की मीटिंग में खुराक की यकीनी फराहमी और इश्तराक की जरूरत उजागर की है। और जापान में जारी एशिया खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasizes integrated financial systems for defence management and resource utilization. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress. Pakistan's airstrikes kill 9 civilians in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. And in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking the overall tally to 63, including 10 gold. Prime Minister Narendra Modi has said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Modi stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service. He said today, 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive, good governance. Mr. Modi said an examination should not be considered just an event that, as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth and therefore the examination system should follow the principle of time certainty.
3: हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बजट

0: assurance to the Central Water Commission that any decision taken by the Commission in the larger interest of both states will be acceptable to them. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
1: At least 9 Afghan civilians, including women and children, were killed and 11 others injured in Pakistani airstrikes on civilian homes in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. According to Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid, the strikes also destroyed 3 residences in Sultan district of Kunar and Garmsir district of Helmand. Condemning the latest strikes as an act of aggression, Mujahid accused Pakistan of using attacks on Afghanistan to divert attention from domestic political and economic problems. At the Asian Games 2026, today India opened its sailing medal account as Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble secured silver in the men's skiff competition today, finishing behind China after 9 races. Indian compound archer Ganesh Maniratnam Tirumuru produced a commanding performance to win the men's individual bronze medal. Ganesh, who was a part of the gold-winning men's team yesterday, defeated Vietnam's Khong Duc Thanh in the bronze medal playoff after bowling out of individual gold contention with a semi-final loss. In squash, India settled for a bronze medal after losing 1-2 to Hong Kong in the women's team semi-final. India were assured of a medal in the Asian Games Sepak Takraw men's quadrant competition after the team entered the semi-finals with a 2-1 win over Myanmar. India's overall tally has reached 63, including 10 gold, 22 silver and 31 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasises integrated financial systems for defence management and resource utilisation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers' meeting, reviews India-EU FTA progress, and in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में

0: यहाँ सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने ये पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIR News Hindi और पब्लिक पर

0: @AIRNewsAlerts को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
2: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।

0: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। नमस्कार दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे कोई अपना बहुत पुराना किस्सा सुना रहा हो, और कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं जिनका संगीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचता, सीधे दिल में उतर जाता है। आज के हमारे कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम याद कर रहे हैं एक ऐसी महान हस्ती को जिनकी धुनों में बंगाल की मिट्टी की खुशबू थी, लोक संगीत की सादगी थी और शास्त्रीय संगीत की गहराई थी और आम इंसान के दिल की धड़कन थी। नाम है सचिन देव वर्मन, यानी SD वर्मन।
1: वह कौन है तेरा।
0: और हाँ, कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों।

एस जी वर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को त्रिचुरा के राज परिवार से जुड़े परिवार में हुआ था, लेकिन उनका मन राजसी सुख सुविधाओं से ज्यादा संगीत की दुनिया में रमता था। उन्होंने लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और बंगाल की संगीत परंपरा से गहरा प्रभाव लिया। उनकी संगीत यात्रा की सबसे खास बात थी उनकी सादगी। वो जानते थे कि अच्छी धुन को बहुत ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं होती। उनका संगीत सुनते हुए एक बात महसूस होती है कि वो धुन को कभी बोझिल नहीं होने देते थे। बहुत कम साज, बहुत सरल धुन, लेकिन असर इतना गहरा कि गीत बरसों बाद भी ताजा लगता है।

संगीत की दुनिया में उन्होंने सितार वादन के साथ साथ कदम रखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों तथा हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। मिली, अभिमान, ज्वेल थीफ, गाइड, प्यासा, बंदनी ये उनकी प्रमुख फिल्में थीं जिन्होंने सिनेमा में अपना इतिहास बनाया। उन्होंने कुछ फिल्मों में गीतों में अपनी आवाज़ भी थी, जिसमें कुछ गीत बेहद लोकप्रिय हुए जो आज भी लोगों के हृदय में बसे हैं, जिसमें है आराधना का वो गीत काहे को रोए, वाकई दिल को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए बढ़ते हैं अब आपके संदेशों की तरफ। हमें ये संदेश मिला है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, भेजने वाले हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, पंचकुला। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशोरीधान खुराना। और ये मैसेज हमें भेजा है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला, ज़िला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह और शुभदीप सिंह। और तुलसी जी का एक और मैसेज आया और ये कह रहे हैं कि अर्चना गोयल जी नमस्कार, बड़े दिनों के बाद आपकी मधुर आवाज़ सुनी है कि कलाकार में आज एस डी वर्मन जी को याद किया जा रहा है और गाने इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो तुलसी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाला चौक गौरैया जालंधर से हमें अपना संदेश भेज रहे हैं। और ये हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। और इंद्रभान सिंह जी हमें ये मैसेज कर रहे हैं कि एस डी वर्मन के बारे में जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, उनके गीत पसंद आ रहे हैं। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अपना संदेश भेज रहे हैं। इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। आप हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर।

वीर जसीस सीता और गीता, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम और गंगेश्वरी नेताम। गांव कुम्हार हैडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराई राही, मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमें अपना संदेश भेज रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिवार। और ये लिख रहे हैं कि आज आप महान संगीतकार सचिन देव वर्मन के बारे में, जिन्हें हम सचिन दा भी कहते हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनके बारे में बेहतरीन बातें रोचक किसी और नगमे सुनवा रहे हैं। हम इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और हमें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। तो धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सब संदेश के बाद सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म बंदनी से।

बर्मन दा के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में एक बात प्रचलित थी कि वो तंग हाथ वाले थे, यानी ज्यादा खर्चा नहीं किया करते थे। उन्हें पान खाने का बेहद शौक था और वो अपने पान भारतीय विद्या भवन चौपाटी से मंगवाते थे। वो फुटबॉल के काफी शौकीन थे। एक बार मोहन बागान की टीम हार गई तो उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि वो आज खुशी का गीत नहीं बना सकते, यदि कोई दुख का गीत बजवाना हो तो वो उसके लिए तैयार हैं। दरअसल वो जो भी काम करते थे पूरी तल्लीनता के साथ किया करते थे।

एस डी वर्मन को 1958 में संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड के साथ साथ 1958 में एशिया फिल्म सोसाइटी अवार्ड भी प्राप्त हुआ और 1970 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म आराधना के लिए। वर्मन दा के संगीत में रचनात्मकता का अलग ही रूप दिखाई देता है, जैसे गाइड का गीत वहाँ कौन है तेरा, यहाँ प्रेम है, दर्शन है, जीवन की उलझने हैं और उससे निकलने की कोशिश भी। उनकी धुनों में यही विविधता उन्हें बाकी संगीतकारों से अलग पहचान देती है। उनके पुत्र आरडी वर्मन जो कि एक मजे हुए संगीतकार रहे, उनमें भी यही विविधता थी संगीत की।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आप सभी को अर्चना गोयल का नमस्कार। कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज में, मैटनी मेलोडीज वो कार्यक्रम जिसमें हम आपको गोल्डन इरा के गीत सुनाते हैं। दोस्तों, कभी कभी कोई गीत सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि दिल में उतर जाता है, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जिसमें किसी के आने की खुशी भी होती है और उसके चले जाने के बाद बची हुई यादों की कसक भी। ऐसा ही एक खूबसूरत गीत है फिल्म आकाशदीप से। लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत अपने भीतर एक ऐसी भावनात्मक दुनिया समेटे हुए है। इस गीत की खूबसूरती सिर्फ इसके बोलों में नहीं बल्कि इसकी धुन और गायकी में भी है। तो चलिए सुनते हैं ये मीठा सा गीत।

पर अब इस गीत के बाद अब आपके लिए एक ऐसा गीत जिसमें प्रेम, उमंग और यादों की खूबसूरत दुनिया है। इस गीत में ऐसी मिठास है जो दिल को छूकर सीधे भावनाओं तक जाती है। इसके बोलों में प्रेम की आहट है तो संगीत में उस एहसास की धड़कन, जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल है। रंग दिल की धड़कन फिल्म पतंग का वो गीत जिसमें दिल के रंग हैं, प्रेम की हलचल है और उस एहसास की गर्माहट जो समय बीत जाने के बाद भी मन में कायम रहती है। तो आइए मैटनी मेलोडीज का ये खूबसूरत नगमा, शायद इसे सुनते हुए आपके दिल में भी किसी पुराने प्यार की धड़कन फिर से रंग भर दे।

दिन ढलता है तो शाम की खामोशी में अक्सर कुछ पुरानी यादें वापस लौट आती हैं। किसी अपने की आवाज़, किसी से मुलाकात और साथ बिताए कुछ खास पल। फिल्म आनंद का वो गीत भी कुछ ऐसे ही एहसासों को अपने भीतर समेटे हुए है, जहाँ ढलती शाम के साथ साथ दिल भी किसी अपने को पुकारता है। तो आइए सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत यादगार गीत।

जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन से शर्माए तो लग

कभी कभी किसी की आंखें बिना कुछ कहे ही दिल की पूरी कहानी कह जाती हैं, और जब उन नैनों में शरारत हो तो निगाहें भी जैसे दिल से खेलने लगती हैं। फिल्म ऊंचे लोग का ये गीत भी कुछ ऐसे ही चंचल नैनों की खूबसूरती और उसकी शोख अदाओं को गीत में पिरोता है। तो आइए सुनते हैं उस दौर का एक बेहद दिलकश गीत।

दिल की चाहत कब लफ्ज़ों की मोहताज होती है, कभी कभी दिल यूं ही किसी को अपना मान लेता है और मोहब्बत की कहानी शुरू हो जाती है। फिल्म दूल्हा दुल्हन का ये खूबसूरत गीत।

और दोस्तों आप सुनते हैं खास गीत किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मिस्टर एक्शन बॉम्बे से। मोहब्बत में इंतज़ार भी है, तड़प भी है और बिछड़ने का डर भी, और जब दिल की बात महबूब तक ना पहुंच पाए तो हर पल जैसे कयामत सा लगता है। इन्हीं जज्बातों को आवाज़ देता एक बेहद लोकप्रिय गीत।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मैटनी मेलोडीज कार्यक्रम। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दोस्त अर्चना गोयल को अनुमति दीजिए। नमस्कार। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उर्दू मजलिस के सभी सामेईन की खिदमत में नसरीन बेगम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। सामेईन, अदब ने मुख्तलिफ तहजीबों, रिवायतों, मज़हबों से असर कबूल किया है। इन्हीं में हिंदुस्तानी असातीर भी शामिल हैं। हिंदुस्तानी असातीर से मुराद रिवायती कहानियाँ, देवमालाई किरदार, मज़हब से वाबस्ता किस्से कहानियाँ हैं, जिनके किरदार अखलाकी, सकाफती और अदबी अलामतों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उर्दू फिक्शन में असातीर का इस्तेमाल मुख्तलिफ सूत्रों में हुआ है। तो आइए सामेईन, इसी सिलसिले में एक मुबाहिसा सुनते हैं। मौजू है उर्दू फिक्शन में हिंदुस्तानी असातीर। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं जनाब अबू बकर आबाद।
1: आज के मुबाहिसे का उन्वान है उर्दू फिक्शन में हिंदुस्तानी असातीर। इस मुबाहिसे में जो शुराका हजरात हैं उनका समाए ग्रामी हैं जनाब असरार गांधी साहब, प्रोफेसर मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब, प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब और मैं अबू बकर अब्बाद। असातीर की दुनिया फिक्शन की दुनिया की तरह ही बेहद वसी, हैरतनाक, सहरंगेज, दिलकश, पेचीदा और मतनवे है। हर मुल्क, मज़हब और कौमों की अपनी असातीरी हकायत और रिवायात हैं जिनमें उनके फ़न, अकीदे और फ़लसफ़े ने अवलिन शक्लों में अपना इजहार किया है। असातीरी किरदार बिलूम देवी देवता, फ़ोकुलफितरत हस्ती, मजहबी, तारीखी, नीम तारीखी, तखयली या रवायती हीरो होते हैं जो बहर तौर आम इंसानों या जानदारों से मुख्तलिफ होते हैं और उनसे अजीम तर भी होते हैं। तमाम असातीरी किरदारों की कोई ना कोई कहानी होती है या कहानियों में ये मखसूस किरदार की हैसियत रखते हैं। ये असातीर या देवमालाएँ अपने इलाके, मजाहिब और तहजीब व तमद्दन के लोगों के इल्म, अकीदे, फ़िक्र और रुझान की गम्माज होती हैं। उनके किस्सों में तहय्युर होता है, तजस्सुस, रस्म, बज़्म और अय्यारी की दिलकशी के अलावा

0: इल्म व फ़ज़ल और शुजात व सखावत की भी दाद दी जाती है। अब हम चाहेंगे कि इस गुफ्तगू का आगाज़ जो है जनाब मीनुद्दीन जीना बड़े साहब से करें और इस हवाले से वो इजहार ख्याल करें।
1: शुक्रिया अबू बकर अब्बास साहब। मैंने सबसे पहले तो ये सोचा कि आज जब हम इस गुफ्तगू के लिए बैठे हैं तो बेहतर होता है कि जो तसव्वुर है उसकी तारीफ मुतय्यन कर ली जाए। तो एक कोशिश मैंने असातीर या उस्तूर की तारीफ मुतय्यन करने की है। कुछ इस तरह है वो, मा फ़ौक़ुल बशर और ख़िलाफ़े क़ियास वाक़ियात का वो बयानिया जो किसी ख़ास तहज़ीब का बुनियादी तश्कीली उनसुर होता है और उस तहज़ीब के तस्वुरे कायनात का मज़हर भी। इसका मौजू इंसान के वजूद और मज़ाहिर फितरत की माहियत और ग़ायत असली की तफहीम है। आज जिन सवालों के जवाब हमें साइंस फराहम करती है, वो सवाल जब ज़माने कदीम के इंसान को परेशान किया करते थे, और ये वो सवाल हैं जो इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस इंसान का तख़य्युल ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि कैसा और किस दर्जे का तख़य्युल रहा होगा। उन सवालों के जवाब ढूंढता है, और सिर्फ जवाब नहीं ढूंढता, एक निज़ाम फ़िक्र होता है। ये एक मिसाल हम देंगे, भाई ग्रहण लगता है तो साइंस ने हमें अब समझा दिया है कि भाई एक चाँद है, एक सूरज है और एक ज़मीन है, और इन तीनों की जो पोजीशन है उसमें ख़ास ढंग से जब तब्दीली होती है तो कभी चाँद ग्रहण लगता है, कभी सूरज ग्रहण लगता है। ये तो साइंस ने हमें समझाया, लेकिन सदियों पहले हमने ये कहा कि भाई एक राहु है और एक केतु है, और इन दोनों की अपनी कश्मकश है, और इन्हीं का ये जो आपस की उनकी कश्मकश है और जो कहना चाहिए कि उस पूरे निज़ाम में उनकी जो हैसियत है, तो कभी वो चाँद को अपने बस में कर लेते हैं, चाँद की रोशनी को वो कहना चाहिए कि सब कर लेते हैं, तो कभी सूरज। ये तो ये ग्रहण की
0: मिसाल दी आपने, क्योंकि उर्दू फिक्शन में जो हम देखते हैं तो अफसाने के हवाले से पहला ये आता है कि कौन सी देवमालाई कहानी लिखी गई, तो आमतौर से ग्रहण का जिक्र आता है राजेंद्र सिंह बेदी के, इसमें राहुल भी है, केतु भी है, भैरव भी है, ये सारे किरदार हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरह से वहीं से शुरुआत होती है असातीर की
2: जी।
0: उससे पहले लिखे गए थे लेकिन उस तौर के तौर पे नहीं जिक्र किया गया जैसे गणेश का या पार्वती का। क्या हाल साहब?
2: मेरे ख्याल में मैं तो आग का दरिया से शुरू करूंगा अगर आप मुझे इजाज़त दें। तो दो तीन बातें जो बुनियादी तौर पर, जैसा कि जीना बड़े साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पर दुनिया में जो कुछ हो रहा है बतौर इंसान उसको समझना, और एक इंसान की कोशिश होती है कि उसको एक्सप्लेन करना, उसकी वजाहत करना। उसके लिए जब साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी जितनी आज है, तो बहुत सारे मिथ अस्तूर जिसे कहते हैं वो हर इलाके में, हर तहजीब में गढ़े गए। और जाहिर है कि हमारी जो हिंदुस्तानी तहजीब है वो भी एक बड़ी तहजीब है, उसका जो नैरेटिव है बहुत ग्रैंड है और बहुत वसी है, और उसके में किरदार बहुत सारे आते हैं। दूसरी तरफ ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी हैं जो तकरीबन मिलती जुलती हैं, वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ हैं। बहुत बड़ा उनका इलाका तो नहीं है, लेकिन उनका जो कहना चाहिए कहानियाँ और जो इमेजिनेशन है, तसव्वुर है, वो बहुत हैरत अंगेज़ है। तो हमारे यहाँ मोटे तौर पे जो हिंदुस्तानी माइथोलॉजी या हिंदू माइथोलॉजी से हम कहते हैं सनमियात, उसके लिए उर्दू में लफ्ज़ या असातीर भी इस्तेमाल होता है, उसमें तीन बुनियादी गॉड्स हैं। ब्रह्मा जो खालिक है, क्रिएटर हैं, और उनकी शरीक हयात है सरस्वती। दूसरे विष्णु हैं जो प्रिजर्व करते हैं आपकी ज़िंदगी का, तहफ़ करते हैं, उनकी शरीक हयात लक्ष्मी है। और तीसरे शिव हैं, शरीक हयात उनकी पार्वती हैं या दुर्गा, और जब वो गुस्से में आते हैं तो फिर वो तांडव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी इन तीनों देवताओं के हाथ में पूरी ज़िंदगी की इब्तदा से ले कर और आखिर तक आपके हाथ में है। तो फिर हमारे यहाँ जो तहजीब जिस तरह से डेवलप हुई, आर्यन तहजीब आई, प्री आर्यन तहजीब आई, इंडस वैली की तहजीब आई, वैदिक तहजीब आई, तो इसमें जो किरदार हैं और मोटिव हैं बदलते हैं। और संस्कृत लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर जाहिर है कि बहुत रिच हैं, और जो मुकामी ज़बानें हमारी उनमें भी ये सारी माइथोलॉजी कहीं ना कहीं जाहिर होती है। तो बुनियादी तौर पर अच्छा एक

0: मार्क्सिस्ट स्कूल भी है सोशियोलॉजी में, वो तो इनको अनसाइंटिफिक कह के नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे दानिश्वर हैं, इंतज़ार हुसैन ख़ासतौर पर और दूसरे लोग हैं, वज़ीर आगा, उन्होंने जो मिथ है ना ये अस्तूर और किस्सा गोई और दास्तान और दास्तानों में इनका इस्तेमाल तो बराबर किया है उन्होंने। और निज़ार हुसैन तो कहते हैं कि मैं तो करबला भी देखूँगा और रामलीला भी देखूँगा, क्योंकि ये दोनों मेरी तहजीब का हिस्सा है। तो ये सारे अस्तूर, ये सारे मिथ, ये मोटिफ जब अदब में और फिक्शन में चूँकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस्तेमाल होते हैं तो एक अलग किस्म की तस्वीर बनती है।
1: सही है। देखिए ऐसा है कि जब हम मस्तूर की बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि दास्तान, जितनी भी दास्तान हैं सब मस्तूर से भरी हुई हैं
0: जी,
1: और वहीं से मेरे ख़्याल में ये चीज़ें आगे आई हैं। और इंतज़ार हुसैन के ताल्लुक़ से मैं एक बात ही बता दूं कि अब से चंद बरस पहले इंतज़ार हुसैन का मैंने और शमशेरान फारूकी साहब का इंटरव्यू किया था, एक लंबा इंटरव्यू जो बाद में शायद भी हुआ। तो उसमें बातों के दरमियान उन्होंने ये कहा कि हिंदू माइथोलॉजी बहुत फैसिनेट करती है मुझे और मुझे बहुत ही मज़ा आता है, मैं उसमें से बहुत सी चीज़ें छानता हूँ, फटकता हूँ और फिर अपने लिए लेता हूँ। और इसीलिए उन्होंने पंचतंत्र का पूरा सिलसिला पढ़ डाला। तो हमने उनसे पूछा कि आपने क्या इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने इन चीज़ों से खूब फ़ायदा उठाया और मैंने लिखा। तो एक तो ये इस तरह से उन्होंने उसको,
0: ये कलीला और दिमना के नाम से अरबी में भी तर्जमा हुई है ना,
1: हाँ
0: पंचतंत्र
1: हुई है। तो ये जो इंतज़ार हुसैन थे वो उनके की सोच आम फिक्शन निगारों से ज़रा अलग हटकर थी। और ये सिलसिला आप उनकी कहानियाँ देखिए, मसलन जैसे जर्द कुत्ता है उनकी कहानी है, आखिरी आदमी, उनको पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि भाई ये कुछ अलग सा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इंतज़ार हुसैन ने जो शुरू किया वो उर्दू अदब के लिए बहुत अहम था और उसका सिलसिला बाद तक चलता चला है। मसलन सलाम बिन रज़ाक़ की कहानी नदी
0: जी,
1: और बजूका सुरेंद्र प्रकाश की, तो आप एक लाइन है जो चलती चली आ रही है। इंतज़ार हुसैन की कहानियाँ यकीनी तौर पर इस मरहले में सबसे अहम नज़र आती हैं।
2: सलाम बिन रज़ाक़ की कि आपने बजूका का पता, नदी आपने नदी का जिक्र किया,
1: हाँ।
2: बहुत ही अहम कहना चाहिए कि कहानी है जिसका बेस जो है उस्तूर है,
1: हाँ।
2: उनके यहाँ तामधेनु एक अफसाना है,
1: बहुत अच्छा अफसाना है वो,
2: यकलव्य एक अफसाना है और यकलव्य के अलावा श्रवण कुमार पर एक अफसाना,
3: हाँ जी, तीन अफसाने हैं इस हवाले से उनके, एक तो आज का श्रवण कुमार है, दूसरा है एकलव्य, तीसरा अफसाना इसी की अगली कड़ी है वो एक लव्य का अंगूठा।
0: अच्छा, एक लव्य का अंगूठा।
3: तीनों में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उस्तूर को न सिर्फ बयान किया है बल्कि आज के हालात से उसका तदब्बुक पैदा किया है।
2: ये बहुत सही बात है,
1: ये यही सूरत नदी में भी है, नदी में तो उन्होंने कहीं ले जाके ग्रीक मैथोलॉजी को भी उसमें शामिल कर दिया है। और आज की जो सिचुएशन है, कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है, उसमें अगर आप नदी को पढ़िए तो आपको लगेगा कि तो उन्होंने आज की बात कही है, पीछे से ला के उन्होंने मामला को रखा है।
2: असरार गांधी साहब, आपने जो बात बहुत सही कही कि ये वो फनकार हैं जो उस्तूर को आज के सियाक में बामानी बना रहे हैं,
1: हाँ, बिल्कुल।
2: और देखिए अगर ये नहीं हो पाता तो फिर वो फन कहाँ बना, अदब कहाँ बना, और फिर हमारी आपकी दिलचस्पी का मौजू कहाँ रहा। और एक नज़रिया तो ये भी सामने आया है कि जो हमारा अदब आलिया है उसका जेनेसिस, उसकी जड़ें भी इन्हीं असातीर की दुनिया में है, यानी जिंदगी के इर्तका का एक पहला सिरा अगर असातीर हैं तो उसका आखिरी आज का सिरा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है वो आज का अदब है, आज की जो तख्लीकी हिस्सियतें हैं उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो यहाँ से वहाँ तक ये दोनों सिरे हैं और दोनों जगह हो यही रहा है कि तख़य्युल की कार फरमाई है। आज के अदब में तख़य्युल की उतनी कार फरमाई नहीं है जितनी कार फरमाई असातीर के ज़माने में थी, और असरार गांधी साहब जैसा कि फरमा रहे थे दास्तानों के दौर में थी, लेकिन आज बग़ैर तख़य्युल के कोई फनपारा वजूद में नहीं आता। अहमियत इस बात की है कि आज का तख़य्युल ताकत अखस करता है सदियों पुराने असातीर के वजूद में, यही तो वजह है कि नदी लिखी गई, यकलव्य लिखा गया, आज का यकलव्य लिखा गया, और भाई वो नदी जो काम

0: धेनु जो है, राम धेनु जिसकी कहानी लिखी गई, ये है। आपको क्या लगता है अबू बकर अब्बास साहब?
1: जी बिल्कुल, देखिए इनका यहाँ तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में और लोगों ने भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। मसलन इंतज़ार हुसैन के यहाँ तक, ये सिर्फ हिंदुस्तानी असातिर की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है इसमें बौद्ध की असातिर भी आती है। तो उनका जो अफसानिया ख़ासतौर से कछुए हैं या पत्ते हैं या वापस है, तीनों में जो है बौद्ध जो जातक कहानियाँ होती थी वो जो हैरत अंगेज तौर पर उनका बयानिया है मशहूर करने वाला, तोते की ज़बानी कहानी सुना रहे हैं तथागत, कहीं पे जो है वो कुत्ते की ज़बानी सुना रहे हैं, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से बयान किया है।
0: बहुत सही कहा।
1: इसके अलावा अगर खालिस हिंदुस्तानी, जाहिर है ये सारी हिंदुस्तानी ही मेथोलॉजी है, तो उसमें हिंदू भी है, बौद्ध भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, इलाकाई भी हैं, तो जो हिंदू मेथोलॉजी के हिसाब से उनकी जो कहानियाँ हैं इस तरह की, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती
0: हैं। बहुत सही फरमा रहे हैं आप। और देखिए, ये जितने असातीर हैं अदब में, कभी तलमी बनकर, कभी तशबी, कभी इस्तियारा, कभी अलामत, इन सूरतों में अदब का हिस्सा बनते हैं। और ऐसे फनपारे भी हैं जो पूरी तरह किसी उस्तूर में रचे बसे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि उस उस्तूर के बतन से वो आज का फिक्शन पैदा हो रहा है। ये भी होता आया है हमारे यहाँ। और इसमें बेहतरीन मिसाल, जैसा हम सभी कह रहे थे, इंतज़ार हुसैन है, और भी मिसालें हमें मिल जाएंगी।
2: मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा
0: जी,
2: कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हम कि कुर्तुलन हैदर को नज़रअंदाज कर रहे हैं? और मुझे लगता है कुर्तुलन हैदर कुछ सीनियर थी उनसे, और बड़े पैमाने पर जो हमारे यहाँ अस्तूर का तजर्बा पहला हुआ है, तजर्बा कहें या टेक्निक कहें उसे, वो आग के दरिया में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है इंतज़ार हुसैन की जो शुरू की कहानियाँ हैं उसमें हिजरत का जिक्र ज़्यादा है, बाद में ये जैसा आपने कहा ना कछुए वगैरह ये सारी चीज़ें, ये मेरे ख्याल में 1980 या 1975 के बाद आए हैं उनके जो मजमू आए हैं। अब देखिए, जैसे आग का दरिया में, जिसे हम बहुत ही शायद सबसे बड़ा नावल मानते हैं, गौतम नीलंबर, हरिशंकर, अबुल मंसूर कमालुद्दीन और चंपा, ये बार बार नए नए जन्म लेते हैं। तनासुख का फ़लसफ़ा, जो हिंदुस्तान का रीबर्थ का फ़लसफ़ा है, वो यहाँ नज़र आता है। फिर जिस तरह से वो ज़िक्र करते हैं, ख़ास तौर पे शुरू का जो हिस्सा है आग का दरिया का, उसमें जो बुद्धिज़्म जिस तरह से हिंदुस्तान में फैल रहा है, और जिस तरह से संघ बन रहे हैं,
3: बिल्कुल सही बात है,
2: और जिस तरह से एक तालिब इल्मों के गिरोह हैं, जौक दर जौक नौजवान जो हैं तपस्या कर रहे हैं और फ़लसफ़े पर डिस्कशन कर रहे हैं लंबे लंबे, और दूसरी तरफ एक आम समाज है जिसमें नेचर की मोहब्बत, फितरत, पेड़,
1: लेकिन
2: दरिया
1: हैदर ने जो है तारीख एतबार से देखने की कोशिश की है बुद्ध फलसफे को और उसको उस्तूर के मुकाबले में। ज़ाहिर है उस्तूर कायम होता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं गौतम नीलंबर कई मरतबा जन्म लेता है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका रिबर्थ है, क्योंकि नॉवल जिस तरह से उन्होंने लिखा है तो वो लगता है कि वो तारीख वो बदल रहा है। कोई हैरत अंगेज चीज़ तो होती है ना, जो मौफ़ुकुल फितरत से बहुत ज़्यादा करीब होती है। तो सिर्फ कुरातुल हैदर और लोगों ने भी बहुत, कुरातुल हैदर से पहले ये थी मुमताज़ शीरीन ने जो के जो दो मुख्तसर अफसाने हैं,
2: अच्छा,
1: जो थ्री डायमेंशनल टेक्निक में लिखे गए हैं, एक तो मेघमलार है जिसमें 7-8 हिस्से हैं, उसमें एक नीलकमल है, दूसरा सरस्वती है, तो एक में शिव जी का और एक में पार्वती जी का बहुत ही अच्छा ये किया गया है। और ऐसी एक आर्फ्यूस यूरिडेस है, तो उसमें यूनानी मेथोलॉजी के तकरीबन 48 किरदार को सिर्फ एक अफसाने में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है।
2: अच्छा, मुझे एक वहाँ अजीज अहमद वाला अफसाना जो कम डिस्कस हुआ, मदन सेना और सदिया, वो भी इसी तरह से है, वो भी सारी मेथोलॉजी को लेके और बार बार बहुत लंबे पीरियड को लेके साथ साथ चलते, जाहिर है कि उनका भी तारीखी शऊर बहुत डेवलप था।
3: इन तमाम बातों के दरमियान एक बात जो समझ में आती है वो ये होती है कि इस तरह की जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का एक सिलसिला बना रहे
2: हैं, तनासुख का जो फलसफा है,
3: हाँ, आवागमन का उसका बदला, जैसे आखिरी आदमी है इंतज़ार हुसैन की, उसमें वो लास्ट में बंदर बन जाता है, मतलब वो अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट इंसान के अंदर होती रहती है वो उसी तरह से चलती है, और यहाँ तक कि वो अपने आप को चाहता है कि हम बंदर बन जाएं और तमाम चीज़ों से पीछा हमारा छूट जाए। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मेरे ख्याल में क्या लाजमी जुज है इस तरह की उस्तूरी कहानियों का, ऐसा लगता है कुछ?
0: वो भी उस्तूर का हिस्सा है, वही लाजमी जुज तो नहीं है, उसके बगैर भी हमारे यहाँ

0: ऐसा फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है जहां तनासुख का पहलू नहीं है लेकिन उसकी जड़ें पूरी तरह से उतरी हुई हैं असातीर में।
1: मैं एक बात कहना चाह रहा था कि असातूर और जातक कथा वगैरह को इंतजार हुसैन ने बहुत चाबुक दस्ती से इस्तेमाल किया है। ज़बान खूबसूरत है, कोई भी बड़ी तहरीर जो है वो ज़बान के बगैर तो बनती नहीं है। सच तो यह है, कुरतुल हैदर की ज़बान किस कदर खूबसूरत है।
0: दरअसल इंतज़ार हुसैन और कुरतुल ऐन हैदर दोनों के यहाँ अस्तूर और असातिर पाए जाते हैं, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि कुरतुल ऐन हैदर के यहाँ मारूज़ी हकीकत का पहलू गालिब होता है, ये फ़र्क है। और इंतज़ार हुसैन के यहाँ मालूम होता है कि वो फनपारा उस अस्तूर के बतन से निकल रहा है,
1: जी
0: तो उनकी गालिब शनाख्त। अगर हम किसी एक हमारे फनकार को तलाश करना चाहें जिसकी गालिब शनाख्त असातीर हो, तो वो इंतज़ार हुसैन और इंतज़ार हुसैन है। दूसरों के यहाँ है, लेकिन वो बात कि उसके बतन से निकल रहा वो फनपारा, और चूंकि उसके बतन से फनपारा निकल रहा है, उनकी जबान में भी वो रचाव पाया जाता है। वो रचाव है जो उन सदियों के ह्यूमन एक्सपीरियंस को अपनी विजडम में, जब्त तहरीर में ला रहा, उस अस्तूर के पूरे प्रोसेस को वो अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। और जब वो जज्ब हो जाता है तो वो किस शक्ल में बाहर निकलेगा ये वो खुद नहीं जानते, लेकिन जब वो निकलता है तो मालूम है कि वो तमाम उसका तना, उसकी शाखें, उसकी पत्तियां और उसकी कोंपलें बस वही हैं।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने जो इस्लामी उस्तूर लिखे हैं तो उनकी जबान, उसका लहजा, डिक्शन बिल्कुल वैसा ही रखा है।
0: जी
2: जो हिंदू असातिर है तो उसमें हिंदी के अल्फाज बहुत सारे आए हैं, हिंदी तर्ज तहरीर है, उस तरीके से संस्कृत के बहुत आए हैं। वैसे जो बुद्धिस्ट असातिर उन्होंने लिए हैं तो उसमें बिल्कुल वही तथागत वाला तरीका इस्तेमाल किया कि किस तरीके से कहानियाँ सुनाई
3: है।
2: जी जी जी बिल्कुल, तो उनका तर्ज उसलूब हर उस्तूर के साथ बदलता जाता है, तो ये बड़ी खूबी है उनकी।
1: मेरे जहन में एक बात आती थी कि इंतजार हुसैन पाकिस्तान में बैठ के लिख रहे थे और कुरतुल ऐन हैदर पाकिस्तान से कुछ परेशान होकर वापस आ गई थी, तो क्या जो मकामी हालात होते हैं, मकामी समाजियात होती हैं, क्या उसका असर भी तहरीरों पर पड़ता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, होता है ना कि वहाँ की तहजीब अलग है, हमारी तहजीब अलग है, और ये जो सिचुएशन अलग अलग है ये लिखते वक्त दर आती है।
1: क्या ये हो सकता है कि इंतजार हुसैन जानबूझ के इतना वाजे और इतना कंक्रीट नहीं लिखते हैं, टेक्निक उनकी ऐसी है, जितना कुरतुल ऐन हैदर हमारे यहाँ बाद के जो नाविल है उनका, चांदनी बेगम वगैरह, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह का पॉलिटिसाइज्ड और पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है वो, और लगता है किसी तरह के पसंद का लिखा हुआ नाविल है ये, तो इसका शायद असर पड़ता है।
0: मैं अर्ज करूँ अगर आप इजाज़त दें।
1: जी जनाब,
0: इंतज़ार हुसैन के यहाँ ये जो फ़न का तख्लीक का अमल है ये ओढ़ा हुआ नहीं है,
1: बड़े फनकार
0: हैं। ओढ़ा हुआ अगर होता खुदा न खास्ता तो फिर वो बात पैदा होती कि भाई खारिज के हालात को देख रहे हैं, सियासत को देख रहे हैं, और मसलहत क्या कहती है, और रास्त गुफ्तारी हम नहीं कर सकते तो चलिए इसकी आड़ ले लेते हैं। ये भी कोई इसमें खराबी नहीं है, ऐसा हुआ है वहाँ भी। भाई अनवर सज्जाद ने यही तो किया, हमें लगता है कि अनवर सज्जाद ने बहुत ही शौरी तौर पर किया है।
3: कोंपल में जैसे
0: इंतज़ार हुसैन का इनफराद ये है कि वो उनके यहाँ चीज़ें ओढ़ी हुई नहीं है, जैसा मैं अर्ज किया कि वो बातिन में जज्ब कर चुके और फिर वो खुश भी बन के फूट रहा है।
2: इनके अलावा हमारे यहाँ और भी हैं जिन्होंने अफसाने लिखे हैं, उस्तूरी कहानियाँ लिखी हैं, मसलन सुरेंद्र प्रकाश जो है, इन्होंने कई अफसाने बहुत अच्छे लिखे हैं,
3: खासतौर से
2: बाज़गोई की
3: है।
2: तो बाज़गोई को जिस तरह से इमरजेंसी पे उसका इंतखबाक किया और उसको पिछले ज़माने में
1: लेकर
2: शहरोजी के हवाले से ये किया है, वो तो बेहद अच्छी कहानी है। लगेगा कि आप पिछली दुनिया में पहुंच गए हैं। या खालिद अशरफ साहब कुरतुल ऐन हैदर का जो जिक्र कर रहे हैं तो उनका एक अफसाना भी है जिसमें बज़ाहिर वो साइंस फिक्शन लगता है लेकिन उसमें उस्तूर है। उस्तूर इस तरीके से है, रोशनी की रफ्तार जो उनका अफसाना, तो वो कदीम मिस्र में पहुंच जाता है वो
1: टाइम मशीन में बैठ
2: और फिर वहाँ उस उस्तूर को बयान किया जो मिस्री उस्तूर है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस्तूर के हवाले से 4-5 मुल्क हैं जो बेहद सर्वतमंद है। एक तो यूनान है, रूम है, खुद हमारा हिंदुस्तान है और जापान है। वैसे तो बहुत हर मुल्क का, हर कौम का, हर तहजीब का अलग अलग वो होता है, और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। अरविंद गीगा ने जो उनका जो नावल था द वाइट टाइगर, तो इसकी इब्तदा यहाँ से करते हैं कि हमारे यहाँ तरीका ये है कि किताब शुरू करने से पहले भगवान की अर्चना करते हैं। तो मेरे सामने कई मतबादिल हैं। एक

0: मुसलमानों का खुदा है जिसकी अर्चना करें, या फिर एक ईसाइयों के तीन खुदा है जिसकी अर्चना करें, या फिर हिंदुओं के 3,65,00,000 हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि हर भगवान से कोई ना कोई स्तूल जुड़ा हुआ है, तो इस एतबार से देखें तो यूनान और रोम से ज्यादा पावरफुल जो है और ज्यादा सर्वतमंद हमारा हिंदुस्तानी असाथी है, बहुत ज्यादा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो ज्यादा फैला हुआ है
0: जी,
1: ज्यादा वसी है, तो वो कहीं बेहतर है। ये तो हिंदुस्तान का हमारा जो माशरा है और सब कुछ बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है।
2: एक साहब नंद किशोर विक्रम साहब ने भी एक नावेल लिखा था जो ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, 19वां अध्याय, वो महाभारत के बैकग्राउंड में पार्टीशन से, चूंकि पार्टीशन को उन्होंने बहुत देखा था और पार्टीशन में सफर भी किया था उन्होंने, वो भी एक अच्छा नावल है। फिर इनका हुसैनुल्लाह साहब का एक नावल आया अमावस में ख्वाब, उसमें जो मरकजी किरदार है इस्माइल, वो कोकाफ के पार भी देखता है। इसी तरह बानो कुर्सिया का नावल राजा गीत,
1: खालिद अशरफ साहब बताएं कि ये जो हिंदुस्तान में इंतजार हुसैन के बाद जो दस्तूर का एक सिलसिला चला जिसका भी जिक्र हम लोग कर रहे थे, क्या ये इंतजार हुसैन का इफेक्ट है या ये एक फितरी बहाव के तहत ये आया है?
0: नहीं, हमारे यहाँ ये लोग लिख रहे थे ना, बेदी लिख रहे थे, ग्रहण है, लाजवंती में उस्तूर है, अपने दुख मुझे दे दो में है, हिंदू वगैरह का जो चांद का है। फिर एक खाली साहब एक बहुत अच्छा अफसाना है मुझे याद आ गया अभी, योगिंदर पाल साहब का इफरीत, उसमें रावण का उस्तूर है,
2: रावण का
0: है ना, दिल्ली का एक कहानी है कि रामलीला खेला जा रहा और किस तरह उसमें रावण दहशत गर्दी जोड़ने की कोशिश की है।
2: वो बच्चा कहता है कि माता जी को साथ क्यों नहीं लाए रामलीला देखने लिए, कहते हैं उन्होंने तो रावण ऑलरेडी बहुत देखे हुए हैं। वो है अफसाना बिल्कुल जदीद, उससे जुड़ता है। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है इसमें कि कुलतुगन हैदर और इंतजार हुसैन के बाद उर्दू में जो माइथोलॉजी जिसे कहते हैं अस्तूर, मेन स्ट्रीम में नहीं आई।
3: आप इजाज़त दें तो मैं ये अर्ज करूँ, अभी इफरीत का हम लोग जिक्र कर रहे थे, मेरे नज़दीक इफरीत जो है वो कंट्राइव बन पा रहा है, उस तरह से उसकी जो एक नामियाती वजूद होना चाहिए फनपारे का, वो इफरीत में नहीं मिलता, यहाँ वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। जबकि हमारे जोगिंदर पाल साहब बहुत बड़े फनकार हैं और बड़ी अजीब चीज़ें लिखी, लेकिन इफरीत में ज़रा सा वो बात बन नहीं पाई।
0: हाँ, मतलब वो उसको इस तरीके से
3: सोचे समझे ढंग से आप उसको 2+2=4 की तरह इफरीत को इस्तेमाल कर रहे हैं।
2: एक अफसाना उनका बहुत अच्छा ग्रंथी भी है जिसमें उन्होंने सिख जो मोटिव्स हैं और सिख जो सिंबल्स हैं उनको भी बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल किया है।
3: जी हाँ,
2: गोपाल साहब जाहिर है के बड़े राइटर
0: जो थे। गुफ्तगू हो रही थी कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा उस्तूरी अफसाने नहीं लिखे गए, मुझे लगता है कि काफी लिखे गए हैं। तो खुद सलाम बिन रज़ाक की देखिए कितने अफसाने का जिक्र आया आप लोगों ने किया, मुमताज श्री के 5-6 अफसाने हैं, सरस्वती जी पे हैं, शिव जी पे हैं, बुद्धिस्ट पे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जोगिंदर पाल हैं ये लिख रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ लिखेंगे। सुरेंद्र प्रकाश है, इनके यहाँ
3: प्रकाश का वनवास 81
0: जी,
3: वनवास 81 में वो राम का ही वनवास है और आज के जो सूरत हाल है उस पर उसका इंतबाक हो रहा है। राम तो आ गए थे वनवास के बाद लौट कर यहाँ, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश के यहाँ राम लौट कर नहीं आते, और राम राज्य की जो एक मिसाली मुमलिकत का तस्वूर है वो उसी वक्त हकीकत बन सकता है जब राम लौट आते। राम नहीं आ रहे हैं तो वो मिसाली तस्वूर, उसके बरक्स जितनी खराबियाँ हो सकती हैं वो इस कदर हैं कि राम न आना बेहतर समझते हैं।
0: बिल्कुल इसी मौजू पे श्री रामचंद्र जी को ही उस्तूर बना करके सैयद मोहम्मद अशरफ ने एक अफसाना लिखा, अफसाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी यही यहाँ आना चाहते हैं लेकिन फिजा देकर के वो बहुत घबराते हैं।
2: जी ना बड़े साहब, एक चीज और है, ये जो आजकल मैजिक रियलिज्म बहुत इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ और लैटिन अमरीका से आई थी 70s में ये टेक्निक, क्या ये कुछ मैजिक रियलिज्म और माइथोलॉजी, क्या इनमें कुछ चीजें मिलती है, कुछ मुश्तरका है? जैसे मुझे
3: मैजिक रियलिज्म उस तख्लीकी रिवायत से जुड़ी हुई है जिसे हम उस्तूर साजी का अमल कहते हैं। यहाँ उस्तूर साजी हो रही है लेकिन आज के सियाक में हो रही है, अपनी जात के सियाक में हो रही है, और इस बस यही अमल है वहाँ जो दूसरी सियाक में हो रहा है। आप सही कह रहे हैं,
0: बिल्कुल, क्योंकि वाकयात और किरदार जो है वो बिल्कुल उस्तूर जैसे ही है, मुहय्यरुल उकूल है, नाकाबिले यकीन है, है ना, माफ़ूकुल फितरत है, मैजिक रियलिज्म में भी तकरीबन, लेकिन वो तो टेक्निक अलग है, मैजिक रियलिज्म।
3: अब देखिए हमारे अब्जर्ड आर्ट का एक पूरा दबिस्तान रहा, चाहे वो अब्जर्ड ड्रामा हो, चाहे अब्जर्ड फिक्शन हो, तो ये अब्जर्ड

0: सुरेंद्र प्रकाश की है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं बहुत से उस दौर के हवाले से, जोगिंदर पाल के अफसाने हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ के हैं। तो इस तरीके से हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा जगह मिली है हिंदुस्तानी असातीर को उर्दू फिक्शन में, और इस अतबार से हम कह सकते हैं कि हमारा उर्दू फिक्शन बेहद सर्वतमंद है उस दौर को बयान करने के एतबार से। तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगु तो जारी रह सकती है, लेकिन हम यहाँ ख़त्म कर दें तो
1: वक्त की अपनी पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बेहद शुक्रिया तमाम,
2: बहुत शुक्रिया।
3: सामीन, अभी आप मुबाहिसा सुन रहे थे, मौजू था उर्दू फिक्शन में हिंदुस्तानी असातीर। मुबाहिसे में शुरका थे जनाब मुइनुद्दीन दिनाबड़े, जनाब खालिद अशरफ, जनाब असरार गांधी। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब अबू बकर आबाद। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 4 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग की कई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की शुरुआत की। इसका उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के भीतर वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
3: 2017 से पहले भी रेल

0: आसन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई के प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
1: राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2026 आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मनाया गया। इस अवसर पर नियमित, स्वैच्छिक और बिना किसी पारिश्रमिक के रक्तदान की संस्कृति को मजबूत करने पर जोर दिया गया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन में आज अपना पहला पदक जीता। पुरुषों की स्क्विफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत पदक जीता। नौ रेसों में फ्रांसिस और नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 63 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. The Prime Minister was addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. He said today 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive, good governance. He stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
3: हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है, इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखें कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
2: द गवर्नमेंट इज रिड्यूस द स्टॉक होल्डिंग पीरियड फॉर शुगर डीलर्स टू 15 डेज एंड फिक्स द स्टॉक होल्डिंग लिमिट एट 1000 क्विंटल्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15th ऑफ दिस मंथ। It will remain effective till November this year. Under the revised provisions, the stock holding limit for Kolkata and its extended metropolitan areas and Assam have been fixed at 2,000 quintals. Indian security agencies have secured the deportation of Harvinder Kumar alias Sonu Barnala, who is linked to the murder of Vishwa Hindu Parishad leader Vikas Prabhakar in Nangal, Punjab. The Home Affairs Ministry informed that the VHP leader was killed by operatives of the terror organization Babbar Khalsa International in an attempt to create communal unrest at the behest of his Pakistan-based chief Wadhwa Singh alias Babbar. UAE-based Sonu Barnala was a fugitive against whom a red notice was issued. Following a request from Indian agencies, the UAE authorities handed him over to India. Defence Minister Rajnath Singh has said that the same spirit of synergy and integration currently been emphasized among the three armed forces needs to be implemented within the financial framework of the Defence Accounts Department. Speaking on Defence Accounts Day in New Delhi today, Mr. Singh said if the financial systems are also integrated, the entire defence management will become even more efficient. At least 9 Afghan civilians, including women and children, were killed and 11 others injured in Pakistani airstrikes on civilian homes in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. According to Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid, the strikes also destroyed 3 residences in Sultan district of Kunar and Gramsar district of Helmand. At the Asian Games 2026 in Japan, India opened its sailing medal account as Manu Francis and Prince Kurisinkal Nobel secured silver in the men's skiff competition today, finishing behind China after 9 races. In hockey,

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 4:10 हुए हैं और वक्त हुआ है गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी का। बादशाहपुर गुरुग्राम थाना से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति हैं समद शाहरीन, पुत्री मोहम्मद मुर्तजा, निवासी आरआर कॉलोनी बादशाहपुर गुरुग्राम। इनकी उम्र 6 वर्ष, कद 3 फीट 5 इंच, हष्टपुष्ट शरीर, सांवला रंग, गोल चेहरा। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना बादशाहपुर गुरुग्राम से। बादशाहपुर थाने से मिली अगली सूचना के मुताबिक ये गुमशुदा हैं। इनका नाम है सलमा प्रवीण, पत्नी मोहम्मद मुर्तजा। ये 1 मई 2026 को आरआर कॉलोनी बादशाहपुर गुरुग्राम से में अंतिम बार देखी गई। इनकी उम्र 27 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, हष्टपुष्ट पतला शरीर, रंग सांवला, लंबा चेहरा। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं जांच अधिकारी विजेंद्र सिंह, थाना बादशाहपुर गुरुग्राम से। थाना मोतिहारी बिहार से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम तानिया कुमारी, उम्र 13 वर्ष, कद 4 फीट, रंग सांवला, बालों का रंग भूरा, आंखों का रंग काला, हल्के क्रीम रंग का टॉप और नीले रंग की जीन्स इन्होंने पहनी हुई है और इनके बाएं नाक पर बाईं तरफ तिल का निशान है। अंतिम बार उन्हें 3 तारीख को नरकटिया रेलवे स्टेशन पर देखा गया, जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ते हुए। उसके बाद उनके संबंध में कोई सूचना, कोई सुराग नहीं मिल पाया। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के लिए आपको मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। फ़ोन नंबर है 9031827125। नंबर एक बार फिर से नोट करें, 9031827125। अगले गुमशुदा व्यक्ति के का नाम है सोफिया। इनकी उम्र 17 वर्ष है, आंख नाक कान औसत, रंग गेहुआ, कद 5 फीट। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना रोहटा मेरठ में। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अब्दुल अहमद, पुत्र स्वर्गीय वसीम, निवासी जमुनानगर लोहिया नगर मेरठ से के ये रहने वाले हैं। इनके आंख नाक कान औसत, रंग सांवला, गोल चेहरा है। इनकी उम्र 12 वर्ष, कद 4 फीट। इनके विषय में कोई भी सूचना अगर मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उप निरीक्षक सौरभ सिंह से, थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ। पुलिस स्टेशन बादशाहपुर गुरुग्राम से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है सोमवती, पत्नी ओम सिंह, निवासी गांव

बेगमपुर खटोली गुरुग्राम। इनकी उम्र 34 वर्ष है, कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं पुलिस स्टेशन बादशाहपुर गुरुग्राम में। बादशाहपुर से ही मिली अगली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है सुनील कुमार, निवासी गांव बेगमपुर खटोला जिला गुरुग्राम। इनकी उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट 9 इंच, रंग गोरा, लंबा चेहरा, हष्टपुष्ट शरीर, कद 5 फीट 9 इंच, रंग गोरा। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं पुलिस स्टेशन बादशाहपुर गुरुग्राम में। डीएलएफ फेज 2 गुरुग्राम से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है उदय। अंतिम बार इन्हें सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन गुरुग्राम में देखा गया। इनकी उम्र 30 वर्ष, रंग गेहुआ, लंबा चेहरा, हष्टपुष्ट शरीर, कद 5 फीट 5 इंच। इनके विषय में कोई भी सूचना आपको अगर मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं पुलिस स्टेशन डीएलएफ फेज 2 गुरुग्राम में। अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुए हैं 4:15। लीजिए सुनते हैं युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: कहते हैं उम्र की झुर्रियों में छुपी रहती है जिंदगी के अनगिनत किस्सों कहानी की रोशनी। कभी इत्मीनान से इसे सुनने की कोशिश कीजिएगा, शायद बीते कल की उम्र की आवाज़ में आपको आपके आने वाली कल की राह मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल भास्कर और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी होस्ट हेमा। दोस्तों, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम युववाणी।
1: आज के कार्यक्रम में हम टुडेज टॉक में बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पीपल के बारे में। फिर मन से माइक्रोफोन तक में हम जानेंगे एशियन गेम्स मेडलिस्ट्स के बारे में और वीकली सेगमेंट में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स पर नज़र डालेंगे। साथ ही टुडे इन हिस्ट्री में बात की जाएगी खतों की और आखिर में क्विक बज में हाल फिलहाल के ट्रेंड्स को जानेंगे। वैसे निखिल, तुमने शुरू में कुछ पंक्तियां कही थी, मुझे लगता है वो बड़े बुजुर्ग की बात थी, है ना?
0: हाँ हेमा, मेरा मानना है बड़े बुजुर्गों का हमारे ज़िंदगी में होना बहुत मायने रखता है। मेरी लाइफ तो दादा दादी के होने से ही बहुत आसान लगती है।
1: वैसे निखिल, मैं एक सवाल पूछूं? अरे बाबा, तुम्हारे बातों के कॉन्टेक्स्ट में ही एक सवाल मन में आ अटका है, पूछूं क्या?
0: हाँ पूछो ना, पर आसान सा सवाल पूछना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं।
1: हाँ, टेंशन ना लो। अच्छा निखिल, तुमने अभी कहा कि बड़े बुजुर्ग का हमारी ज़िंदगी में होना ही बहुत मायने रखता है, इनके होने से तुम्हारी ज़िंदगी भी काफ़ी आसान हो गई है। पर मैंने इस शहर में कई ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जहाँ घर के बड़े बुजुर्ग को इतना महत्व नहीं दिया जाता, या यूँ कहें परिवार में उनके अस्तित्व को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो क्या उनकी ज़िंदगी में तुम्हारी बातें लागू नहीं होती?
0: ज़रूर लागू होती हैं, पर शायद उस चीज़ को उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया, या शायद उन्होंने उस चीज़ के सतह को ही देखकर अपना मन और फैसला बना लिया होगा। दादा दादी, नाना नानी या बूढ़े माँ बाप का स्पर्श किसी हीलिंग मैकेनिज्म की तरह होता है। बचपन में नानी के गोद में लेट कर कहानियाँ सुनना हो, या बड़े होकर जब हम दुनिया की चीज़ों से थक हार जाते हैं, तो बूढ़े माँ बाप के पास ही तो इतनी सुकून होती है, जहाँ हमारा मन कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। क्या तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है हेमा?
1: हाँ निखिल, उसके बारे में बात करेंगे पर एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

हाँ तो निखिल, तुमने मुझसे पूछा था ना कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, तो कुछ ऐसा सा ही है। ये बात तब की है जब मैं स्कूल में थी। मुझे उस वक्त पेरेंट्स

0: जब मीटिंग में पापा से थोड़ी डांट पड़ गई थी, उस दौरान मैं बहुत उदास थी, लेकिन मेरी दादी ने मुझे बहुत प्यार से संभाला, मुझे कई चीज़ें समझाई, पापा के बचपन के किस्से भी बताए, और ये एहसास करवाया कि मैं परिवार के लिए और मेरे लिए परिवार कितना ज़रूरी है।
1: सच में हेमा, और मुझे तुम्हारी बातों से ये भी समझ आता है कि हम अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से कितना कुछ सीख सकते हैं। भले आज टेक्नोलॉजी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, और उम्र दराज लोगों से हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया को सालों से देखते और समझते आ रहे हैं, और हमें तो यहाँ आए हुए एक आध दशक ही हुए हैं।
0: लेकिन निखिल, इन सब के साथ कुछ जिम्मेदारी हम युवाओं के हिस्से भी तो आती है ना,
1: कैसी जिम्मेदारी है माँ?
0: ये कि हम युवा भी उनके लिए एक कंपैटिबल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें। हर साल हमारे देश में ओल्डर पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, लेकिन उसके हिसाब से बूढ़े लोगों के लिए हेल्थ केयर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी, एज फ्रेंडली एनवायरनमेंट या राइट्स और डिग्निटी पर काम करना ही भूल जाते हैं।
1: सच कह रही हो हेमा, इसे ऐसा होना चाहिए कि लोग सिर्फ लंबी उम्र ना जिएं, बल्कि लंबी उम्र को स्वस्थ, सम्मानजनक, सुरक्षित, स्वतंत्र और मीनिंगफुल तरीके से जी सकें।
0: बिल्कुल निखिल। और दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल का थीम द एज ऑफ लॉन्जिविटी रीथिंकिंग सिस्टम्स फॉर लॉन्गर लाइव्स भी यही कहता है, यानी लंबी होती जिंदगी के इस दौर में हमें अपने हेल्थ केयर, सोशल प्रोटेक्शन और दूसरे सिस्टम्स को एक नए सिरे से तैयार करना चाहिए।
1: क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लोग पहले से ज्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं। ऐसे में सिर्फ उम्र बढ़ना काफी नहीं है, हमें हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, वर्क, हाउसिंग केयर और कम्युनिटी सपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को भी इस तरह से बदलना होगा कि जिंदगी लंबी होने के साथ हेल्दी, रिस्पेक्टफुल और मीनिंगफुल हो।
0: बात तो एकदम सही कही है निखिल, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक सॉन्ग ब्रेक का। कार्यक्रम की दूसरी तरफ बहुत कुछ है, फिलहाल सुनते हैं लता जी की आवाज़ में ये प्यारा सा संगीत।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाश कार्यक्रम युववाणी, और इस प्यारे से गीत के बाद अब वक्त हो चला है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक का। तो निखिल, तुम हमारे लिसनर्स को बताओगे कि आज के सेगमेंट में क्या खास है?
1: बिल्कुल हेमा, इस सेगमेंट में जो खास है वो उन दो शख्स के बारे में है जिन्होंने न केवल हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा किया है, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से हमारे जैसे लाखों युवाओं को बड़े सपने और उन सपनों पर मेहनत करने के लिए भी प्रेरित किया है। उन्होंने देश का वो इंतज़ार ख़त्म किया है जो सालों से चला आ रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं?
0: तो हम बात कर रहे हैं उन दो चैंपियंस की जिन्होंने आईची नागोया एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया। मैराथन सिल्वर मेडलिस्ट हवलदार सावन बरवाल और सॉफ्ट टेनिस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जय मीना। और मज़े की बात, ये दोनों ही कहानियाँ किसी बड़े शहर या सुख सुविधाओं से शुरू नहीं होती। सावन बरवाल जी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक छोटे से गाँव से आते हैं, जो पहाड़ों की ऊँचाइयों पर दौड़कर आर्मी में भर्ती हुए और वहाँ से अपना मैराथन का सफ़र शुरू किया। और तो और, अपनी दूसरी ही मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का 44 साल का इंतजार खत्म कर दिया।
1: जानती हो हेमा, मेडल जीतने के बाद उनके शब्द क्या थे? वो थे, ये इंडिया के लिए है। चलो अब हम बात करते हैं जय मीना जी की, जो मध्य प्रदेश के देवास से हैं। इनकी कहानी थोड़ी अलग है। 10 साल की उम्र में ही उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। ऐसे वक्त में एक स्कूल और कोच ने उन पर भरोसा किया और वहाँ वो सॉफ्ट टेनिस कोर्ट पर बॉल बॉय बनकर बॉल्स उठाते थे, और खिलाड़ियों को देखते हुए धीरे धीरे रैकेट्स उनके हाथ में आ गया और 2023 के एशियन गेम्स में वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। पर इस साल उन्होंने अपने कमबैक में मेडल ही जीत लिया।
0: सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यू नो, इन दोनों कहानियों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हार मान लेना ऑप्शन है ही नहीं। दोस्तों, शो में अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: इस गाने को सुन के तो मेरा मन पूरी तरह से प्रोत्साहित हो चुका है। आई एम श्योर आप सबका भी हुआ होगा। और अब इसी एनर्जी को लॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने वीकली सेगमेंट की तरफ, जहां हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी।
1: हेमा, अभी तक हम सबको कुछ कॉमन साइबर थ्रेट्स जैसे फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, मालवेयर्स के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई है, पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे थ्रेट्स की जो बहुत ही आम लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई तो आप भी उसके शिकार हो सकते हैं।
0: हमारी लिस्ट में पहला थ्रेट है फेक कैप्चा, जिसे सिक्योरिटी की दुनिया में क्लिक फिक्स कहा जाता है। जैसे जब आप फ्री स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर जाते हैं तो आपको कैप्चा वेरिफिकेशन की स्टेज पर वहाँ एक्चुअल वेरिफिकेशन की बजाय कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स प्रेस करने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आप अपने ही हाथों से अपने ही सिस्टम पर वायरस डाल देते हैं। आईपीएल 2026 के दौरान ऐसी 400 से ज़्यादा नकली वेबसाइट्स पकड़ी गई हैं।
1: वैसे इसको पहचानने का तरीका बहुत आसान है। रियल कैप्चा हमेशा ही ब्राउजर में ओपन होता है और वो बेसिक बेसिक टाइपिंग और सिलेक्शन बेस्ड ही होते हैं। और अगर आपके पास कोई कीबोर्ड शॉर्टकट वो दबाने को कहे या कुछ पेस्ट

0: को कहे तो उस पेज को तुरंत बंद कर दें।
1: वाओ निखिल, थैंक यू फॉर शेयरिंग हाउ टू डील विद इट एज वेल। नाउ नेक्स्ट थ्रेट हमारी लिस्ट में उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहे हैं या वो लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, मनी म्यूल। यानी इसमें अक्सर रिमोट जॉब के जॉब ऑफर्स आते हैं और ज्वाइन करने से पहले आपको न्यू बैंक अकाउंट ओपन करने को बोला जाता है और उसका पासबुक, डेबिट कार्ड और सिम कार्ड डिटेल्स भेजने के लिए कहा जाता है। पंजाब में पकड़े गए ऐसे ही एक गैंग ने 18 अकाउंट से लगभग 3 करोड़ का फ्रॉड किया।
0: ये सुनने में ही काफी डरावना लगता है हेमा। वैसे हेमा, तुम जानती हो ये फ्रॉड का पैसा जिस अकाउंट से गुजरता है, जांच की पहली दस्तक उसी अकाउंट होल्डर के दरवाजे पर होती है। और हाँ, एक टिप जो मैं देना चाहूंगा वो ये कि सरकार के संचार साथी पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर्स चल रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ लगे तो तुरंत रिपोर्ट कीजिए।
1: थैंक यू निखिल फॉर द अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। इस सेगमेंट में अभी काफ़ी बातें बाकी हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पाठशाला फिल्म से ये गीत।

0: ये ट्रैक इट इज़। और ट्रैक से याद आया कि हमें अपनी लिस्ट में अगला थ्रेड ट्रैक करना चाहिए, विच इज़ ई सिम स्वैप। तो इसमें होता ये है कि आपको अचानक कॉल आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको सिम अपग्रेड करना है, या बस ये कोड डाल दीजिए, या ये बोला जाएगा बस ये QR स्कैन कर लीजिए। और जैसे ही आप बात मानते हैं, आपका नंबर किसी और के ई सिम पर ट्रांसफ़र हो जाता है, आपके बैंक के OTPs के साथ साथ।
1: और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि फ़ोन में अचानक से बिना कोई ख़ास वजह के देर तक नो सर्विस दिखने लगना। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो तुरंत अपने बैंक को और अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके खबर करें। अच्छा, मैं एक बात पूछूं,
0: पूछो निखिल।
1: अगर तुम्हारे पास एक कॉल आए जहां दूसरी तरफ से तुम्हारे भाई की आवाज़ हो और वो बोले कि वो मुसीबत में है और उसे कुछ पैसे चाहिए, तब तुम क्या करोगी?
0: अरे भला ये भी कोई सवाल हुआ निखिल? ऑब्वियसली मेरा भाई है, मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी।
1: और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि वो तुम्हारा भाई है ही नहीं बल्कि वो एक AI जनरेटेड वॉइस है,
0: अब ये सुन के मुझे डर लग रहा है।
1: तो जो नेक्स्ट थ्रेट हमारी लिस्ट में है वो ये है कि रियल और पर्सनल फियर, AI वॉइसेस। आपके पास आपके भाई बहन या कोई रिश्तेदार की आवाज़ में कॉल आ सकता है जो कि AI क्लोन्ड वॉइस होगी और वो आपसे पैसे की मदद मांगेंगे। पर इसको काउंटर करने का एक तरीका है, एक फैमिली कोड या पासवर्ड, यानी वो शब्द जो आपकी फैमिली को ही पता हो। आप इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कॉल पे आपके रिलेटिव्स हैं या कोई AI स्कैमर।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीकली सेगमेंट समाप्त हुआ और अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आज के दिन के इतिहास के बारे में जानेंगे।

0: हेमा, आपने कभी व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करके ब्लू टिक होने का इंतज़ार किया है?
1: बिल्कुल किया है,
0: और कितनी देर तक किया है?
1: क्या ही बताऊं निखिल, कभी कभी तो घंटों तक किया है। मेरा तो उस दौरान दिल तेज धड़कने लगता है और सामने वाले का मेरे मैसेज पर कब और क्या रिप्लाई आएगा।
0: एग्जैक्टली हेमा, और सोचो अगर ये घंटों का इंतज़ार कई दिनों, हफ्तों और महीने का हो जाए तो?
1: कैसी बातें कर रहे हो निखिल, मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी मुश्किल है। एक मिनट, कहीं तुम खत की बात तो नहीं कर रहे?
0: सही पकड़ा हेमा। पता है आज के दिन ही यानी 1 अक्टूबर 1954 को भारत में पहली बार ऑल इंडिया पोस्टल स्टैम्प जारी किए गए थे, जो पूरे देश में डाक भेजने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे।
1: सच में ये एक ऐतिहासिक घटना थी। सोचो निखिल, उस दौर में ना मोबाइल था, ना ईमेल और ना इंस्टेंट मैसेजिंग जैसी कोई चीज़। किसी दूसरे शहर में रहने वाले अपने को कुछ कहना हो तो कागज़ पर शब्द लिखे जाते थे, लिफाफा तैयार होता था और फिर उसे डाक के हवाले कर दिया जाता था, और वो खत शहर दर शहर सफ़र करके हफ्तों बाद अपनी मंजिल पर पहुंचता था।
0: और हेमा, उसके बाद शुरू होता था जवाब आने का इंतज़ार का सिलसिला। इतने लंबे इंतज़ार ही तो उस मैसेज को मात्र मैसेज से बढ़कर बना देते थे। वो लंबा सफ़र करके आए कोने कोने से हल्के फटे हुए खत अपने अंदर कई यादों और भावनाओं को समेट कर रखने की क्षमता रखते थे। उस समय के खत के जरिए भेजे गए संदेश आजकल की तरह नहीं होते थे। उन संदेशों में बहुत गहराई और अपनापन होता था। उन्हें एक बार पढ़कर कहाँ पूरी तरह से समझा जा सकता था। उन खतों को कई बार पढ़ा जाता था और हर बार मानो एक अलग ही बात बाहर निकल आती थी।
1: पता है निखिल, पिछली बार जब मैं अपने गांव गई थी तो पापा ने मुझे अपने कॉलेज के दिनों का खत दिखाया था। कुछ माँ पापा को भेजे गए थे, कुछ बुआ को, कुछ दूर के दोस्त को, तो को कुछ भाई जैसे पड़ोसी को। और मैं सच कह रही हूँ, वो खत पढ़कर मैं सारी घटनाओं को अपने आंखों के आगे बनता देख पा रही थी। वो मेरे बारे में नहीं थे, लेकिन उन खतों को पढ़ते वक्त मैं काफ़ी इमोशनल ज़रूर हो गई थी।
0: और दोस्तों, मुझे लगता है हमें भी एक बार खत को मौका देना चाहिए। एक बार फिर से सारे इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को छोड़कर थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए। क्यों ना अपने किसी बहुत ही खास व्यक्ति को एक दफ़ा खत लिखें, उन्हें बताएं कि आपकी ज़िंदगी में उनका कितना अहमियत है, वो कितने खास हैं आपके लिए, कौन सी बातें आपको उनकी बहुत अच्छी लगती है और वो बात जो थोड़ी पसंद नहीं आती है। क्यों ना वो सब बातें जो हम कभी कह नहीं पाए एक बार पन्नों पर उतार कर डाकिये के हवाले कर दें।
1: और उसके बाद फिर से पुराने समय के जैसे जवाब क्या और कब मिलेगा उसका इंतजार और एक्साइटमेंट होगी।
0: बिल्कुल हेमा, इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम इस चीज का एक्सपीरियंस कभी ले ही नहीं पाते।
1: ये खत हमारी दुनिया से गायब से जरूर हो गए हैं, लेकिन हमें इनकी जरूरत आज भी है, शायद किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरी वजह के साथ।
0: बहुत सही कहा तुमने हेमा, लेकिन अब हमें इस चर्चा को यहीं रोकना होगा, क्योंकि वक्त हो चला है इस खूबसूरत गाने का।

0: दोस्तों, उम्मीद है कि युववाणी का आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। याद रखिएगा कि आपके फीडबैक्स का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो आप अपने सुझाव और फीडबैक्स हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है yuvvaanifeedback@gmail.com, यानी yuvvaanifeedback@gmail.com। कल फिर मुलाकात होगी नए जोश और नई चर्चाओं के साथ, शाम 4:15 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
1: और इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं, मगर इस वादे के साथ कि आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त और इसी जगह पर।
0: मैं हेमा
1: और मैं निखिल,
0: लेते हैं आपसे विदा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होना चाहिए। नई दिल्ली में आज रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग की कई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के भीतर वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तक कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण इस शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महामंथन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समारोह के पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उद्घाटन भाषण देंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
2: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई की प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि जीएमसी बाल योगी संसदीय गरिमा, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणादायक विरासत हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। श्री मांडविया ने देश भर के सभी शारीरिक शिक्षा पेशेवरों से इस पोर्टल पर पंजीकरण करने का आग्रह किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों के स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड

तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उधर स्क्वैश में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका को और हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं लोकरंजनी कार्यक्रम लेकर के।
1: बिल्कुल
0: और भाई आज हम अपने सभी बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं प्यारे प्यारे लोकगीत।
1: और बिल्कुल अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं के सभी भाई बहनों का जो है मनोरंजन करवाते हैं। विविधता से भरे हुए प्यारे प्यारे लोकगीत अपने सभी भाई बहनों के लिए लेकर आते हैं। तो आज भी हम भाई जो है उनकी पसंद के कुछ प्यारे से लोकगीत लेकर आए हैं। और शुरुआत करते हैं अतुल भाई, सबसे पहले पुष्पा गोसाई की आवाज़ से भाई एक प्यारे से लोकगीत का ततैया बैरी खा गए हो।
0: तो सुनते हैं ये लोग की।

ततैया बेरी खा गई ओरी, मेरा नाम श्रुति मेघा। अभी हमारे सभी बहन भाई सुन रहे थे पुष्पा गुसाई की आवाज में ये लोकगीत। और देखिए, अब अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं पायल बहन शिवानी गोला की आवाज में ये लोकगीत।

0: ऐसी दी ना समझो कमाल करूंगी। ये अभी लोकगीत हमने अपने सभी श्रोताओं को सुनवाया शिवानी गोला की आवाज में अतुल भाई, और भाई अगला जो लोकगीत है वो सुनवाएंगे सुनीता पांचाल की आवाज में।
1: तो सुनते हैं ये लोकगीत।

0: मैं कहती बारंबार मुझे कलकत्ता दिखला दो। सुनीता पांचाल की आवाज़ में अभी अपने सभी भाई बहनों को सुनवा रहे थे ये लोकगीत, और चलते चलते अब अपने सभी भाई बहनों को सुनवाते हैं सुधा श्रीवास्तव की आवाज़ में एक और प्यारा सा लोकगीत।
1: तो सुनते हैं ये लोकगीत।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे सुधा श्रीवास्तव की आवाज़ में ये लोकगीत, और इसी लोकगीत के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेलों का आईना,
2: नमस्कार। आकाशवाणी के कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनु गुप्ता और मेरे साथ हैं
3: अमीषा पटेल।
2: जी हाँ श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। और अमीषा, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम रुक करेंगे जापान का। जब वहाँ क्या हो रहा है अमीषा?
3: वहाँ पे हो रहे हैं 2026 के एशियन गेम्स, जहाँ हमें काफ़ी सारे स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हमारे भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
2: जी हाँ, और आज हम ढेर सारी खबरों के साथ आए हैं, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, स्क्वैश, सेलिंग, शूटिंग, तीरंदाजी, वॉलीबॉल, ऐसी कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे। और साथ ही नजर रहेगी 2 अक्टूबर को होने वाली कुछ अहम स्पर्धाओं पर। क्रिकेट में बात होगी भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे की। इसके अलावा भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की पुरुष और महिला टीमों के मुकाबले का भी ताजा हाल आपको बताया जाएगा। साथ ही भारत अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के यूथ टेस्ट का अपडेट और टेबल टेनिस के चाइना स्मैश में जुड़ी अहम खबरें भी हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। अमीषा, मेरा तो सांस फूल गया और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इन सभी खबरों का।
3: जी बिल्कुल अनु, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन गेम्स की, जहां हमारे हाथ लगे हैं मेडल्स और कुछ निराशाएं भी साथ में हाथ लगी हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि एशियन गेम्स में क्या क्या हुआ है। तो अब अपने श्रोताओं को सुनाते हैं यह खास रिपोर्ट।
2: तो अब बात करते हैं एशियन गेम्स से आ रही सबसे बड़ी खबर, कुश्ती से, जहां भारत के नितेश सिवाच ने मेंस ग्रेको रोमन 97 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमन बेर्दी को 7-1 से हराया। भारतीय पहलवान ने पहले पीरियड में ही मुकाबले पर मजबूत पकड़ बनाते हुए 7-0 की बढ़त हासिल कर ली और अंततः मुकाबला 7-1 से अपने नाम किया। इसके बाद सेमीफाइनल में नितेश मंगोलिया के गानखुयाक के खिलाफ और भी दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने शुरुआत में 1-1 हासिल किया और फिर 2 शानदार 4-पॉइंट थ्रोज लगाते हुए पहले ही पीरियड में 9-0 की बढ़त बना ली। मुकाबला टेक्निकल सुपीरियोरिटी के आधार पर यहीं समाप्त हो गया और नितेश ने गोल्ड मेडल बाउट में जगह बना दी। फाइनल में नितेश का सामना मेजबान जापान के यूरी नाकाजातो से हुआ। भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश की, लेकिन निर्णायक मुकाबले में नाकाजातो ने जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और नितेश सिवाच को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। श्रोताओं, स्वर्ण पदक हाथ से निकल गया, लेकिन नितेश का ये रजत पदक भी भारतीय ग्रीको रोमन रेसलिंग के लिए बेहद खास उपलब्धि है। वो 1962 के बाद एशियन गेम्स में ग्रीको रोमन रेसलिंग के फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने, यानी उन्होंने भारत का 64 साल का इंतजार समाप्त किया। इससे पहले 1962 के एशियन गेम्स में मालवा सिंह और गणपत अंदालकर ने पदक हासिल कर भारत को गौरवान्वित किया था। अब रुख करते हैं सेपेक ट्रॉफी और, जहां भारतीय पुरुष टीम ने मेंस क्वाड्रेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली और इसके साथ ही भारत का एक पदक भी सुनिश्चित हो गया है। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के खिलाफ जीत के साथ की। भारतीय टीम ने मुकाबले पर शुरू से नियंत्रण बनाए रखा और सीधे 2 सेटों में 2-0 से जीत दर्ज की। पहला सेट भारत ने 15-9 और दूसरा 15-8 से अपने नाम किया। इसके बाद आज भारत का सामना वियतनाम से हुआ। पहला सेट काफी करीबी रहा, लेकिन निर्णायक मौकों पर भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर खेल दिखाते हुए इसे 15-12 से जीत लिया। दूसरे सेट में भारत का दबदबा और बढ़ा और उसने 15-9 से जीत दर्ज करके मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया। ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में भारत के सामने म्यांमार की चुनौती थी। म्यांमार ने पहला सेट 15-10 से जीतकर भारत को दबाव में डाल दिया, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार वापसी की। बेहद रोमांचक दूसरे सेट को भारत ने 15-13 से जीतकर मुकाबला बराबर किया और फिर निर्णायक तीसरे सेट में पूरी तरह हावी रहते हुए 15-7 से जीत दर्ज की। इस तरह भारत ने म्यांमार को 2-1 से हराया। सेट्स रहा 10-15, 15-13 और 15-7। इस शानदार कमबैक विक्ट्री के साथ भारतीय टीम ने ग्रुप ए में अपना अभियान अपराजित रहते हुए शीर्ष स्थान पर समाप्त किया और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के साथ कम से कम

0: से पदक सुनिश्चित कर लिया।
1: अब बात करें आर्चरी यानी तीरंदाजी की, तो आज तीरंदाजी के व्यक्तिगत नॉकआउट और मेडल मुकाबले खेले गए, जिसके बाद कुछ इस तरह रहा भारत का प्रदर्शन। पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में उन्हें दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ 144 के मुकाबले 148 अंकों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में गणेश ने वियतनाम के खिलाड़ी कांग डुक को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराकर पदक अपने नाम किया। इसके बाद महिला व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें तो भारत की चिकिता तनिपार्थी महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की नुरिसा डियान से 143 के मुकाबले 144 अंकों के बेहद करीबी अंतर से हार गईं। तो हमेशा बात करते हैं कुश्ती की, जहां विमेंस फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम में भारत की मानसी अहलावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और अब उनकी नजर कांस्य पदक पर है। मानसी ने अपने अभियान की शुरुआत राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान की इरीना के खिलाफ की। पहला पीरियड काफी करीबी रहा और मानसी ने 1-0 की मामूली बढ़त बनाई। दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने आक्रामक रूप अपनाया और 5 अंक और जुटाते हुए मुकाबला 6-1 से अपने नाम किया। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में मानसी का सामना साउथ कोरिया की जो सुबीन से हुआ। यहां भारतीय पहलवान और भी प्रभावशाली नजर आईं। मानसी ने शुरुआत से मुकाबले पर नियंत्रण बनाया और 5-0 की बढ़त हासिल करने के बाद अपनी कोरियन प्रतिद्वंदी को पिन कर विक्ट्री बाय फॉल के जरिए मुकाबला समाप्त कर दिया। इस शानदार जीत ने उन्हें विमेंस 62 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में मानसी के सामने कड़ी चुनौती थी। उनका मुकाबला जापान की 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन नोनोका ओजाकी से हुआ। जापानीज पहलवान ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए मुकाबले पर नियंत्रण रखा और मानसी को 6-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में हार के बाद मानसी की पदक की उम्मीद बरकरार है। अब वो ब्रॉन्ज मेडल बाउट में उतरेंगी और उनके पास अपने शानदार अभियान को एशियन गेम्स के पदक के साथ समाप्त करने का मौका होगा।
0: जी बिल्कुल, और एक मौका बनाया है हमारे सेलर्स ने, जहां मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल की जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पुरुषों के स्किफ 49 ER इवेंट में देश को रजत पदक दिलाया है। इस जोड़ी ने चीनी चुनौती को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरे स्थान पर रहकर पोडियम पर तिरंगा लहराया। इसके साथ ही भारत की नजरें अब पुरुषों के ILCA 7 मेंस डिंगी इवेंट पर टिकी हुई है, जहां स्टार नाविक विष्णु सरवनन आज दमदार खेल दिखाते हुए पदक की रेस में मजबूती से बने हुए हैं। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स खेल चुके विष्णु 3 अक्टूबर को होने वाली अंतिम रेस में अपने पिछले कांस्य पदक का रंग बदलने के इरादे से पानी में उतरेंगे। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा की जोड़ी पदक के बेहद करीब पहुंचकर 4th स्थान पर रही।
1: तो श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं जूडो की, जहां विमेंस 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की यामिनी मौर्य ने अपनी शुरुआती मुकाबले में कतर की फतेन बू काहूस को हराकर शानदार शुरुआत। यामिनी ने मुकाबले में शुरू से दबदबा बनाया और अपनी कतरी प्रतिद्वंदी को इपॉन से हराया। जूडो में इपॉन सबसे बड़ा और निर्णायक स्कोर होता है और इपॉन मिलते ही मुकाबला समाप्त हो जाता है। इस जीत के साथ यामिनी क्वार्टर फाइनल में पहुंची, जहां उनका सामना मंगोलिया की आरियून जाया से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन मंगोलियन जुडोका ने यूको के अंतर से जीत हासिल करी। यूको जुडो में छोटा स्कोरिंग एडवांटेज है, जो करीबी मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद यामिनी को रेपाचेज के जरिए पदक की दौड़ में बने रहने का मौका मिला। रेपाचेज में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला जीता और ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह बना ली। लेकिन कांस्य पदक मुकाबले में यामिनी को उज्बेकिस्तान की शुकुरजोन अमीनोवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अमीनोवा ने इपॉन के जरिए ये मुकाबला जीतकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जबकि यामिनी बेहद करीब पहुंचने के बावजूद पदक से चूक गई।
0: जी पर नहीं चूके हैं भारतीय शूटर अनीश पानवाला, जिन्होंने 2026 एशियाई खेलों की पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 7वें स्थान पर अपनी जगह बनाई। अनीश क्वालिफिकेशन राउंड में 9वें स्थान पर रहे थे, क्योंकि प्रति देश केवल 2 निशानेबाजों के सेमीफाइनल में जाने के नियम हैं। इसके कारण उन्हें फाइनल टॉप 8 में जगह बनाने का मौका मिला। फाइनल के एलिमिनेशन स्टेज में उन्होंने 15 में से 11 हिट लगाए। उस चरण में उनका स्कोर संयुक्त रूप से 3रा सबसे अच्छा रहा था, लेकिन क्वालिफिकेशन स्कोर कम होने के कारण टाई ब्रेकर नियम के तहत वे 7वें स्थान पर आ गए। इस स्पर्धा के समापन के साथ ही भारतीय शूटिंग टीम ने इन खेलों में अपने अभियान को कुल 15 पदकों यानी 3 स्वर्ण 8 रजत और 4 कांस्य के साथ समाप्त किया।
1: तो इसके साथ ही खत्म हुआ है सफर श्रीलंका का फाइनल तक का। खबर है क्रिकेट पिच से, जहां

0: भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, जहां अब गोल्ड मेडल के लिए भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने 46 बॉल्स में 4 चौके और 5 छक्के की मदद से अनबीटन 80 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, जबकि ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने 21 बॉल्स में 38 रन जोड़े। मैदान की स्लो पिच के बारे में क्या कहते हैं ईशान किशन, आइए सुनते हैं।
1: क्रिकेट इज ऑल अबाउट यू नो यू गेट आउट इन वन गुड बॉल एंड इट जस्ट चेंजेस द होल सिनेरियो ऑफ द गेम, सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, व्हाट द पिच इज गोइंग टू डू, व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू, व्हाट द टीम रिक्वायर्स। सो स्पेशली ऑन दीस विकेट्स आई फील इट्स मोर अबाउट your team goals other than your individual goals, so we just focus on those little things.
0: Pakistan se hone wale final par kya kehte hain Ishan Kishan, aaiye sunte hain.
1: I think just keeping it simple, you know, you don't think so much. We played today, we know the conditions are not going to be so easy, especially they are also spinner friendly team. At the same time, you know, you just don't think like what's going to happen after 2 days. You just keep calm, you play your shots, you be in the moment and just enjoy those crunch moments.
0: के बाद ही जवाब में भारत ने 170 रन का टारगेट चेज करने उतरी श्रीलंका की टीम को मात्र 9.5 ओवर्स में 45 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसमें जो नवनिधु फर्नांडो है उन्होंने 15 रन बनाकर वह श्रीलंका के लिए हाईएस्ट स्कोरर रहे, जबकि 5 बैटर्स 0 पर आउट हुए। इंडिया की जो जीत है उसमें योगदान रहा जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने 7 रन देकर 2 विकेट लिए। उसके साथ ही योगदान रहा अक्षर पटेल का, जिन्होंने 8 रन देकर 2 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा ने भी 2 रन देकर 2 विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने भी 18 रन देकर 1 विकेट लिया।
2: जी हाँ, हमेशा काफ़ी उठापटक चल रही है एशियन गेम्स में, और एशियन गेम्स से ही एक और ताज़ा खबर आ रही है मानसी अहलावत की तरफ से। मानसी अहलावत कांस्य पदक से चूक गई हैं। एशियाई खेलों में महिला 62 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में मानसी मंगोलिया से 2-5 से हार गई हैं। एक और हार की खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ग्रीको रोमन 77 किलोग्राम भार वर्ग से भारत के अमन बरोनिया ने अपने शुरुआती मुकाबले में बेहद संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की थी। राउंड ऑफ 16 में अमन का सामना मंगोलिया के बोरगिल से हुआ। दोनों पहलवानों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय पहलवान ने निर्णायक मौकों पर अंक जुटाते हुए 8-6 से जीत हासिल की। मंगोलियन पहलवान ने लगातार दबाव बनाए रखा और मुकाबला अंतिम चरण तक खुला रहा, लेकिन अमन ने 2 अंकों की बढ़त कायम रखते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया। हालांकि इसके बाद क्वार्टर फाइनल में अमन को कतर के एशियन चैंपियन शाहीन के खिलाफ टेक्निकल सुपीरियॉरिटी से हार का सामना करना पड़ा और बाद में उनका मेडल कैंपेन समाप्त हो गया।
0: जी बिल्कुल अनु, इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीत की भी, जहां स्क्वॉश में 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। आज खेले गए दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों में भारतीय पुरुष और महिला टीमों को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद दोनों को कांस्य पदक मिला। और इस पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हांगकांग ने 2-1 से हराया। भारत के लिए केवल तन्वी खन्ना जो है वही अपना मैच जीत सकी, जबकि अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा को अपने मैचों में हार झेलनी पड़ी। वहीं पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में भारत को मलेशिया ने 2-1 से मात दी। इस मुकाबले में वीर चोटरानी ने अपना मैच जीता, लेकिन अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार को हार का सामना करना पड़ा। इसके इन 2 कांस्य पदकों के साथ ही एशियन गेम्स 2026 में भारत का स्क्वैश अभियान कुल 4 पदकों यानी 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त हो गया है।

0: जी, तो अब बात करते हैं टेनिस की। एशियन गेम्स में ही, टेनिस में भी हमें निराशाजनक खबर देखने को मिली है कि जो
1: क्या क्या निराशाजनक खबर है अमीषा?
0: जी, तो जो भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल है, वह पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में चीन के जो खिलाड़ी हैं उनसे सीधे सेटों से हार गए हैं, जिससे एशियाई खेलों में भारत

0: भारत का अभियान बिना किसी पदक के समाप्त हो गया है। ये आपको बता, हम अपने श्रोताओं को बता दें अनु कि 1986 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एशियाई खेलों में टेनिस में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है।
1: जी हाँ अमीषा, तो ऐसा लगता है कि आज का दिन एशियन गेम्स में भारत के लिए मिला जुला रहा, जहाँ कई सेलिंग में हमें सिल्वर मिला, साथ ही नितेश भी सिल्वर मेडल लेकर आए हैं भारत के लिए, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी हार का भी सामना करना पड़ा है।
0: जी बिल्कुल। और एक और हम अपने श्रोताओं को जाते खबर बताएंगे एशियन गेम्स की हॉकी से, कि हॉकी में भी भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को एक रोमांचक मुकाबले में 4-3 से करीबी जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए और मौजूदा चैंपियन भारत ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-3 से हरा कर एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया है, जहां पे हरमनप्रीत ने 5वें और 13वें मिनट में 2 शानदार पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला, जबकि सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में एक फील्ड गोल दागा। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में फील्ड प्ले के जरिए भारत के लिए विजयी गोल दागा। पाकिस्तान की ओर से महज अबू अहमद जिन्होंने 30वें मिनट में और हनान शाहिद जिन्होंने 45वें मिनट में गोल किया, और इसी के साथ वहीद राणा ने भी गोल किया। भारत शनिवार को अब दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच जो आज मैच हुआ था उसके विनर से आगे वह भिड़ेगा।
1: तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एशियन गेम्स से दूसरी तरफ, यानी कि क्रिकेट की तरफ ही, लेकिन इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आइए अमीषा अपने श्रोताओं को वहां लेकर चलते हैं। तो मैं जानती हूं कि हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी मालूम होगा कि इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए में ऑस्ट्रेलिया का टूर जो इंडिया में चल रहा है वो कौन से स्टेट में चल रहा है। ये पुदुचेरी में चल रहा है और पुदुचेरी में खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जी हाँ श्रोताओं, पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए ने पहली पारी में 358 रन बनाए। डेब्यू कर रहे विकेटकीपर बल्लेबाज सैम हार्पर ने शानदार 128 रन बनाए, जबकि जेसन सांगा ने 46, नेथन मैक्सवीनी और लियाम स्कॉट ने 34-34 और टॉड मर्फी ने 33 रन का योगदान दिया। इंडिया ए की ओर से अंशुल कंबोज, नचिकेत भूटे और शम्स मुलानी ने 3-3 विकेट हासिल किए। इसके जवाब में इंडिया ए ने दूसरे दिन के 122 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आज अपनी पारी आगे बढ़ाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया ए के गेंदबाजों के दबाव से नहीं निकल सके और पूरी टीम 167 रन पर ऑल आउट हो गई। शेख रशीद ने सर्वाधिक 45 रन जबकि कप्तान देवदत्त पड्डीकल ने 31 रन बनाए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ए ने पहली पारी के आधार पर 191 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी शुरू की और पहली पारी में मिली बड़ी बढ़त के सहारे मुकाबले में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। अब इंडिया ए के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंडिया ऑस्ट्रेलिया ए की दूसरी पारी को जल्द समेटने और अंतिम पारी में मिलने वाले बड़े लक्ष्य का सामना करने की होगी। तो ये बात थी मेंस क्रिकेट की, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए। आइए आपको लड़कियों यानी कि हमारी जो छोरियां हैं, जो छोरों से कम नहीं है, उनके पास भी लेकर चलते हैं। तो इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए विमेंस जो क्रिकेट मैच हो रहा है वो मोहाली में खेला जा रहा है और इसके 4 दिवसीय मुकाबले में तीसरे दिन भारतीय महिला टीम ने मैच पर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। इंडिया ए महिला ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए महिला की पूरी टीम महज 176 रन पर सिमट गई, जिससे भारत को पहली पारी के आधार पर 188 रनों की बड़ी बढ़त हासिल हुई। इसके बाद इंडिया ए महिला ने अपनी दूसरी पारी में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 257 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ए महिला के सामने जीत के लिए 446 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और भारतीय गेंदबाजों ने लगातार अंतराल पर विकेट झटक कर मेहमान टीम के शीर्ष क्रम को पूरी तरह दबाव में ला दिया। आखिरी स्थिति के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम ने अपनी दूसरी पारी में 33 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए थे और उन्हें जीत के लिए अभी भी 381 रनों की जरूरत है, जबकि उनके पास केवल 5 विकेट ही शेष हैं। इससे पहले इंडिया ए महिला की पहली पारी की मजबूत नींव तनिषा सिंह, निकी प्रसाद, शुभा सतीश और प्रिया पुनिया के अहम योगदान से रखी गई थी। और अब

0: दूसरे दिन के खेल में ऑस्ट्रेलिया ए महिला के 5 विकेट गिरने के बाद भारतीय महिला टीम इस मुकाबले में जीत की ओर बहुत मजबूती से बढ़ती नजर आ रही है, जहां गेंदबाजों को मैच अपने नाम करने के लिए केवल 5 और विकेटों की आवश्यकता है। तो ये कुछ एनकरेजिंग न्यूज है यहाँ पर। अमीषा, आप अब कौन सी खबर लेकर आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
1: जी, मेरे पास एक और एनकरेजिंग न्यूज़ है क्रिकेट के मैदान से ही, जहां कल गुवाहाटी में हुआ था भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ का दूसरा ओडीआई। तो इस दूसरे वनडे मैच में इतिहास के पन्नों में यह हमेशा के लिए अमर हो गया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रनों का विशाल पहाड़ खड़ा किया, जिसमें उनके बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल, शाई होप और आमिर जांगू ने दमदार शतक लगाए और अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। और भारत की तरफ से स्पिनर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए और वनडे क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। इसी मैच में जम्मू कश्मीर के तेज़ गेंदबाज आकिब नबी ने भी अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। जीत के लिए भारत को मिला था 406 रनों का नामुमकिन लक्ष्य। इस ऐतिहासिक रन चेस को करते समय बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हमें देखने को मिले, जिसमें हमें देखने को मिला मैदान पर कप्तान शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा के वो अच्छी पार्टनरशिप, जो 255 रनों की एक ऐतिहासिक ओपनिंग पार्टनरशिप में दर्ज हुई। रोहित शर्मा ने सिर्फ 282 पारियों में अपने 12,000 रन पूरे कर लिए हैं और वह सचिन तेंदुलकर से, जिन्होंने 300 पारी में इतने रन का जो एक टारगेट है वो पूरा किया था, उनसे वह आगे बढ़कर अब दूसरे नंबर आ गए हैं और एक पहले नंबर पे जो है वह विराट कोहली हैं। सचिन तेंदुलकर को छोड़कर वह आगे बढ़े हैं और साथ ही 39 ईयर्स के यानी कि उम्र दराज शतकवीर भी बन गए हैं भारतीय टीम के लिए। वहीं दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल ने भी मैदान में काफ़ी अपना अच्छे शॉट से दर्शकों का जो है एक मनोबल बढ़ाया, जिन्होंने महज 117 गेंदों में वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक ठोक दिया था और वह 223 रनों की नाबाद पारी उन्होंने खेली। यह वनडे इतिहास में किसी भी कप्तान का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। आपको बता दें श्रोताओं कि क्रिकेट इतिहास का यह पहला ऐसा मैच है जहां एक ही वनडे में 5 व्यक्तिगत शतक लगे हैं। दोनों टीमों ने मिलकर 811 रन बनाए और भारत ने वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज सिर्फ 43.3 ओवरों में पूरा कर लिया और सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। शुभमन गिल की बेमिसाल पारी के कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
0: जी हाँ अमीषा, ये वाकई में एनकरेजिंग खबर है। अभी तक हम सुनते जा रहे हैं खेल की खबरें, लेकिन आइए सुनते हैं कुछ मन की बात।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मनायाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ, तो ये था मन की बात। आप अपनी मन की बात करने के लिए हम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आगे चलते हैं खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं WTT चाइना स्मैश 2026 में, जहां भारतीय पेडलर्स अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी आधिकारिक शुरुआत आज यानी 1 अक्टूबर 2026 को बीजिंग में हो चुकी है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष टेबल

0: टेनिस खिलाड़ी जिसमें मानुष शाह, मानव ठक्कर, दिया चितले और यशस्विनी घोरपड़े शामिल है। जापान में 2026 एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सीधे इस टूर्नामेंट के लिए पहुंचे हैं, जहां मानुष शाह और दिया चितले की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने ऐतिहासिक कांस्य पदक अपने नाम किया है। फिलहाल टूर्नामेंट के शुरुआती क्वालिफाइंग राउंड में मुकाबले खेले जा रहे हैं और चूंकि मुख्य ड्रॉ के बीच 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले हैं, इसलिए आने वाले दिनों में भारतीय खिलाड़ियों के मैच परिणाम आपको हम जल्द ही बताते रहेंगे। तो ये एक बड़ी ही, वंस अगेन मैं कहूँगी, बहुत ही अच्छी खबर है कि एशियन गेम्स में जब कांस्य पदक हमें हासिल हो गया है, उससे हमारे पेडलर्स का मनोबल काफ़ी बड़ा होगा और मुझे ऐसा लगता है WTT चाइना स्मैश में भी भारतीय पेडलर्स कुछ धमाकेदार कर दिखाएंगे। क्या कहती हैं अमीषा?
1: जी बिल्कुल, हमें हमेशा अपने जो भारतीय प्लेयर्स हैं उनसे हर स्पोर्ट में हमें अब अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहती है। और जब हम बढ़ते हैं आगे, तो हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, उसमें एक और छोटी सी न्यूज़ हम आपको बताते चलते हैं कि ICC का एक नियमों में उन्होंने चेंज किया है कि जो ICC ने क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें ओवर थ्रो से लेकर रनआउट तक उन्होंने कई नियम बदले हैं। जैसे कि 1 अक्टूबर यानी आज से इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेइंग जो कंडीशंस है उसमें बदलाव कुछ इस तरह किए गए हैं कि बल्लेबाज के समय गंवाने या फिर ओवरथ्रो की स्पष्ट परिभाषा और रनआउट स्टंपिंग के नियमों में बदलाव भी जो है वह शामिल है। और
0: जी हाँ, अभी ये कुछ नई खबरें थी हमारे पास, लेकिन एशियन गेम्स की एक खबर हमसे छूट गई थी, आइए जानते हैं उसके बारे में। नागोया से ही एक भारत की इनुगनबी ने बृहस्पतिवार को एशियाई खेलों की महिला 70 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में रेपेचेज मुकाबला जीतकर कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाई, जबकि यामिनी मोरया, जैसा कि हम बता चुके हैं, वो रेपेचेज मुकाबले में हार के साथ अभियान समाप्त कर चुकी हैं। ताखेला बम खाम ने शुरुआत में नेपाल की पूनम श्रेष्ठा को इप्पोन से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल में उन्हें उत्तर कोरिया की सांग हुई मुन ने इप्पोन से हरा दिया था। सांग के फाइनल में पहुंचने के बाद ताखेला बाम को रेपेचेज के जरिए पदक मुकाबले में आगे बढ़ने का मौका मिला। भारतीय खिलाड़ी को रेपेचेज दौर में चीन की जिंग टांग से भिड़ना था, हालांकि मुकाबले से पहले चीनी खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी भारतीय खिलाड़ी को हुसैन गाजी के जरिए वॉकओवर जीत मिली। ताखेला बाम बृहस्पतिवार को ही कांस्य पदक के लिए मंगोलिया की अनु उरान से भिड़ेंगी। इससे पहले यामिनी ने कतर की काहूस को इपोन से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। हालांकि उन्हें मंगोलिया की टेबिश के खिलाफ यूको से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद यामिनी रेपेचेज मुकाबले में जापान की मियो शिराकाने के खिलाफ इपोन से हार गई, जिससे उनका अभियान समाप्त हो गया। जूडो में इपोन ऐसी तकनीक है श्रोताओं, जिससे खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को काफी ताकत और गति के साथ मैट पर इस तरह गिराता है कि उसकी पीठ जमीन से लगे। वही यू को प्रभावी थ्रो या होल्ड डाउन के लिए दिया जाने वाला मध्यम स्तर का स्कोर है। हुसैन गाची का अर्थ मुकाबला शुरू होने से पहले प्रतिद्वंदी के हटने या डिफॉल्ट करने के कारण जीत से है। ये जूडो में रेफरी द्वारा दिए जाने वाले निर्णय या स्कोरिंग शब्द कहे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एशियन गेम्स न केवल भारतीय स्पोर्ट्स लवर्स को रोमांचित कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों का नई नई वोकैबलरी से, नई नई शब्दावली से भी हमारा परिचय हो रहा है।
1: जी बिल्कुल, और एशियन गेम्स की हम बात कर रहे हैं तो हम छोटा सा हम एक स्टोरी बताना चाहेंगे चिकिता की, जिन्होंने अपने पिता के कहने पर उन्होंने कराटे की बजाय तीरंदाजी चुनी थी। पहली बार एशियाई खेलों में उतरी चिकिता तनिपार्थी ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा की झलक तो दिखाई ही है बड़े बड़े गेम्स में, साथ ही अपने पिता के फैसले को भी उन्होंने सही साबित कर दिया है। तो अनु, अगर वह ऐसे जो प्लेयर्स हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, अगर अपना ये लोग गेम ना चुनते तो शायद हो सकता है कि भारत अपनी मेडल टैली में इतना आगे ना पहुंचता।
0: आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अमीषा, जैसे कि हमने कल भी नीरू की एक कहानी बताई थी और वो बहुत ही प्रोत्साहन भरी थी, जिससे कि पता चल रहा था कि चाहे हमारे पास रिसोर्सेज हों या ना हों, लेकिन हम फिर भी यदि हमारे अंदर जज्बा है तो हम कुछ साबित कर दिखा सकते हैं। तो आज अमीषा हम जो खबरें लेकर आए हैं एक बार उनको समराइज कर देते हैं अपने श्रोताओं के लिए। एशियन गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन किया। पुरुष क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने

0: गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: खेल खिलाड़ी खेलों का नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरू ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही

0: भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
1: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
1: स्वच्छता ही सेवा अभियानस्यान्तर्गतम् अद्य देशव्यापी एकः दिवसः एका होरा एकीभूय इति स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रमः सोत्साहम् आयोजितः। अस्मिन् अभियाने बहुभिः केन्द्रीयमन्त्रिभिः मुख्यमन्त्रिभिः वरिष्ठाधिकारिभिश्च भागः गृहीतः। विगतमासस्य 17 दिनाङ्कात् आरब्धम् इदम् अभियानम् आगामी अक्टूबर मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते। अस्य वर्षस्य मुख्य ध्येय वाक्यं स्वच्छतायां सहभागः, स्वच्छ भारतं विकसित भारतम् इत्यस्ति। नवदिल्ल्याः सफदरजंग समाधि स्थानके विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः स्वच्छता कार्ये सहभागम अकरोत्। असौ अब्रवीत् यत् स्वच्छता न तु केवलं एकदिवसीयं अभियानं, प्रत्युत अस्माकं दैनन्दिनं दायित्वं भवेत्। अपरं च जलशक्ति मंत्री CR पाटीलः अपि नवदिल्ल्याः कालिंदी कुंज घट्टे श्रमदान कार्ये सक्रियं योगदानम् अयच्छत्। अद्य नवदिल्ल्याः लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालये 26th-2000 वर्षस्य राष्ट्रिय ऐच्छिक रक्तदान दिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे नीति आयोगस्य स्वास्थ्य सदस्यः डॉक्टर M. श्रीनिवासः ऐच्छिक रक्तदान शिबिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्। नागरिक विमानयन मंत्री राममोहन नायडूः अब्रवीत् यत् देशः वैमानिकस्य कैप्टन स्मिथ मच्छारस्य असाधारण साहसेन उपस्थित बुद्ध्या च अतीव गौरवान्वितः अस्ति, येन विमानस्थ सर्वेषां यात्रिणां प्राणाः सुरक्षिताः। मंत्री प्रवरेण निगदितं यत् भारतीय वैमानिकाः स्वकीयेन कौशलेन अनुशासनेन निष्ठापूर्ण सुरक्षा प्रतिबद्धतया च जगति प्रतिष्ठां लब्धवन्तः। पाकिस्तानेन अफगानिस्तानस्य कुनार हेलमंद मण्डलयोः नागरिक गृहेषु कृत वैमानिक आक्रमणेषु स्त्री शिशून् समादाय न्यूनातिन्यूनं 10 अफगान नागरिकाः मृताः, 11 अन्ये च व्रणिताः। तालिबान प्रवक्त्रा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इत्यसौ अकथयत् यत् अस्मिन् आक्रमणे कुनार मण्डलस्य शुल्तान क्षेत्रे हेलमंद मण्डले त्रीणि भवनानि विनष्टानि। अस्य वैमानिक प्रहारस्य तीव्रं विगर्हणं कुर्वन् मुजाहिद इत्यसौ प्रत्यारोपितवान् यत् पाकिस्तान देशः स्वकीय राजनैतिक आर्थिक संकटेभ्यः जनध्यानम् अपसारयितुम् अफगानिस्तान विरोधी नीतिं समाश्रयति। भारतीय नौसैन्यबलानां प्रमुखः पोतः INS तर्कशः स्वस्य यात्राक्रमे केन्या देशस्य मोम्बासा नगरस्य पोताश्रयं प्राप्नोत्। रक्षामन्त्रालयेन प्रोदीरितं यत् अयं प्रवासः ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्धैः सम्बद्धयोः भारत केन्या समुद्र राष्ट्रयोः प्रगाढ सम्बन्धान् दृढयति। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली दिवसस्य प्रसंगे आभासीय माध्यमेन भाषमाणः मुख्य आर्थिक उपदेष्टा वी अनंत नागेश्वरन समावोचत् यत् कौटुंबिक संचयानां विशालः अंशः दीर्घकालिक पेंशन योजनासु विनियोक्तुं नागरिक प्रोत्साहनं शासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। जापानस्य काकामिगाहारा नगरे आयोजितायां एशियाई क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलेन चिरप्रतिद्वन्द्विनं पाकिस्तान देशं 4-3 इति चक्रैः पराभूय अन्तिमस्पर्धायां प्रवेशो लब्धः। इति वार्ताः।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:30 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के। और भैया आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन होता है हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम भाई, जिसमें हम अपने सभी बहन भाइयों की जो फरमाइश होती है उसको पूरा करते हैं उनकी पसंद के कलाकार के द्वारा।
1: बिल्कुल, और फरमाइशें आती हैं और बहुत ही लोग भाई हमारे इस कार्यक्रम को पसंद भी करते हैं अतुल भाई, और हम उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे। और जैसा कि बृहस्पतिवार का दिन खास होता है, SMS कार्यक्रम होता है, तो ऐसे ही हर दिन अपने आप में कुछ खास होता है। आज 1 अक्टूबर का दिन है अतुल भाई,
0: जी
1: आज भी एक महान हस्ती, जो एक तरह से कहें कि उन्होंने जो है काफ़ी कुछ योगदान हमारे इस दुनिया में दिया है, डॉक्टर एनी बेसेंट, इनकी जयंती 1 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनका जन्म 1847 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था, और उन्होंने भारत में स्वशासन के लिए होम रूल लीग 1916 की स्थापना की। वर्ष 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर हुआ।
0: बिल्कुल। और देखिए और एक खास दिन है आज पायल बहन, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी है जो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को संकल्प पारित कर इस दिवस को मनाने की जो है घोषणा की, और प्रथम बार यह दिवस 1 अक्टूबर 1991 को जो है मनाया गया। इसका उद्देश्य यही है कि जो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान जाहिर करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, स्वास्थ्य की देखभाल और उनके अनुभव को समाज हित में महत्व देना। देखिए कहते हैं ना कि बुजुर्ग हमारे समाज और परिवार की अमूल्य धरोहर होते हैं जो नई दिशा और संस्कार प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, और कहना आपका कि हर दिन हर पल हर समय अपने आप में खास होता है, और खास क्यों ना हो, क्योंकि हमें हर समय को हर पल को बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही आनंद के साथ जीना चाहिए। और हमारा ये कार्यक्रम भाई जो है लोगों के जीवन में ऐसे ही आनंद के कुछ पल लेके आता है, अपने भाई जो हमारी जो फरमाइशें हैं, हमारी जो रागनियाँ हैं, हमारे जो गीत हैं, हमारे जो लोकगीत हैं, बहुत सारी विधाएं हैं जिसको हम अपने सभी श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ कुछ जानकारियां भी देते रहते हैं।
0: बिल्कुल पहले मैंने आप सही कह रही हैं। देखिए हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा कि आपने रागनियां बताई हैं, कि रागनियों के माध्यम से भी, उपदेशों के माध्यम से भी और भजनों के माध्यम से भी हमारे कार्यक्रम की यही मुख्य विशेषता रही कि कुछ ना कुछ सीख हमारे सभी श्रोताओं को समय समय पर हमारे रागनी, उपदेश और भजनों से भी मिलती है,
1: और साथ ही साथ भाई मन आनंदित तो होता ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भाई ऐसे ही हम सभी अपने श्रोताओं से चाहेंगे कि भाई ऐसे ही आप हमारे इस कार्यक्रम को प्यार देते रहें, और इतना प्यार दिया है कि भाई इतने सारे SMS अतुल भाई हमारे पास आ चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जो आज के हमारे पहले कलाकार हैं वो हैं गजेंद्र सिंह, और इनके लिए हमारे पास SMS आ चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: पहला SMS आया है ठाणा नरसाना भिवानी से, भेजने वाले भाई हैं जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये हमारे पास SMS आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, भेजने वाले भाई हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और परिवार के सदस्य। गांव कोखरा वाली श्री गंगानगर से हमें SMS भेजा है विनोद बरासा और रोशनी बरासा ने। गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से भी हमें SMS प्राप्त हुआ है, भेजने वाले भाई हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और परिवार के

0: सभी सदस्य। गांव ढाणी लाल खां, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से यह SMS भेजा है मास्टर मुकेश सुथार कृष्णा और परिवार के सभी सदस्य।
1: यह SMS हमें मिला है पटेल नगर मैलोड से, भेजने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया और उनका पूरा परिवार। यह SMS हमारे पास में आया है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं श्रवण कुमार प्रजापति और उनका पूरा परिवार। गांव ढाणी लाल खां नोहर से हमें फरमाई भेज रहे हैं जावेद खां और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं देवशंकर तामूरिया और इनका पूरा परिवार। एकता कॉलोनी रोहतक से भी हमें फरमाई भेज रहे हैं, फरमाइश भेजने वाले हैं सीताराम कांगड़ा और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है कलानौर से, भेजने वाले हैं नरेंद्र शर्मा और इनका पूरा परिवार। और गजेंद्र के लिए ही हमारे पास में फरमाइश आई है भाई कनेरा मोहल्ला पटियाला से, भेजने वाले हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। कुलम्ब रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से फरमाई भेज रहे हैं सुरेंद्र संधु और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, भेजने वाले हैं सुरेश ग्रोवर और इनका पूरा परिवार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं राष्ट्रपाल गजबी और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, भेजने वाले हैं मुर्शद जहानाज और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमें भेजी है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से, भेजने वाले भाई हैं रवि कुमार, राहुल और रंजीत कौर। ये फरमाइश हमें भेजी है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, भेजने वाले भाई हैं अभिजीत गौहणकर, राही श्रीमती सरिता और इनके परिवार के अन्य सदस्य। जटवाड़ा गाजियाबाद से भी हमें फरमाइश भेजी है शीशपाल अकेला जी ने, और ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले भाई हैं उदयपाल और जयहिंदपाल और परिवार के अन्य सदस्य। गांव चौधरीवास हरियाणा मांगेराम सतौड़ और शुभम और यश कुमार ने भी हमें फरमाइश भेजी है। ये फरमाइश हमें मिली है पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से, भेजने वाले भाई हैं संदेव मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और परिवार के अन्य सदस्य। दादा बाबू रोड झारखंड से ये फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज और परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: तो शुरुआत है सभी की फरमाइश पर गजेंद्र सिंह की आवाज़ में ये रागनी।

तू बन गया बेदर्दी, ए तेरा जइयो सत्यानाश, आज तने विधवा में कर दी, विधवा में कर दी। मेरी बाली उम्र का कालम से और वो घेर लिया गर्दी, अरे गणेश जी।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे गजेंद्र सिंह की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था भाई महाभारत का।
1: बिल्कुल। और जो हमारे अगले कलाकार हैं वो हैं ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती। इनके लिए भी हमारे पास SMS आ चुके हैं। और अतुल भाई, आप जो हम रागनी सुनवाएंगे वो सुनवाएंगे हरिश्चंद्र तारावती के किस्से में से।
0: बिल्कुल, और देखिए SMS हमारे पास में आया है, नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी से भेजने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू और इनका पूरा परिवार। ये SMS में मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौक खुंटी बुलंदशहर से भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका पूरा परिवार।
1: ये SMS हमें मिला है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से। भेजने वाले भाई हैं राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। अमजद जिला बागपत तहसील बड़ौत गांव शेरपुर लोहारा से भाई इन्होंने, भाई ने अपना नाम नहीं लिखा, अमजद नाम से इन्होंने भेजा है ये। और ये SMS हमें मिला है गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से। भेजने वाले भाई हैं सतवीर बिजारनिया देवेंद्र और परिवार के सभी सदस्य। और ये SMS हमें दिए भेजा है रामगढ़ कैंट से। भेजने वाले भाई हैं महेंद्र मोदी। और ये SMS हमें भेजा है भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से। भेजने वाले भाई हैं बिजेंद्र कुमार जयजान कांता रानी और परिवार के सभी सदस्य। रघुनाथपुरा

0: जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमें एसएमएस भेजा है लालगिरी को स्वामी और परिवार के सभी सदस्यों ने। ये एसएमएस हमें भेजा है चौधरी वास हिसार हरियाणा से। भेजने वाले भाई हैं राजू अग्रवाल, केशव और परिवार के सभी सदस्य।
1: जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से फरमाई भेज रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और उनका पूरा परिवार। और ये एसएमएस हमें मिला है भाई संदीप गुगलानी और जगमोहन सिंह प्रजापति जी का। ये भी हमें फरमाइश भेज रहे हैं भाई मॉडल टाउन करनाल से। और ये एसएमएस हमें मिला है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार। ये एसएमएस हमारे पास में आया है पायल बहन ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार। और ये एसएमएस हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से। भेजने वाले हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। मेरठ कैंट से फरमाइश भेज रहे हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। बेहर वाला खुर्द सिरसा से भी हमारे पास में फरमाइश आई है। भेजने वाले हैं बलवंत जाखड़ और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश भेज रहे हैं सुल्तान सिंह ताड़ और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है ग्राम पंचायत बड़ेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा और इनका पूरा परिवार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं भाई मुकेश शर्मा और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं अखिलेश कुमार शाहू और इनका पूरा परिवार। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से फरमाई भेज रहे हैं राधे श्याम शर्मा और इनका पूरा परिवार। सूरतगढ़ राजस्थान से भी हमारे पास में फरमाइश आई है। भेजने वाले हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार।
0: गांव अली मोहम्मद जिला सिरसा हरियाणा से फरमाइश भेजी है सुभाष लोना, ओमवती और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। धनौली तेलीवाला से ये फरमाइश भेजी है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है जमानिया गाजीपुर यूपी से। भेजने वाले हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और परिवार के सदस्य।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाने की आवाज़ में ये रागनी।

0: किसका चीर ले आया हरिया बता मने अन्यायी। बहुत ही सुंदर रागनी अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने सुनी, ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती की आवाज में भाई हरिश्चंद्र तारावती के किस्से की।
1: बिल्कुल। और भाई मनोरंजन तो हम कराते कराते हैं अतुल भाई, साथ ही साथ कुछ जानकारी भी अपने बहन भाइयों को हम देते हैं कार्यक्रम के
0: बिल्कुल
1: बीच बीच में। ऐसी ही एक जानकारी लेकर आए हैं हम मिशन लाइफ के बारे में, जो कि आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी कि पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली है उसके मिशन को लाइफ मिशन का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक भारत नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और समुदाय को प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि जलवायु परिवर्तन

0: प्रशासन और पर्यावरण संकट का मुकाबला किया जा सके।
1: बिल्कुल, और देखिए इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 के दौरान इसका विचार रखा था। इसे औपचारिक रूप से जो पायल बहन जो वो मिला है वो 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश की उपस्थिति में जो इसे लॉन्च किया गया। और इसका लक्ष्य यही है कि इसका ध्येय प्रो प्लेनेट पीपल की अवधारणा को बढ़ा देना है, यानी ऐसे लोग जो पर्यावरण की रक्षा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं।
0: और भाई इसका मूल मंत्र जो है वो है सचेत और जानबूझकर उपयोग, ना कि विनाशकारी उपभोग। और यह अभियान मुख्य रूप से 7 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: ऊर्जा की बचत, बल्बों का उपयोग, LED बल्बों का उपयोग, स्टार रेटेड उपकरण और सार्वजनिक परिवहन या पैदल साइकिल का प्रयोग, पानी की बचत, वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी के रिसाव को रोकना और ड्रिप सिंचाई अपनाना।
1: बिल्कुल, और देखिए एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहना, यानी कि प्लास्टिक की जो थैलियां हैं और बोतलों की जगह कपड़े के थैले, स्टील की बोतलें और कुल्हड़ का उपयोग करना। सतत खाद्य प्रणालियां जैसे कि स्थानीय एवं मौसमी खाद्य पदार्थों, मोटे अनाजों को अपनाना और भोजन की बर्बादी को रोकना। अपशिष्ट कचरा कम करना, यानी कि स्रोत पर ही कचरे का अलगाव और कंपोस्टिंग करना। ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा को कम करना, यानी कि गैजेट्स का लंबे समय तक उपयोग, इनकी मरम्मत और उचित पुनर्चक्रण, जीवन स्वस्थ जीवन शैली यानी कि योग, पैदल चलना और पर्यावरण के अनुकूल आदतें विकसित करना है।
0: बिल्कुल, और भाई ये जो मिशन लाइफ के 3 चरण हैं, मांग में परिवर्तन जो पहला चरण है, दैनिक जीवन में छोटे और पर्यावरण अनुकूल बदलावों को अपनाना, आपूर्ति में परिवर्तन, जब लोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग को बढ़ाएंगे तो अतुल भाई बाजार और उद्योग स्वतः ही उसके अनुसार स्थायी उत्पादों की आपूर्ति करेंगे। नीति में परिवर्तन, ये चरण 3 है, दीर्घकाल में सरकारी और औद्योगिक नीतियों में ऐसा बदलाव लाना जो सतत विकास का समर्थन करे।
1: बिल्कुल, तो ये तो रही भाई जानकारी मिशन लाइफ सेवा संकल्प अभियान के तहत, और SMS भी हमारे काफी श्रोताओं ने
0: भेजे हैं। और ऋषि पाल खदाना और पप्पू भारती को ही सुनने के लिए हमारे पास कुछ और SMS भी आ चुके हैं, जो कि जसपुर उत्तराखंड से आया है। SMS भेजने वाले भाई हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार।
1: ये SMS हमारे पास में आया है छत्तीसगढ़ हजदा नंबर 2 से कमलेश कुमार साहू और उनके पूरे परिवार की हमें फरमाइश आई थी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से फरमाई भेज रहे थे ओम प्रकाश राय और उनका पूरा परिवार। वडिंगकेड़ा पंजाब से फरमाई भेज रहे हैं मिंटो टॉम्स और उनका पूरा परिवार। और पायल बहन ये फरमाइश हमें भेजी थी भाई जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले थे मुकेश कश्यप और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई थी भाई चंडीगढ़ से भेजने वाले थे सतीश अनेजा और इनका पूरा परिवार।
0: जनकपुर सहारनपुर से फरमाइश भेजी थी जॉन डिकेस्ट्रो और इनके पूरे परिवार ने। बक्सर से राज अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और पुराना तालाब डुमराव से वरियोला अंसारी, इनके पूरे परिवार ने हमें ये SMS भेजा था। दादरी गेट भिवानी से भी SMS आया था कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा और परिवार, इनके पूरे परिवार का।
1: और देखिए ये फरमाइश हमारे पास में आई थी संबलपुर काकेर से भेजने वाले थे भाई फागुराम यादव और इनका पूरा परिवार। पता जो है भेजा है हमें पलारी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले थे नीतीश कुमार देवांगन और उनका पूरा परिवार। और ये SMS हमारे पास में आए थे पायल बहन साहू नगर यवतमाल से भेजने वाले थे राहुल मनवर और उनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला था पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से भेजने वाले थे अनिल मोहन और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई थी दतरेंगी भटापारा से भेजने वाले थे हीरामणि वर्मा और उनका पूरा परिवार। और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए।

0: कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 571 अंक लुढ़ककर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। उधर स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 65 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार। नीलम बहन हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम किसान वाणी लेकर के। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनकी जो कृषि में लागत है वो कम आए और उनको फायदा ज्यादा हो, साथ ही साथ जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में वो जानें, उनका वो लाभ लें और जो जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचती हैं तो उनका उपयोग वो अपनी कृषि में करें ताकि उनकी जो कृषि है वो उन्नत हो, खर्चा कम हो, लाभ ज्यादा हो।
4: बिल्कुल शशि भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं खाद्य तेल भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है और तिलहन लाखों किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऊर्जा विटामिनों का एक प्रमुख स्रोत होते हैं जो विशेष रूप से वंचित और कुपोषित आबादी की छिपी हुई भूख से लड़ने और कैलोरी में सुधार करने में मदद करते हैं।
3: तिलहन न केवल पोषण सुरक्षा में बल्कि आप किसानों के कल्याण में भी योगदान देकर एक महत्वपूर्ण नगदी फसल के रूप में कार्य करते हैं जो ग्रामीण आय और रोजगार को बनाए रखते हैं।
4: और इस दोहरे महत्व के बावजूद देश में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग ने घरेलू उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है और भारत में खाद्य तेलों के प्रति व्यक्ति घरेलू खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3: खाद्य तेलों की बढ़ती घरेलू मांग और आयात के कारण राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी कि पाम ऑयल मिशन को 2021 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और कच्चे पाम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन और तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना है।
4: बिल्कुल, और साथ ही इस मिशन का उद्देश्य पाम ऑयल से किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचाना है, पूंजी निवेश बढ़ाना और रोजगार सृजन करना, आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
3: बिल्कुल, तो नीलम बहन ये तो हमारे किसान बहन भाइयों ने जाना पाम ऑयल मिशन के बारे में। अब हमारे वो किसान बहन भाई जिनका जो क्षेत्र है वो शुष्क है यानी कि वहाँ पर पानी की कमी है और तापमान है वो ज़्यादा है, लेकिन वो बागवानी करना चाहते हैं, फल सब्जियाँ उगाना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करें, कौन सी किस्मों का इस्तेमाल करें और भी बहुत सी बातें हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक जानकारी जिसका विषय है शुष्क क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाएं। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वाई आर मीणा, पूर्व अतिरिक्त आयुक्त प्रसार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली, और इनसे बात कर रही हैं प्रतिमा शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
5: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। किसान भाई बहनों, खेती के लिए पानी और अनुकूल जलवायु बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां वर्षा कम हो और सिंचाई के साधन सीमित हो वहाँ भी संभावनाओं की कमी नहीं है। जरूरत है ऐसी फसलों और तकनीकों को अपनाने की जो कम पानी में भी बेहतर उत्पादन दे सकें। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे शुष्क क्षेत्र में बागवानी की संभावनाएं। हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर वाई आर मीणा, पूर्व अपर आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
6: जी नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही

0: पूछूंगी कि शुष्क क्षेत्र क्या होते हैं, इससे क्या आशय है?
1: शुष्क क्षेत्र जैसे अपने राजस्थान है, गुजरात का कुछ भाग है और महाराष्ट्र में, मतलब जहाँ पर बरसात कम होती हो और जो एक गर्मी का मौसम है इसमें काफी तेज गर्मी पड़ती हो और वहाँ पर विकट परिस्थितियाँ होती हैं और उनमें हर कोई फलदार पौधा या सब्जी हम उगा नहीं सकते, तो उसके लिए विशेषकर जो सूखे को, गर्मी को, तेज हवा को, हीट होती है उसको सहन करने वाली फसलें, फलों की हों, सब्जियों की हों, वहाँ पर उगा सकते हैं। और विशेषकर हमारे कुछ अनुसंधान संस्थान ये हालातों को ध्यान में रखते हुए, यानी एरिड जोन उसको ध्यान में रखते हुए संस्थानों की स्थापना की है। उन्होंने कार्य किया कि इन क्षेत्रों में फलों की, सब्जियों की क्या क्या किस्में उगाई जा सकती हैं, किस तरीके से उगाई जा सकती हैं। एक होता है इरिगेटेड, जहाँ पर बढ़िया सिंचाई की भी व्यवस्था है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर अलग हालात होते हैं, बिना ज्यादा मेहनत के, मशक्कत के आप चीजें 12 महीने कुछ ना कुछ पैदा कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ऐसे कौन सी राज्य हैं या कौन से क्षेत्र हैं जहाँ इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमारे किसान भाई बहनों को?
1: विशेषकर जैसे राजस्थान का काफी बड़ा भूभाग है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, हरियाणा का भी काफी बड़ा भाग है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा भाग है और कर्नाटक स्टेट में भी बहुत सारा वो है, तो करीब करीब सभी राज्यों का कुछ ना कुछ एरिया इस तरीके की परिस्थितियों में आता है। और वहाँ के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है वो एक ही जैसी टेक्नोलॉजी काम आ जाती है, लेकिन विशेषकर राजस्थान में बहुत एरिया है तो उसमें कोई भी पौधा आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको विशेष गुण होने चाहिए कि वो उन परिस्थितियों में अच्छा कर सके। प्राकृतिक रूप से कई ऐसे पौधे हैं, जैसे खेजड़ी, आपने नाम सुना होगा, खेजड़ी कल्प वृक्ष माना जाता है शुष्क क्षेत्रों में। प्राकृतिक रूप से बिना कोई पौधे बाग लगाए वो खेतों में किसानों के यहाँ उगता रहा है, उस पर भी कई संस्थानों ने काम किया है काफी, खासकर CIAH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है बीकानेर में, और दूसरा एक बड़ा संस्थान है जो इन फसलों पर काम करता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, वो सभी फसलों पर काम करता है, मतलब अपनी धान वाली फसलें जो हैं, ग्रेन वाली, बाजरा, ज्वार, मक्का, मोटे अनाज, उन पर भी काम करता है और फलों का भी वहाँ पर एक डिवीजन है। लेकिन बीकानेर में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है वो सिर्फ शुष्क क्षेत्रों में फल सब्जियाँ कैसे उगा सकते हैं, उनकी किस्मों का कैसे विकास कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो शुष्क क्षेत्रों में फल सब्जियां उगाई जाती हैं उन पर बहुत ज्यादा अनुसंधान नहीं हुआ पहले, लेकिन ये संस्थानों ने काफी काम किया, ढेर सारी किस्में निकाली जो वहाँ पर सफलतापूर्वक पहले अपने फार्म पर उगाते हैं, कृषि वैज्ञानिक किसानों के फार्म पर भी जाके ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसानों की भागीदारी होती है।
0: तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तो डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम बात करें कि कम वर्षा और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बागवानी को किस तरह एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है?
1: शुष्क बागवानी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान जाएगा कौन से पौधे वहाँ चल सकते हैं। अब उनमें प्रमुख जो पौधे हैं जैसे बेर, अनार, आंवला, करौंदा, एक और लसोड़ा आता है, गोदा बोलते हैं जिसको, जिसका अचार बनता है, ये हैं। केर प्राकृतिक रूप से होता है, इसके अलावा खजूर की खेती आपने सुना होगा बीकानेर और जैसलमेर साइड में, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो फैजाबाद में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी इन फसलों पर काफी काम हुआ है, वहाँ की ढेर सारी किस्में आंवले की भी हैं, इसकी बेल पत्र की भी हैं, अनार भी बहुत अच्छा है, अनार की जो क्वालिटी हमारे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इधर बागान लगाते हैं उसमें आती है, तो उसके लिए रात का जो टेम्परेचर तो चाहिए डाउन, और दिन में खूब लू चलती हो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फल का जो कलर है वो एकदम लाल आता है, दूर से ही देख के बंदा आकर्षित हो जाएगा और बहुत अच्छे जूसी फल। गुजरात में जैसे कच्छ वुद जो एरिया है वो भी ये सब एरिड जोन का ही एक पार्ट है, वहाँ पर भी खजूर की खेती भी होती है और दूसरे अनार, आंवला ये सब भी उगाते हैं लोग।
0: तो डॉक्टर साहब, पौधों का चयन करते समय किसान को मिट्टी और स्थानीय जलवायु की किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
1: पौधों का चयन करते समय किसानों को सबसे पहले तो किस्मों का, क्योंकि किस्म अगर एक बार गलत लगा दी, मान लो उस क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई नहीं है, तो फिर उसमें आप बाद में कुछ भी करते रहो, ज्यादा सुधार नहीं होता। जहाँ पर भी हम बागान लगा रहे हैं बेहतर हो उसी के आसपास के जो संस्थान है उस राज्य में, या उन्हीं फसलों पर काम करने वाले जो संस्थान है उनसे किस्में ली जाएं। बाकायदा संस्थान प्रचार प्रसार करते हैं कि उनके द्वारा जो किस्में विकसित की गई हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, कितना उत्पादन देते हैं, कब उनको लगा सकते हैं, प्रशिक्षण भी किसानों को मुफ्त

0: में दिया जाता है। तो उन्नत किस्म के जो ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार होते हैं पौधे, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन यानी वानस्पतिक विधि से, बीज से अगर हम कोई पौधे तैयार करते हैं, फलदार पौधे तैयार हो जाएंगे, लेकिन पूरे हूबहू गुण नहीं आएंगे जिस फल का हम बीज लेंगे उसके।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या कोई प्रशिक्षण भी दिया जाता है हमारे जो किसान भाई हैं या युवा साथी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, प्रशिक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था पूरे देश में है, न सिर्फ शुष्क क्षेत्रों में, सभी देश में। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अभी तो लगभग 800 के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हैं देश भर में, और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लगभग 150 संस्थान है, वो सब प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। 80 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालय देश भर में खुले हुए हैं, और वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद में किसान के मन में कोई शंका नहीं रहती। प्लांटिंग मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण होता है जो बागवानी वाली फसलें हैं, ये संस्थान पूरी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा किसानों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराए जाएं वाजिब दामों पर।
1: अगर कोई किसान नए बाग लगा रहा है, क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भूमि की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए उन्हें, और किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है?
0: जो हमारा फसल हम लगाते हैं फलों की या बागान लगाते हैं, ये कोई एक साल का मुद्दा तो है नहीं।
1: नहीं, नहीं।
0: तो उनको पूरी प्लानिंग के साथ कृषि वैज्ञानिकों से जो प्रशिक्षण लेते हैं पहले से तय कर लें कौन से पौधे लगाने हैं, उसी हिसाब से खेत को तैयार करके उसमें पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, जिससे वो मशीन जो है फार्म मैकेनाइजेशन उनके माध्यम से दूसरा काम भी कर सकें। और पौधे से पौधे की रिक्वायरमेंट अलग अलग पौधों की अलग अलग होती है। जैसे मान लो आप अनार लगा रहे हैं तो अनार 5 मीटर पर लगा सकते हैं, 4 पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बेर को कम से कम 6 मीटर का दूरी रख लो, तो 5 से 8 मीटर के बीच में ज्यादातर इनकी दूरी होती है। आंवला लगाते हैं हम, वो भी काफी फैलते हैं और ऊपर भी ज्यादा बढ़ते हैं वो, तो उनमें भी 6 मीटर से 8 मीटर तक की दूरी किस्मों के आधार पर। और गर्मी के मौसम में जब ऑफ सीजन हो, खेत खाली हो, पूरा जुताई उताई करके पाटा लगा के उसमें गड्ढे खोद लें, वो कम से कम 2-2.5 फीट का गहरा और उतना ही चौड़ा गड्ढा खोद लें, थोड़ा तपने दें उसको धूप में, गर्मियों में तो गर्मी काफी तेज रहती है। उसके बाद में जो सड़ी हुई गोबर की खाद और ये थोड़ी सी तले में उसके चिकनी मिट्टी अगर तालाब की डालते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन रहता है, क्योंकि आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में जो मिट्टी है वो रेतीली होती है, बालू, तो बालू में आप पानी जब भी पौधे को देंगे लीचिंग से वो चला जाएगा। अगर उसके तले में जो गड्ढा है उसमें आपने चिकनी मिट्टी डाली तो वो काफी समय तक उस पौधे को उपलब्ध होगा, और ऊपर फिर मिट्टी जो हमने खोदी है उसको और उसमें खाद वगैरह मिला के उसको सड़ी हुई होनी चाहिए खाद, नहीं तो दीमक भी काफी कमाल करती है, दीमक शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा आती है।
1: तो डॉक्टर साहब, उस समय क्या कोई खाद के साथ हम दवा भी मिक्स कर सकते हैं?
0: लगाते हैं दीमक के लिए पाउडर भी कई आते हैं वो। अच्छा, भी इसके अलावा पौधा लगाने के बाद में जब रोप जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आती हैं। अब दूसरी कई दीमक की दवाइयां आ गई हैं, उसको घोल के 2-4 ml डाल दो पानी में और नजर रखें, कभी ये नहीं कि आप महीनों तक देखा ही नहीं और उसमें काफी सारे पौधे मर गए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सूखा और शुष्क या कम वर्षा वाले क्षेत्रों की, जब कम वर्षा की बात आती है तो सिंचाई की भी बात आती है, क्योंकि पौधा चाहे जहाँ भी हो पानी की जरूरत होती है। तो कौन सी ऐसी विधियां हैं जिससे हमें पानी देना है और कितना देना है, कब कब देना है?
0: खासकर जो सिंचाई की व्यवस्था है, किसान भाई कई तरह की तैयारी करते हैं उसके लिए। उसके लिए एक तो बारिश का जो पानी है उसको बड़ा सजो के रखते हैं इन क्षेत्रों में, लोग डिग्गी बोलते हैं कई जगह, या वाटर हार्वेस्टिंग के जो दूसरे तरीके हैं, खेत में जिधर ढलान है उस तरफ बना देते हैं गड्ढा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उसके हिसाब से वो पानी उनमें कलेक्ट हो जाए ना, उसको फिर बूंद बूंद सिंचाई विधि से काम में ले सकते हैं। उसके लिए भी अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है, प्रशिक्षण भी मिलता है, और बागवानी विभाग खुद ही ये सारी चीजें देता है। केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूट हैं वो प्रशिक्षण देते हैं, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करा देते हैं, विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी मिल जाती है इन कामों के लिए।
1: और डॉक्टर साहब, वर्षा का पानी जल संरक्षण करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे कदम उठाते हैं सरकार, तो उसके लिए भी किसान भाई बहन कुछ उपाय अपना सकते हैं?
0: बिल्कुल, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफी योजनाएं हैं, फार्म पॉन्ड बनाने के लिए, एनी कट बनाने के लिए, और ड्रिप वगैरह पे भी काफी अच्छी सब्सिडी है, और आप पॉली हाउस वगैरह भी लगाते हैं उनके लिए भी 70-80% तक भी सब्सिडी मिलती है किसानों को, प्रशिक्षण मिलता है। और अभी तो मैंने देखा कई छोटे किसान भी काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं जिन्होंने ये पॉली हाउस वगैरह लगाए। खीरा की खेती, वो हर दूसरे दिन आप तोड़ लो और आसपास के आप मार्केट में बेच सकते हैं, उससे अच्छी कमाई होती है कम जगह से, और विपरीत परिस्थितियों से भी वो निपट लेता है क्योंकि प्रोटेक्टेड होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, एक सवाल कि जैसे बागवानी लगा रहे हैं हमारे किसान,

0: नुकसान भाई। तो जो नीचे की जो जमीन है बहुत सारी खाली पड़ जाती है जब पौधे बड़े हो जाते हैं,
1: जी,
0: तो क्या उस जमीन में भी कुछ फसल उगा
1: कम
0: सकते
1: से
0: हैं?
1: कम पहले 3-4 साल तो काफी स्पेस होता है। अनार भी लगाते हैं तो 5-5 मीटर की दूरी पर
0: हाँ
1: लगा रहे हैं, कोई 6 मीटर की दूरी पर लग रहा है पौधा,
0: जी
1: उसमें लाइन के लाइन और पौधे से पौधे की दूरी बराबर रखते हैं। आराम से आपके कृषि के यंत्र जो भी हैं, ट्रैक्टर हैं, हल है, कुछ भी चलाना चाहें वो चला सकते हैं। तो उनमें एक तो सब्जियों की खेती कर सकते हैं, और जो शुष्क क्षेत्र हैं इनमें गर्मी के टाइम में जो रेनी सीजन होता है उसमें ये उगाते हैं मूंग, मोठ,
0: अच्छा, दाले
1: दलहनी
0: सब्जी
1: फसलें।
0: दल
1: तो इनसे क्या होता है, किसानों को अतिरिक्त उपज भी मिलती है, आय भी होती है, और उपजाऊ क्षमता उस जमीन की बढ़ती है। पौधों का भी रख रखाव ठीक रहता है, क्योंकि इससे फलों को या उन पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। पानी है किसान के पास अच्छा मीठा पानी, तो वो सब्जियों की खेती कर सकते हैं उसमें। और 4-5 साल में जब पौधे खूब बड़े हो जाएं तो उनका ही अच्छे से रख रखाव करें। क्यों, बेर जैसे बागान अगर हम लगा रहे हैं, हर गर्मी में उसमें प्रूनिंग करनी पड़ती है। प्रूनिंग बहुत जरूरी है अगर आप आलस करके। बेर में क्या होता है, जब टहनी मान लो कोई बड़ी हुई है उसका 70-75% भाग काट देंगे तो वहां से कई टहनियां निकलती हैं, और बेर में हमेशा नई जो टहनी निकलती है उसी पर फल लगते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, गर्मी में मई के महीने में प्रूनिंग, और शुरू के दिनों में जो भी फलदार पौधे लगाएं उनमें कटाई छटाई जो साइडों से निकलते हैं उनको हटाना होगा। कई बार वो नीचे रूट स्टॉक में से निकल जाता है जंगली, ध्यान नहीं दिया तो आपका ग्राफ्टेड मर जाएगा और वो जंगली पनप जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, जो आपने शब्द कहा ग्राफ्टेड या ग्राउटिंग जिसको कहते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण होता है?
1: ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि
0: जी
1: जो वानस्पतिक विधि से तैयार करते हैं हम पौधे, जिसमें बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, और जो भी पौधे सरकारी संस्थान प्रोवाइड करते हैं वो ग्राफ्टिंग विधि से। इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो आपको अच्छी गुणवत्ता जो हुबहू आ जाएगी जिस पौधे से भी आप ग्राफ्टिंग करेंगे, और दूसरा आपको फलत जल्दी मिलने लगेगी। एक बीज से कोई पौधा आप तैयार करेंगे वो मान लो 6-7 साल बाद फल देगा, आपका ग्राफ्टेड पौधा नेक्स्ट ईयर से ही उसमें फल मिलने लग जाएगा, भले उत्पादन कम हो। फलदार पौधों में हमेशा वेजिटेटिवली जो प्रोपोगेट करते हैं ग्राफ्टिंग बडिंग से, वही पौधे लें। क्षेत्र विशेष के लिए सिफारिश की गई किस्में लें, विश्वसनीय जगह से लें, चाहे बागवानी विभाग से लें या हमारे संस्थानों से लें।
0: डॉक्टर साहब, आपने जैसे राजस्थान की बात की, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, लू भी
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: चढ़ती
1: जी
0: है, तो ऐसे सूखे क्षेत्रों में अपनी बागवानी या पेड़ पौधों को बचाने के लिए या कीट और बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए?
1: जैसे एक तो पौधा हम नए नए लगाते हैं, बहुत जरूरी होता है,
0: हाँ जी,
1: सरकंडे के इसके वो लगा देते हैं, जिधर से हवा का ज्यादा मूवमेंट रहता है ना उसको पूरा प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिससे सीधे जो नई नई कोपल है पौधा बढ़ रहा है उस पर नहीं पड़े। तो ऐसे गर्मी में प्रोटेक्ट करते हैं, और लोकली जो चीज होती है उसके लिए कोई विशेष चीज नहीं लाते। और दूसरा पानी, गर्मी के टाइम में जब लू के थपेड़े चलते हैं नमी बनी रहे पौधे के उछाले में तो उससे उसको काफी प्रोटेक्शन मिलता है। और दीमक का विशेषकर गर्मी में ही उसका भी प्रकोप होता है, तो उस टाइम बीच में चेक करते रहें, दीमक की दवाई भी लगाते रहें। एक बार जड़ें अच्छे से जम जाती हैं पौधे की फिर तो वो भी लड़ने की क्षमता रखता है, कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है उनसे।
0: तो डॉक्टर साहब, अंत में जो किसान शुष्क क्षेत्र में बागवानी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या महत्वपूर्ण संदेश होगा?
1: मेरा यही संदेश होगा किसान भाई, क्योंकि हमारे शुष्क क्षेत्रों में ज्यादातर किसानों के पास जमीन भी खूब होती है, वो परंपरागत खेती से हटके मूंग, मोठ, बाजरी तो सीजन में बोते ही हैं, बाद में खाली पड़े रहते हैं खेत, तो कुछ ना कुछ भूभाग पर वो फलदार या सब्जियों की खेती करें और उन्नत किस्म के पौधे लगाएं। फलदार पौधों 20-30-25 साल तक चलते हैं, और बीच में शुरुआती दिनों में साग सब्जी दूसरी फसलें आप ले सकते हैं। प्रशिक्षण की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है, संस्थान कई सारे सरकार ने खोले हुए हैं शुष्क क्षेत्रों में, चाहे राजस्थान में हो, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह आसपास संस्थान हैं। और राज्यों के जो बागवानी विभाग हैं, ढेर सारी स्कीम बागवानी विभाग चलाते हैं, केंद्र सरकार की मदद से भी और अपने खर्चे पर भी, वो प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं, कृषि सहायता भी देते हैं।
0: जी,
1: एक और टोल फ्री
0: हाँ जी,
1: हेल्पलाइन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
0: हाँ
1: ने
0: जी,
1: खोल रखी है, टोल फ्री किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551। तो ये सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक साल के 365 दिन मुफ्त सेवा है किसानों के लिए। देश की 22 प्रमुख भाषाओं में ये सुविधा उपलब्ध है, जिस क्षेत्र से भी किसान करेंगे उनको उन्हीं की भाषा में हमारे फार्म टेली एडवाइजर वहां पर होते हैं, वो जवाब देंगे।
0: किसान भाई बहनों, शुष्क क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाएं विषय पर डॉक्टर वाईआर मीना आज उन्होंने हमें विस्तार से बताएं, और हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों से आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी आय में वृद्धि करेंगे और सूखे वाले क्षेत्रों में अच्छी बागवानी की संभावनाएं भी रखेंगे।

0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुष्क क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाएं। किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये बातचीत। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर YR मीणा और इनसे बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा।
2: और नीलम बहन अब अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: बहन भाइयों, आप पुष्पा गोसाई से सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को बताते हैं मौसम का हाल। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने की संभावना है
0: और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
1: और अब नीलम बहन, हमारे किसान बहन भाइयों को इंतजार होगा मौसम आधारित कृषि सलाह का, ताकि वो उसके अनुसार अपने कृषि कार्य अच्छे से संपन्न कर पाएं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के कृषि भौतिकी संभाग की वैज्ञानिकों के अनुसार

0: सार आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। बीजों को कवकनाशी कैप्टान या थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार करें। इसके बाद राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं।
1: और गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और राइजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायादार स्थान पर रख दें और अगले दिन आप बुआई कर सकते हैं।
0: इस समय किसान भाई गाजर की बुवाई मेड़ों पर कर सकते हैं। उन्नत किस्में पूसा रुधिरा, बीज दर 4 किलोग्राम प्रति एकड़। बुवाई से पहले बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें और खेत में देसी खाद पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।
1: और सरसों की अगेती बुवाई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28 और पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक आदि के बीज की व्यवस्था करें, खेतों की तैयारी करें। और किसान बहन भाइयों, इस समय मिर्च और टमाटर के खेतों में विषाणु रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर जमीन में गाड़ दें।
0: और इसके अलावा किसान बहन भाइयों, इस मौसम में कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होता है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही मौसम आधारित कृषि सलाह की। और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को बताते हैं आज़ादपुर मंडी का फल सब्जी का भाव। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सब्जी का भाव।
1: आलू बिका 12 रुपये प्रति किलोग्राम और प्याज बिका 34 रुपये प्रति किलोग्राम, टमाटर बिका 24 रुपये प्रति किलोग्राम और बैंगन बिका 20 रुपये प्रति किलोग्राम, खीरा बिका 25 रुपये प्रति किलोग्राम, भिंडी 20 रुपये प्रति किलोग्राम और गोभी बिकी 40 रुपये प्रति किलोग्राम।
0: और अब बात करें फलों के भाव की, तो केला बिका 19 रुपये प्रति किलोग्राम, सेब 80 रुपये प्रति किलोग्राम, अमरूद 60 रुपये प्रति किलोग्राम, पपीता 30 रुपये प्रति किलोग्राम और तरबूज 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने जाना फल सब्जी का थोक भाव। और अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आपको आज का किसान वाणी कार्यक्रम कैसा लगा। इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। आप सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:35 हो चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम गजल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गजल में, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे

0: अभी आप सुन रहे थे गजल का कार्यक्रम, मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है, अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। नागरिकों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था मजबूत करने को 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राजधानी सहित देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया और दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा, गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कल राजघाट और विजय घाट पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हुआ ये अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यमुना के प्रति नागरिक जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और लोगों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी एक साथ यमुना की स्वच्छता और संरक्षण का संकल्प लेकर इस जन अभियान का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी नाले का पानी बिना सफाई के यमुना नदी में नहीं गिरेगा।
2: सरकार अपना काम कर रही है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम है, नालों को टैप करने का काम है, नए सीवेज प्लांट खड़े करने का काम है, डिसिल्टिंग करने का काम है, सीवर लाइन जोड़ने का काम है, ताकि एक भी ड्रेन या एक भी नाला यमुना में बिना ट्रीट किए ना गिरे। ये सरकार का काम है और सरकार कर रही है। तो हम सब मिलकर के जब यमुना के प्रहरी बनेंगे तो निश्चित रूप में माँ यमुना साफ होना शुरू होगी।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि नमामि गंगे जैसे अभियानों का उद्देश्य देश की नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद यमुना की स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए व्यापक कार्य योजना पर काम शुरू किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट।
3: बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी है।

0: जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। ये परियोजना 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। इसमें स्मार्ट मीटर और पानी की निगरानी के लिए सेंसर लगाए जाएंगे। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी कुल क्षमता 328 MGD होगी। इस परियोजना पर 7373 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा वजीराबाद जल आपूर्ति परियोजना और 25 वाटर इमरजेंसी सेंटर के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। निर्धारित शर्तों के तहत अलग अलग पानी के कनेक्शन देने को भी मंजूरी दी गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: केंद्र ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में दीर्घकालिक योजना और बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से उसके प्रमुख विभागों के लिए 5 साल की पूंजीगत निवेश योजना प्रस्तुत करने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने हाल में दिल्ली सरकार के विभागों से 5 साल के लिए पूंजीगत व्यय और निवेश का ब्यौरा देने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेट्रो रेल निगम के आईटी पार्क में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। ये अत्याधुनिक केंद्र दिल्ली में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की रियल टाइम निगरानी, AI आधारित विश्लेषण, शिकायतों और फील्ड निरीक्षण से जुड़ी जानकारी तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करेगा।
3: इस केंद्र का उद्देश्य केवल प्रदूषण संबंधी आंकड़े एकत्र करना नहीं बल्कि तकनीक से प्राप्त जानकारी को जल्द से जल्द परिणामों में बदलना है। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर से प्राप्त रियल टाइम जानकारी को फील्ड स्तर की कार्रवाई से सीधा जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तकनीक, डेटा और फील्ड प्रवर्तन को एक साथ जोड़कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस केंद्र के माध्यम से प्रदूषण हॉटस्पॉट, नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान तेजी से की जा सकेगी और संबंधित विभागों तक इसकी जानकारी पहुंचाकर मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
4: इस छोटे समय में इतना शानदार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहां बना है। 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन साइटों को भी यहां से मॉनिटर किया जाएगा, जो AI ड्रिवन कैमरास के माध्यम से यहां देखी जा रही है। यहां हमारा मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए जो मशीनरी है उसको भी यहां से GPS के माध्यम से मॉनिटर हो सकती है।
3: इस वर्ष सर्दियों के दौरान 78 सब डिवीजन स्तर की टीमें इस केंद्र के माध्यम से निगरानी करेंगी। इसके अलावा वायुदूत टीमों के माध्यम से प्रदूषण सरकारी गतिविधियां की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इससे सफाई और प्रदूषण नियंत्रण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई को और मजबूत किया जा सकेगा। ऋषु और निशा के साथ सौम्या शरण, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत आज देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों में स्वच्छता और कचरा निपटान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी अभियान में भाग ले रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजधानी के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
5: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई की प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
1: इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कमला नेहरू रिज और दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और दिल्लीवासियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया तथा स्वच्छ तथा सुंदर दिल्ली के निर्माण में जनभागीदारी का संदेश दिया। वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने तुकमीरपुर स्थित पुष्पांजलि स्कूल में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जिम्मेदारी और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं।
6: आज पूरी दिल्ली में लगभग 300 जगह पर इस प्रकार का

0: सफाई अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका नेतृत्व कर रही हैं। सभी मंत्रीगण, विधायकगण, निगम पार्षदगण अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। स्वच्छ दिल्ली का एक लक्ष्य है जिसके लिए काम किया जा रहा है।
1: दिल्ली के मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज रामलीला के आगामी आयोजनों की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं पर दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में आयोजन स्थलों, आवश्यक सुविधाओं और तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2026 आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मनाया गया। इस अवसर पर नियमित, स्वैच्छिक और बिना किसी पारिश्रमिक के रक्तदान की संस्कृति को मजबूत करने पर बल दिया गया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास ने आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर कल राजघाट और विजयघाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ये व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान रिंग रोड पर राजघाट से सलीमगढ़ वाई पॉइंट और कश्मीरी गेट बस अड्डे की ओर निषाद राजमार्ग, राजाराम कोहली मार्ग, BS-Z मार्ग पर ITO चौक से दिल्ली गेट, शांतिवन चौक से IP फ्लाईओवर, आसिफ अली रोड, गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट DTC डिपो से रिंग रोड बाईपास तक यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। दिल्ली परिवहन निगम ने बताया है कि गांधी जयंती के अवसर पर कल राजधानी में पिंक सहेली स्मार्ट NCMC कार्ड वितरण केंद्र बंद रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सिख समुदाय को गुरु अंगद देव के गुरु गद्दी दिवस पर शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरु अंगद देव की शिक्षाएं सभी को विनम्रता, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में UPSC शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। नागरिकों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था मजबूत करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राजधानी सहित देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दादी कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत मालिका, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। आइए सुनते हैं मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। जी हाँ, और कार्यक्रम चूंकि गीत मालिका है,

और फिर जब उस दौर की बात करें तो वो खूबसूरती और प्यार मोहब्बत से भरे गीत, उनमें से ज़्यादातर गीत तारीफ़ों वाली होती थी, और तारीफ़ सुनना किसी नहीं भाता। वो ज़माना ही कुछ ऐसा था, कुछ ख़ास था। जिस वक्त वो दौर चल गया जब गीतों में मोहब्बत, तारीफ और उसका लहजा, उसकी धुन एक से बढ़कर एक हुआ करते थे। और जब तारीफ की बात चल रही है तो तारीफ सुनना कहते हैं ना सबको भाता है, तो उस वक्त जब ऐसे गीत आए वो सारे गीत हिट हुए थे। उनमें से एक गीत ये भी है, लेकिन उसके लिए दो शब्द ये जरूर कहेंगे कि तुम्हारी सादगी भी कयामत धाती है, ये खूबसूरती दिल को चुरा ले जाती है। तारीफ करूं क्या मैं तुम्हारे लिए, हर वक्त ये नजर तुम्हें ही देखती रहना चाहती है।

जी हाँ, ये वो दौर जिस वक्त के सारे गीत हिट होते थे, और तो और उस वक्त रोमांटिक जो गीत हैं उनका सिलसिला कुछ ज़्यादा ही चला था, और उन गीतों को भूलना आज भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो सारे गीत जो है वो सुपर डुपर हिट रहे थे।

सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ, और गीत 90s के, जहां पर तारीफ तो बहुत ज्यादा है और तारीफ सुनना तो हमें भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन जब तारीफ की बात होती है तब कहते हैं ना कि इंसान खुद सामने से तारीफ करता है और हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप तारीफ सुनने के लिए बेकल रहते हैं यानी बेताब हो जाते हैं और आप खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी तारीफ तो करो। और जब इन्हीं बातों को लेकर गानों में उतारा जाए तो वो गीत कैसा बनेगा, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं में से एक गीत, 90s के ही है, आपको मजा आएगा, जरूर सुनिए।

तारीफ़ वही करते हैं और उसकी ही करते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करने वालों की तारीफ़ तभी होती है जब दिल और नज़र दोनों ही उसका हो जाता है। जी हाँ, वो नज़र तो सिर्फ वही चाहता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको ही देखते रहें। और यकीन मानिए, जब ये पहली नज़र का मोहब्बत होता है, वहाँ पर मोहब्बत कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि ये आँखें मिली और कोई दिल में उतर गया। जी हाँ, और तब जो तारीफ होती है वो दिल से होती है।

ये वही तो मोहब्बत है जो पहली नज़र का होता है। कहते हैं ना, मोहब्बत में जुबा से ज़्यादा नज़रें काम करती है। जब से हमने तुमको एक नज़र देखा है, दिल जिगर पर अजीब सा असर देखा है। आँखों ही आँखों में चुरा लिया दिल मेरा, लगा जैसे जिंदगी का हर लम्हा थम गया है।

और जब चाहत की बात होती है तो बात आती है कि ये चाहत तो नज़रों का ही खेल है। जी हाँ, नज़रों से जब मोहब्बत हुआ तो फिर चाहत अपने आप बढ़ गया। और अगर फिर क्या, जब नज़रों से ही मोहब्बत हुआ और चेहरा ढका हो, घूंघट की आड़ में हो, तब क्या होता है। किसी ने बहुत ही खूब कहा है, घूंघट की ओट से जब तेरा दीदार हुआ, बिना बात के ही हमें तुमसे प्यार हुआ। ये पर्दा भी तो तेरी खूबसूरती छुपा न सका, हर नज़र में बस तुझ पर एतबार हुआ।

कहते हैं कि तारीफ आप चाहे लाख कर लें, लेकिन अगर आपने तारीफ में अपनी महबूबा की तुलना चांद से नहीं किया, तो फिर क्या बात, तब तो फिर तारीफ अधूरा ही माना जाता है। जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि गीतों में तुलना होती है तो चांद से, और फिर जब गीतों में इन शब्दों को डाला जाए तो गीत खूबसूरत तो होना ही है। 90s के गीत सुन रहे हैं और कार्यक्रम है गीत मालिका। मैं हूँ पूजा भारती। गीत मालिका फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत चांद से तुलना कर ही दी गई है। आइए सुनते हैं उस गीत को।

जान से तुझको जो दे निस्बत सुबह इंसाफ है, चांद के मुंह पर है छाई, तेरा मुखरा तो साफ है। वाकई में तुलना अगर चांद से भी करते हैं तो चांद में भी तो दाग है। फिलहाल आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। जी हाँ, वक्त अब खत्म हो चुका है। मुझे पूजा भारती को दीजिए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गीत मालिका से अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: रात्रि के 8:45 होने को है। अब सुनिए हिंदी में समाचार, समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक

0: जीते भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में

0: बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
2: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
3: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और के परिवार के साथ खड़ा है।
2: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
6: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहाँ 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि

0: स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
1: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहाँ पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहाँ उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
2: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामी, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. Stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast-tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. U.S. sanctions 10 individuals and entities, including Pakistani businessmen, over Iran military procurement. And in Asian Games in Japan, India bags 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. Indian

0: Rivers in the state are flowing above the danger mark. More from our correspondent.
1: Chief Minister Samrat Chaudhary has sought the assistance of the Indian Air Force for relief and rescue operations in view of the seriousness of the situation. After inspecting the rising water level of the Ganga in Patna today, Mr. Chaudhary told reporters that the next 48 hours will be extremely crucial for Bihar. Amid the rising water level of the Gandak, breaches in embankments at several places have led to the rapid spread of flood water in low-lying areas. Saran, Gopalganj, East Champaran, West Champaran and Vaisali are among the worst affected districts. The rising water levels of the Bagmati and Kosi have also inundated several villages in Darbhanga, Samastipur, Supaul and Saharsa districts. Ashish Ranjan for Akashvani News, Patna.
0: India Meteorological Department or IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh tomorrow. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, entire Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand during next 48 hours. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over southern states, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and parts of northeast tomorrow. On to sports. At the Asian Games 2026 in Japan, India enjoyed another action-packed day today, with the men's hockey and cricket teams reaching their respective finals. Men's hockey team defeated their arch-rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. Greco-Roman wrestler Nitesh Sivaj today bagged silver medal in men's 97 kg at Asian Games in Japan. Nitesh lost to Japan's Yuri Nakazato 0-4 in the final. Indian pair of Manu Francis and Princess Kurisinkal Noble bagged the silver medal in the men's skiff opening race 9 of the Asian Games sailing competition. It is India's first sailing medal of the Asian Games. The team of Harshita Tomar and Sheetal Verma won the bronze medal in the women's skiff sailing event. Ganesh Mani Ratnam Tirumuru got bronze in the individual compound archery. India's medal tally has risen to 66, including 10 gold, 23 silver and 33 bronze medals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance, stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with chief ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast track for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities including Pakistani businessmen over Iran military procurement. And in Asian Games, India bags 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने महानदी के पानी की तकसीम से मुतालिक दरीना तनाजे के हल के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वज़ीरे आला के साथ मीटिंग की। हुकूमत ने दिव्यांग अफराद के फास्टैग से इस्तिस्ना की मुद्दत को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। बिहार में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। अमरीका ने ईरानी फौज के लिए खरीदारी की पादाश में पाकिस्तानी कारोबारियों समेत 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयत कर दी है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्ती रानी और ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबलों में चांदी के तारीखी तमगों समेत आज 6 तमगे जीते हैं। मर्दों की ये हॉकी और क्रिकेट टीमें भी फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाले इदारों को भी मुल्क के जरूरी असलाहत पर काम करना चाहिए। आज नई दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सदसाला तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर आजम ने ऐसे नौजवानों

0: को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों की नहीं बल्कि आवाम की खिदमत की ख्वाहिश रखते हैं।
1: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि इम्तिहान को सिर्फ एक अमल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह नौजवानों के मुस्तकबिल से वाबस्ता होता है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि महज कुछ महीनों की ताखीर नौजवानों के लिए मुश्किलात की वजह बन सकती है और इसीलिए इम्तिहानी निजाम को मुकर्रर वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने देरीना महानदी आबी तनाजे को हल करने के लिए आज नई दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत की। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वज़राए आला और दीगर सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। गांधी जयंती के मौके पर कल मुल्क भर में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा जहां कलीदी देही हुक्मरानी असलाहत पर बातचीत की जाएगी। बातचीत के दौरान पंचायतों को तकवीत देने, अवामी खिदमात को बेहतर बनाने और देही भारत में मजमुई मयार जिंदगी को बुलंद करने पर मरकूज बदलाव लाने वाली हुक्मरानी को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि इन खसूसी ग्राम सभाओं के जरिए अवाम की मनसूबाबंदी मुहिम 2026-27 सबकी योजना सबका विकास का भी आगाज होगा। इसके तहत ग्राम पंचायतें शमूलियाती और शवाहिद पर मबनी मनसूबाबंदी के जरिए माली साल 2027-28 के तरक्याती मनसूबे तैयार करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का अमन और अदम तशद्दुद का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे तनाजे और जंग की सूरत हाल के तनाजुर में मजीद अहमियत का हामिल हो गया है। गांधी जयंती के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया मुर्मू ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के हयात और नजरियात का आलमी बिरादरी में बहुत एहतराम किया जाता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की जानेब पेशरफ्त कर रहा है जिसमें हमदर्दी और शमूलियत को तरजीह दी जा रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी शहरी तरक्की के फवाइद से महरूम ना रह जाए। सदर जमहूरिया ने कहा कि नजरिया महात्मा गांधी के सर्वोदय के जज्बे की अक्कासी करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़े हादसे को टालने और बेशकीमती जिंदगियों को बचाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर कप्तान स्मिथ मच्छार की तारीफ की है। इसराइली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े हादसे को टालने पर कप्तान स्मिथ मच्छार को हीरो करार दिया। जनाब नेतन्याहू ने तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवास पर सवार 174 लोगों की जिंदगियां बचाने पर कप्तान स्मिथ मच्छार का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कप्तान स्मिथ को हीरो करार दिया है और कहा है कि भारत को उन पर फख्र है।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: वजीर आजम जनाब मोदी ने कप्तान स्मिथ के वालदेन और उनकी अहलिया से भी बात की। कॉकपिट हमले में 174 मुसाफिरों की जान बचाने के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जख्मी हुए फ्लाई दुबई के कप्तान स्मिथ मच्छार की जल्द सेहतयाबी और लंबी जिंदगी के लिए गुजरात के सभी अहम मजहबी मकामात पर खुसूसी दुआ की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुजरात के रहने वाले बहादुर कप्तान स्मिथ मच्छार की जल्द सेहतयाबी के लिए सोमनाथ और अंबाजी के पवित्र मंदिरों में वैदिक मंदिरों के साथ खसूसी पूजा जारी है। कप्तान के लिए मुल्क की दुआओं में शामिल होते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कप्तान मच्छार की गैर मामूली शुजात की तारीफ की और उनकी दिलेराना कोशिशों के एतराफ़ में उनके लिए बावकार विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड का ऐलान किया। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुबई तेल अवीव परवास जारी रखने और जिंदगियां बचाने पर फ्लाई दुबई के कप्तान स्मिथ मच्छार की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा हीरो करार दिया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में जनाब फडणवीस ने कहा कि मच्छार ने हाजिर

0: दिमागी और बहादुरी का सबूत देते हुए मुश्किल सूरत हाल को संभाला। जनाब फडणवीस ने उनकी जल्द सेहतियाबी और बेहतर सेहत की ख्वाहिश का इजहार किया। फ्लाई दुबई की परवाज FZ-1073 के कॉकपिट में मच्छार पर उनके को पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गए थे। ये परवाज कल दुबई से तेल अबीब जा रही थी। इसराइली वजीर आजम के तर्जुमान डेविड मेंसर ने कहा है कि फ्लाई दुबई तैयारे के अगवा की कोशिश अमरीका में हुए 9/11 हमलों से मुमासिल दिखाई देती है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहादुर भारतीय पायलट स्मित मच्छार कल ओमानी पायलट के हमले और तैयारे के निजाम को तबाह करने की कोशिश के बावजूद कॉकपिट कंट्रोल संभाले रहे। जनाब मेंसर ने कहा कि सऊदी हुकाम ओमानी पायलट से पूछताछ कर रहे हैं और उसे मुत्तहिदा अरब इमारात भेजा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वाकई की जांच और इसके बाद के मुमकिन हमलों से बचने को यकीनी बनाने के लिए इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ने दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों को 6 दिन के लिए बंद कर दिया है। ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने माजूर अफराद दिव्यांग जंग के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स की मियाद को मौजूदा 1 साल से बढ़ाकर माजूरी की नौयत के मुताबिक 5 साल तक कर दिया है। मरकज ने अहल दिव्यांग जन और मुस्तफिदीन के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स के जारी किए जाने और तजदीद से मुतालिक रहनुमा खतूत पर नजरसानी की है। ये रहनुमा खतूत कल से नाफिजुल अमल होंगे। पहले की हिदायत के मुताबिक दिव्यांग जंग के फास्टैग्स की तजदीद हर साल लाजमी थी। नई हिदायत के मुताबिक 70% से 100% माजूरी वाले अफराद को जारी करदा फास्टैग्स 5 साल तक कारामद रहेंगे, जबकि 40% से 70% तक माजूरी वाले अफराद का फास्टैग्स 4 साल तक काबिले अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नजरसानी शुदा जब्तों का मकसद कौमी शाहराहों के टोल वसूली के निजाम को अहल दिव्यांग जन और माजूर मुस्तफिदीन के लिए ज्यादा काबिले रसाई, शफाफ और सारिफ दोस्त बनाना है। इन हिदायत के मुताबिक जिस्मानी माजूरी वाले अफराद के इस्तेमाल के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई गाड़ियों और दिव्यांग जन की मिल्कियत के तौर पर रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स जारी किया जाएगा। इसकी मियाद माजूरी के तनासुब की बुनियाद पर तय होगी। जो माजूरी से मुतालिक सर्टिफिकेट, माजूरी का मुनफरद शनाख्त कार्ड UDID और दीगर मुतालिका दस्तावेजात में दर्ज होगा। ये जाब्ते इस बात को यकीनी बनाएंगे कि टोल टैक्स से इस्तिस्ना मुकर्रा कवायद और जाब्तों नीज अहलियत की शरायत के मुताबिक जारी रहे। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: बिहार मुसलसल सैलाब की सूरत हाल से दोचार है। रियासत की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: सैलाब की सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र वजीर आला सम्राट चौधरी ने राहत और बचाव की कार्रवाई में ताउन के लिए भारतीय फजाइया से मदद तलब की है। गंडक नदी की आबी सतह में इजाफा और कई मकामात पर पुश्तों में शिगाफ की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी भर गया है। सारण, गोपालगंज, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण और वैशाली अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। बागमती और कोसी नदियों के आबी सतह में इजाफे की वजह से दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव सैलाब के पानी की जद में आ गए हैं। पटना से आशीष रंजन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपने खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं फौजी जंगी यादगार और फौजी पुलिस यादगार जैसी इमारतों के क्याम के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: कौमी जंगी यादगार का क्याम जनवरी 2019 में हुआ था। इंडिया गेट के करीब तामीर की गई यह यादगारी इमारत मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले भारतीय मुसल्ला अफवाज के नौजवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए वक्फ है। मरकजी यादगारी इमारत के अलावा यहां उन 21 बहादुर फौजियों के मुजस्मों के लिए भी मखसूस मकाम है, जिन्हें फौजी खिदमात के लिए मुल्क के सबसे आला तरीन एजाज परमवीर चक्र से नवाजा गया है। इस मेमोरियल का डिजाइन फर्ज की अदायगी के दौरान फौजियों की कुर्बानी की अक्कासी करता है। 2019 में आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये मेमोरियल मुल्क के बहादुर फौजियों के जज्बे शुजात की अलामत है। प्रिया मंडल और भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: सरकार ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलर

0: اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے اہل طلبہ کو نیشنل اسکالرشپ پورٹل این ایس پی پر درخواست مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت ملے گا اور متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے بروقت تصدیق کرنے میں بھی سہولت حاصل ہوگی۔ امریکہ نے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج لاجسٹکس کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خریدنے میں مبینہ مدد کرنے کی پاداش میں کئی ممالک کے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دا میڈیا لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق پابندی عائد کیے گئے افراد میں ایک پاکستانی کاروباری سمیت اس سے منسلک 3 کمپنیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ کاروباری پاکستان میں قائم کیویلیئر گروپ کا چیئرمین ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ دفاعی کمپنی ہے جو پاکستان اور دیگر ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ یہ کاروباری کمپنی ایران کی وزارت دفاع کے لیے بچولیوں کے طور پر کام کر رہے تھے اور ہتھیاروں کے خرید اور تقسیم میں مدد کر رہی تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں قائم کیویلیئر ڈائنامکس فار ٹیکنالوجیز کے خلاف امریکی کارروائی سعودی حکام کے تعاون سے انجام دی گئی۔ امریکی وزیر خزانہ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ اقتصادی بائیکاٹ کی کارروائی کے تحت ایران کو مدد فراہم کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا۔ یہ مہم ایرانی حکومت کے اقتصادی نیٹورک کو کمزور کرنے کے لیے اگست میں شروع کی گئی تھی۔ اور جاپان میں جاری ایشین گیمز 2026 میں آج بھارت نے 2 چاندی اور 3 کانسے کے تمغوں سمیت 5 تمغے حاصل کیے۔ گریکو رومن پہلوان نتیش سیواچ نے مردوں کے 97 کلوگرام کے زمرے کے فائنل میں جاپان کے پہلوان یوری نکازاتو سے 0-4 سے ہارنے کے بعد چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے صبح میں بھارت کے کشتی رام منو فرانسس اور پرنس نوبل نے مردوں کے کشتی رام مقابلے میں پہلا چاندی کا تمغہ جیتا۔ تیراندازی کے مردوں کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے میں گنیش منی رتنم تھرومورو نے کانسے کا تمغہ جیتا، جبکہ اسکواش میں بھارتی مردوں اور خواتین کی ٹیموں نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں کی ہاکی میں بھارت اپنے روایتی حریف پاکستان کو 4-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے اور دوسری طرف خواتین کی ہاکی ٹیم پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ تمغوں کی فہرست میں بھارت 10 سونے، 23 چاندی اور 32 کانسے کے تمغوں سمیت کل 65 تمغے اپنے نام کر چکا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مہاندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق دیرینہ تنازع کے حل کے لیے چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی۔ حکومت نے دیویانگ افراد کے فاسٹیگ سے استثنا کی مدت کو 1 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا ہے۔ اور بہار میں کئی ندیوں کے خطرے کے نشان سے اوپر بہنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: यह आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: नशे का प्रकोप न केवल इसका सेवन करने वाले बल्कि उनके परिवारों, समाज और देश के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा है और वर्तमान सरकार ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस गंभीर विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज कंट्री वाइड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SPYM। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: थैंक यू।
2: डॉक्टर कुमार, गृहमंत्री अमित शाह ने कल पंजाब नशा मुक्ति यात्रा में भाग लिया और जलंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की और कहा उनकी पार्टी नशे की समस्या को पंजाब में पूरी तरह से खत्म करेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
4: जो पंजाब पूरे देश के लिए धान और गेहूं पकाता था, देश की सुरक्षा करता था, वहाँ पर मावा मांग दिया जवाब, माताएं ऐसी रैलियां निकालती। मैं अभी नशे की लत के कारण जिन्होंने जान गंवाई है, ऐसे परिवार को मिलकर आया हूँ। एक माँ अपने 2 युवा बेटों की तस्वीर गोद में कर कहती है इसको बंद कराओ, मेरे तो नहीं बचे, दूसरे के लाल को बचा लो। पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। सिर्फ पंजाब नहीं, देश भर के लोग मानते हैं कि पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए।
2: डॉक्टर कुमार, गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की, उसकी जो रिच हिस्ट्री है, और साथ ही ये भी कहा कि वहाँ पे जो नशे का प्रकोप है उसके बहुत गंभीर परिणाम है। कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को, पंजाब में जो नशा मुक्ति का जो एक मुहिम की बात कही जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ के ओवरऑल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए?
3: माननीय अमित शाह जी ने जो कल डिक्लेयर किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस देश में अगर हाईएस्ट लेवल पे लोग सीरियस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं, तो आई एम श्योर, मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत जल्दी इस पे एक्शन दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ पंजाब का। पंजाब, राजस्थान, ये दोनों ऐसे प्रदेश हैं इस देश के जहाँ ट्रेडिशनली लोग अफीम लेते थे, ओपियम यूज करते रहे हैं, और बहुत सारे आपको इसके ऊपर लिटरेचर मिलेगा, बहुत सारा इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 78-79 के बाद जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन वाले आए और ईरान में आयतुल्ला खोमेनी का रिवोल्यूशन हुआ, तो जो ड्रग पहले ये इन तीन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान में जो पैदा होता था, जो प्रोसेस होता था, वो यूरोप जाता था थ्रू यूगोस्लाविया, मगर चूंकि यहाँ इंटरवेंशन हो गया तो वो सारा का सारा ड्रग पंजाब के थ्रू रूट होने लगा। और वही समय था पंजाब का जब वो काफी डिस्टर्ब भी था, पंजाब में अगर आपको याद होगा आतंकवाद, तो आतंकवाद और ड्रग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार जो पहला स्टडी वो हमारी संस्था SPYM ने किया था 2002 में, फिर 2008 में, फिर 2015 में, फिर 2018 में भारत सरकार के लिए हमने किया था, तो इन सब में जो नंबर दिख रहा है वो नंबर बहुत भयावह है। और अगर अभी भी अगर कुछ बड़े पैमाने पे नहीं किया जाएगा तो वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन।
2: आप ब्रॉडली स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं कि कितना विस्तार है इस समस्या का?
3: देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जनरली पंजाब की आबादी लगभग 3 करोड़ है, और 3 करोड़ में 50% फीमेल पॉपुलेशन है, और उसमें भी जो मेल पॉपुलेशन है वो 0 से 15 वाले बहुत कम बच्चे नशा करते हैं, तो लगभग 60-70 लाख लोगों में अगर 12-13 लाख लोग चिट्टा, या जिसको आजकल हीरोइन को चिट्टा आजकल बोलते हैं, वो अगर इतना बड़ा है तो आप सोचिए हर छठा सातवां बच्चा, मेल बच्चा नशा कर रहा है, और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और जो पंजाब गवर्नमेंट का जो डेटा है, लगभग 47% जो लास्ट मेरे पास डेटा आया था, 47% लोग पंजाब के प्रिजंस में ड्रग यूजर्स या NDPS एक्ट में बंद हैं, और लगभग 12 लाख लोग अलग अलग पंजाब सरकार के जो प्रोग्राम है, ओट्स एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है पंजाब का, उसमें रजिस्टर्ड है, डी एडिक्शन सेंटर्स में रजिस्टर्ड है या प्राइवेट सेंटर्स में रजिस्टर्ड है। तो 12 लाख लोग एक बहुत बड़ा नंबर है, और पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान उतना बड़ा स्टेट नहीं है, ये तो छोटा स्टेट है, तो सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है।
2: जो लोग ऑलरेडी उसमें फंसे हुए हैं उनको सेंसिटिवली उनके साथ डील करना, और उनके ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो नेटवर्क है उसके बारे में आप हमें बता सकते?
3: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि लगभग 99% उससे ज्यादा बच्चे नशा नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम होना चाहिए हर स्कूल में। और देखिए, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन में बड़ा फर्क है, जैसे लोग जानते हैं कि टोबैको यूज से कैंसर होता है, या गुटखा या इस तरह के च्यूइंग टोबैकोज है वो खाने से उनको कैंसर होता है, मगर वो छोड़ते नहीं है, दे आर अवेयर, उनको जानकारी है, जागरूकता है। प्रिवेंशन के लिए 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो है लाइफ स्किल, जिसको हम लोग कहते हैं हुनर, जीवन कौशल, वो स्कूल में दिया जा सकता है कि ना कैसे कहें, अपने दोस्तों के दबाव से कैसे बचे, उन दोस्तों के बीच में न जाएं जो दोस्त ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर स्कूल में, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने और माननीय अमित शाह जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था नवचेतना, तो पंजाब के हर स्कूल में नवचेतना का प्रोग्राम होना चाहिए, ये लाइफ स्किल बेस्ड है। दूसरा, जिन बच्चों ने नशा लेना शुरू किया है उनको एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन, और ये चंडीगढ़ में बहुत सक्सेसफुली हुआ था, जिसमें लगभग 4000 बच्चों को, जो लोग नशा कर रहे थे, उनके पीयर ने उनको वापस स्कूल में दाखिला करवाया, और इन बच्चों को शायद डी एडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी ये उनकी डिपेंडेंसी बहुत छोटी है, बहुत कम समय का उनका यूज है, मगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तीसरी स्ट्रेटजी है, जो ट्रीटमेंट में आ रहे हैं उस ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ, और स्टिग्मा प्रिवेंट करता है लोगों को ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में जाने के लिए, ये प्रिवेंट करता है फैमिलीज को उन ट्रीटमेंट सेंटर्स में ले जाने के लिए, कि लोगों को पता

0: जाएगा तो क्या होगा। तो ये जब तक तीनों स्ट्रेटजीज नहीं आप लागू करेंगे स्टेट में, तब तक बहुत कुछ हम नहीं अचीव करेंगे।
1: सो डॉक्टर कुमार, नशा मुक्त भारत अभियान सरकार ने शुरू किया 2020 में, और उसमें इसी तरह का जैसे आप कह रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन, लोगों को इस बारे में अवेयर करना कि ये एक समस्या है जिस पे काबू पाया जा सकता है, और सब कम्युनिटी के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से, और इसमें ऑलरेडी 29.32 करोड़ सिटीजन्स को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा जोड़ा गया है। ये इस तरह के, या जैसे मानस जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें एक हेल्पलाइन है जिसमें आप कभी भी फोन कर सकते हैं 1933 और अपनी समस्या काउंसलिंग ले सकते हैं, इस तरह की जो पहल सरकार की है, या आपको लगता है कि इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत जरूरी है?
0: देखिए, ये सारे के सारे कार्यक्रम वातावरण निर्माण के लिए होता है। जैसे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम बात करते थे। अब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कहा मैं भी परेशान था या मैं भी परेशान थी, तो लोगों ने बात करना शुरू किया। वैसे ही अब जब नशे के ऊपर जब बात शुरू हो रही है तो ये वातावरण निर्माण हो रहा है, और उस वातावरण निर्माण में से प्राइम मिनिस्टर ने 2 अगस्त को एक नेशनल कॉल दिया था यंग लोगों के लिए, तो अलग अलग लोगों ने जो कॉल दिया, बट ये वातावरण का निर्माण हो रहा है, मगर इसमें कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है। इसमें वो स्टेप लेने की जरूरत है जो साइंस, मतलब विज्ञान और साक्ष्य के आधार पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो अच्छे ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उसमें ट्रेंड मैन पावर नहीं है, उसमें वो डॉक्टर्स नहीं है जो समझ सकते हैं कि अब नए प्रकार की दवाइयां बाजार में है उसको यूज किया जाए। तो इन तमाम चीजों पे भी ध्यान देना होगा अपार्ट फ्रॉम ये जो वातावरण निर्माण की जो आप बात कर
1: रहे
0: हो।
1: तो जो आप चुनौती बता रहे हैं कि ट्रेन्ड जो मैन पावर है उसकी जो संख्या है वो और भी बढ़ाई जानी चाहिए। इनफैक्ट इसके बारे में बात भी हुई है कि ये स्किलिंग जो है कि कैसे ट्रीटमेंट जो वहां पे जो केयर गिवर्स है वो कैसे उनको डील करें, तो इस डीलिंग में जैसे आपने विज्ञान की बात कही, विज्ञान के साथ साथ आपको लगता है कि एक सेंसिटिव अप्रोच भी बहुत जरूरी है?
0: समझिए, मैंने पहले जो स्टिग्मा वर्ड किया था वो यही है। दुनिया में एकमात्र बीमारी है जिस बीमारी के लिए व्यक्ति को जेल जाना होता है या मजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है, ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं जाना होता है। तो समाज और देश और सरकार को समझना होगा कि यह व्यक्ति जो नशे के गिरफ्त में है उसको इलाज की जरूरत है, अच्छे क्वालिटी इलाज की जरूरत है, उसको अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के जो प्रोफेशनल्स हैं उसके सपोर्ट की जरूरत है।
1: तो जैसा आपने कहा कि अभी जो दायरा है ऑलरेडी बहुत बड़ा है जो भारत के स्तर पे जो अभियान चल रहा है, लेकिन इसके विस्तार की और भी जरूरत है। आप हमें बता सकते हैं कि अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, या जो महिलाएं यूजुअली जो पूरे परिवार है उसको एक तरह से उसकी नर्चर करती हैं, ऐसे जो पेरिफेरल ग्रुप्स हैं या कम्युनिटी है उनको किस तरह से उनको इसमें शामिल किया जा सकता है इस मुहिम में?
0: देखिए, मैंने आपसे बताया स्कूल बेस्ड जो प्रोग्राम है और नवचेतना है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नवचेतना में एक चैप्टर है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। इसके अलावा दो बड़ा एक पॉपुलेशन है इस देश में, एक है फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसमें आशा है, आंगनवाड़ी है, ANM है, इनको ज्यादा नहीं 2-3 घंटे का एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि कहां पे ट्रीटमेंट सेंटर्स अवेलेबल है और कैसे पहचाने कि कोई अब इसके गिरफ्त में आ गया। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको, या पंचायती राज की जिम्मेवारी बनती है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसमें लेकर आए, क्योंकि जब तक ये तीनों बड़े जो मिनिस्ट्रीज हैं ये ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो हम लोग उस पॉपुलेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, अभी तो हम लोग सिर्फ शहर की बात कर रहे हैं, शहर में अभी कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं, अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही है तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन तीनों को आना पड़ेगा।
1: जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही व्यापक इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत है, तो नशा मुक्ति मित्रास का जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है जिसमें वॉलंटियर्स जाके समझाते हैं, वो भी आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे, जैसा आप कह रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं या रूरल एरियाज हैं वहां के लिए एक बहुत ही सुगम और प्रभावी एक तरीका है?
0: देखिए, अधिकतर ये जो मित्र बने हैं वो मित्र कहाँ से है, NSS से है, NYK जो MyGov आजकल उसका नया नाम हो गया है, NCC है, इन संस्थाओं के बच्चे बने हैं, क्योंकि ये बच्चे दूसरों बच्चों से थोड़े, मैं बेहतर नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, क्योंकि वो अगर वॉलंटियरिंग कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो लोग उनकी बात सुनते भी हैं। तो इस तरह के जो मित्र बने हैं उनका भी रोल बड़ा अच्छा है, बट उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, उनको बताने की, उनको एज ए पीयर एजुकेटर उनको ट्रेन करने की जरूरत है। अगर वो ट्रेन हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, हम और यंग पॉपुलेशन में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। एक और बात मैं कहता हूँ, जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल

0: प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत है, और वो भी उतना मुश्किल नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज को एंड कॉलेजेस को इनिशिएटिव लेना होगा, और उसके लिए भी भारत सरकार के पास प्रोग्राम है।
1: तो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो एक माइक्रो लेवल पे, उसमें बाकी लोगों की जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो जाती है। डॉक्टर कुमार, आपने शुरुआत में बात कही थी जो बाहर से बॉर्डर के पार से ड्रग्स आती हैं, अब चाहे वो टेररिज्म हो या चाहे वो ड्रग्स हो, ये बॉर्डरलेस कहें कि मेनेसेस हैं, ये सभी को प्रभावित करती हैं और सभी के लिए उतने ही हानि पहुंचती है, उनकी इकोनॉमी को, उनके पूरे जो पीढ़ी है उसको। तो क्या कहेंगे आप, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितनी जरूरी है इस समस्या से पार पाने के लिए?
0: देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बगैर तो आप कहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो सैंडविच है बिटवीन ये जो तीन कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। वहां पे जो कल्टीवेशन होता है उसका काफी बड़ा पोर्शन इंडिया आता है, या इंडिया के थ्रू वो बाहर भेजना चाहते हैं। दूसरा जो म्यांमार है, म्यांमार में अभी आपको पता है कि वहां पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो ड्रग अभी ओपियम पैदा हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, वो हमारे ईस्टर्न जो तीन स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, उससे आ रहा है। तो अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगा तो हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, अगर इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा तो हमें नहीं पता है कि कहां से ड्रग निकल कर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जो हमारे संबंध है उन एजेंसीज के साथ जो हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं, वो फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।
1: तो जैसा आप कह रहे हैं कि हर लेवल पर कोऑपरेशन की जरूरत है, अगर हम भारत की बात करें तो स्टेट लेवल पर जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सेज हैं उनको जो सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके साथ मिलकर काम करना है, सभी देशों को साथ मिलकर काम करना है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर प्रतिबद्धता हो तो कोई भी समस्या पार की जा सकती है। सो इस उम्मीद और आशा के साथ कि नशा मुक्त भारत एक जो सपना है वो साकार होगा, हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कुमार।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

0: ये आकाशवाणी है। प्रादेशिक लोक संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है बांग्ला संगीत के अंतर्गत नजरुल गीति। कलाकार हैं श्रीमती तुलीरेखा दत्तो। श्रीमती तुलीरेखा दत्तो 3 दशकों से भारतीय संगीत के प्रति समर्पित हैं। आप एक ख्याति प्राप्त गायिका हैं जिन्होंने नजरुल गीति, भजन, उपशास्त्रीय संगीत तथा शास्त्रीय संगीत जैसी विधाओं में अपना परचम लहराया है। आप अपनी भावात्मक कलाकारी और शास्त्रीय अनुशासन दोनों के लिए जानी जाती हैं। श्रीमती तुलीरेखा दत्तो के संगीत का सफर हमारी बहुमूल्य गुरु शिष्य परंपरा का परिचायक है। पंडित एटी कानन, उस्ताद मोहम्मद दिलशाद खान, पंडित दीनानाथ मिश्रा, पंडित बलराम पिल्लई, विदुषी शुभ्रा गुहो, श्रीमती मीरा बंदोपाध्याय, श्री सुकुमार मित्रा और विदुषी डालिया राहुत समेत देश के सुविख्यात संगीतज्ञों से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन की एक रीट की कलाकार श्रीमती तुलीरेखा दत्तो ने अपने श्रोताओं के समक्ष मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं। संगीत समारोह, मीडिया प्रसारण और व्याख्यानों के माध्यम से देश विदेश में आपने अनगिनत कार्यक्रम पेश किए हैं।
1: Tonight in the national program of regional light and folk music, we present light music in Bengali through the rendition of Nojrul Giti by Srimati Tulirekha Dutta.

0: इल्शाद खान, पंडित दीनानाथ मिश्रा, पंडित बलराम पिल्लाई, विदुषी शुभ्रा गुह, श्रीमती मीरा बंदोपाध्याय, श्री सुकुमार मित्र एंड विदुषी डालिया राहुत, एन ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, श्रीमती तुली रेखा दत्ता हैज इंथ्रॉल्ड हर ऑडियंस थ्रू कॉन्सर्ट्स, ब्रॉडकास्ट्स, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस एंड नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज।
1: आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप एक अति प्रचलित नजरुल गीते के साथ करेंगी, जिसके रचयिता स्वयं काजी नजरुल इस्लाम हैं। वो विद्रोही कवि जो आज भी हर बंगालवासी के हृदय का गौरव हैं। गीत के बोल हैं, महाविद्या आद्यशक्ति परमेश्वरी कालिका, जिसका अर्थ है सभी दैवी स्त्री ऊर्जाओं का एक परम मातृ शक्ति में समावेश है तथा संसार की समस्त सृष्टियां ज्ञान, शक्ति, प्रेम और मुक्ति उसी शाश्वत दिव्य माता से वाहित होती हैं।
0: श्रीमती तुली रेखा दत्ता बिगेन्स हर प्रेजेंटेशन टुनाइट विद अ वेरी पॉपुलर नजरुल गीति पेंड बाय नन अदर देन द रिवर्ड कवि नजरुल इस्लाम, the patriot poet who holds a place of pride in every Bengali's heart. The song goes as Mohabidya Adya Shakti, meaning the unity of all divine feminine manifestations in one supreme mother, affirming that all creations, knowledge, strength, compassion and liberation flows from the eternal divine mother.

0: नजरुल गीति के अपने गुलदस्ते से श्रीमती तुली रेखा दत्तो अब प्रस्तुत करेंगी गीत आधो आधो बोल लाजे बाधो बाधो बोल, जो कि अनकहे प्रेम की सुंदरता की बात करता है, जहां शब्दों से अधिक मौन की भाषा कह जाती है।
1: The next presentation from श्रीमती तुली रेखा दत्ता from her basket of नजरुल गीति is आधो आधो बोल, which celebrates beauty of unexpressed love, where silence often conveys more than words.

0: श्रीमती तुलीरेखा दत्त की अगली प्रस्तुति नजरुल गीति हेमंतिका एशो एशो हिमेल शीतल बनुतले। हमें प्रकृति की शांत मनोहारी और विपुल सुंदरता से मिलवाती है। कवि नजरुल इस्लाम इस गीत में प्रकृति को अंतर की शांति और आध्यात्मिक जागृति का स्रोत कहते हैं।
1: श्रीमती तुलीरेखा दत्ताज नेक्स्ट नजरुल गीति हेमंतिका एशो एशो which greets us with tranquility, abundance, and graceful beauty of the autumn season, and where Kobi Nojrul Islam presents nature as a source of inner peace and spiritual

0: नजरुल गीति की इस सुंदर प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती तुली रेखा दत्त अब प्रस्तुत करेंगी बोउ कथा कओ अभिमानिनी, जो कि प्रेम में आपसी बातचीत और मान मनोवल की बात करता है। इस गीत के माध्यम से कवि कहते हैं कि रिश्तों को संवारने के लिए अभिमान छोड़ आपसी समझबूझ और वार्तालाप की राह अपनानी चाहिए।
1: Continuing with her lovely rendition of Nozrul Giti, Srimati Tuli Rekha Datta now presents Bou Kotha Kao Obhimanini, a song that depicts the power of love, communication and reconciliation. It emphasizes that relationships flourish when pride gives way to understanding and heartfelt conversation.

0: श्रीमती तुलीरेखा दत्त नजरुल गीत के इस कार्यक्रम का समापन झूम झूम झूमरा के साथ करेंगी, जो संगीत, नृत्य और जीवन छंद के प्रति हमारे अनायास प्रेम का बखान करता है। ये गीत कहता है कि नृत्य हर्षोल्लास की एक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है, जो लोगों को प्रकृति और ईश्वर से जोड़ता है।
1: श्रीमती तुलीरेखा दत्ता कंक्लूड्स हर प्रेजेंटेशन ऑफ नजरुल गीति टुनाइट विद झूम झूम झूमरा नाचे के एलो, विच डिपिक्ट्स आवर स्पॉन्टेनियस लव फॉर म्यूजिक, डांस एंड द जॉयफुल रिदम ऑफ लाइफ। इट पोर्ट्रेज डांस एज अ यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस दैट यूनाइट्स पीपल विद नेचर एंड द डिवाइन।

0: अभी आप बंगाल से प्रेम की भेंट स्वरूप नजरुल गीति सुन रहे थे। कलाकार थी श्रीमती तुली रेखा दत्तो। इसी के साथ नजरुल गीति की यह प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है। कृपया अगली घोषणा हेतु हमारे साथ बनी रहें।
1: यू आर लिसनिंग टू अ बुके ऑफ नजरुल गीति कैरिंग लव फ्रॉम द लैंड ऑफ बंगाल एंड एज प्रेजेंटेड बाय श्रीमती तुली रेखा दत्ता। And with this, we end tonight's presentation of Nojrul Giti, which was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata. Please stand by for the next announcement.
2: ये आकाशवाणी है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिहार की समृद्ध लोक संगीत परंपरा की एक मनभावन प्रस्तुति। बिहार की लोक परंपरा में जीवन के सुख दुख, प्रेम और विरह, भक्ति, पारिवारिक संबंध तथा सामाजिक सरोकार, इन सभी भावों की सहज और आत्मीय अभिव्यक्ति लोकगीतों के माध्यम से होती रही है। आज की प्रस्तुति की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी। वंदना कुमारी आकाशवाणी की बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। उन्होंने लोक गीत गायन की शिक्षा भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना से प्राप्त की। वहीं उन्होंने अपने गुरु मनोरंजन ओझा से लोक गायन की बारीकियों के साथ साथ लोक परंपराओं की गहन जानकारी प्राप्त की।
3: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू आवर रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक। टुडे वी ब्रिंग यू द रिच एंड कलरफुल फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ बिहार, अ ट्रेडिशन दैट हैज लिव्ड थ्रू जेनरेशंस एंड कंटिन्यूज टू कनेक्ट पीपल विद देयर रूट्स। Bihar folk songs beautifully reflect the many shades of life, joy and sorrow, love and longing, devotion, family relationships and everyday social life. Our featured artist today is a well-known Bhojpuri folk singer, Vandana Kumari. Vandana Kumari is a B high grade artist of All India Radio. She received her training in folk singing at the Bharatiya Nritya Kala Mandir, Patna, where she learned the finer nuance of folk music and the traditions associated with it from her guru Manoranjan Ojha.
2: आज की प्रस्तुति की शुरुआत वंदना कुमारी कर रही हैं एक पारंपरिक देवी गीत से। देवी गीतों की बिहार की लोक परंपरा में अपनी विशिष्ट पहचान है। इसका एक लोकप्रिय रूप है पचरा, जिसमें देवी की महिमा, लोक विश्वास और भक्ति भावना का सुंदर समावेश दिखाई देता है। प्रस्तुत गीत में शीतला माता और मल्ला के बीच संवाद के माध्यम से भक्ति और लोक आस्था को अभिव्यक्ति दी गई है। तो आइए सुनते हैं वंदना कुमारी के स्वर में यह पारंपरिक देवी गीत, जिसके बोल हैं एही पार शीतला मैया।
3: आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ ट्रेडिशनल देवी गीत और अ डिवोशनल सॉन्ग डेडिकेटेड टू द गॉडेस। देवी गीत ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन बिहार्स फोक ट्रेडिशन। वन ऑफ इट्स पॉपुलर फॉर्म इज नोन एज पचरा, विच ब्रिंग्स टूगेदर डिवोशन, फोक बिलीव एंड द ग्लोरी ऑफ द गॉडेस। इन टूडेज सॉन्ग वी हियर अ डायलॉग बिटवीन शीत Mata and a boatman woven into a beautiful expression of faith and devotion. So let us listen to Vandana Kumari in this traditional Devi Geet titled Yehi Paar Sheetala Maiya.

0: शिव भजन, जिसके बोल हैं एहो शिव शंकर दानी। इस भजन में भक्त भगवान शिव से मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। भारतीय लोक और धार्मिक संगीत परंपरा में मंगल कामना का विशेष महत्व रहा है। ईश्वर का स्मरण और मंगल की प्रार्थना किसी शुभ अवसर पर प्रस्तुति के आरंभ का अभिन्न हिस्सा रही है।
1: एंड नाउ अ शिव भजन। द सॉन्ग इज टाइटल्ड एहो शिव शंकर दानी। इट इज अ प्रेयर टू लॉर्ड शिवा सीकिंग हिज ब्लेसिंग एंड विशिंग फॉर पीस एंड वेलबींग इन आवर फोक एंड डिवोशनल ट्रेडिशंस। रिमेम्बरिंग द डिवाइन एंड सीकिंग ब्लेसिंग्स हैज ऑलवेज बीन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑस्पिशियस ओकेजन। सो लेट अस लिसन।

0: अब अगली प्रस्तुति है झूमर। प्रस्तुत झूमर में नायिका अपने पति से विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मांग करती है। गीत में दाम्पत्य जीवन की आत्मीयता और सहज हास परिहास का सुंदर रंग दिखाई देता है। आइए सुनते हैं यह मनभावन झूमर, जिसके बोल हैं कुसुम रंग चुनरी।
1: Our next presentation is a lively jhumar. In this song, a woman playfully asks her husband for beautiful clothes and ornaments. It is a charming glimpse of married life, filling with affection, warmth and a touch of humor. Here is the jhumar titled Kusum Rang Chuneri.

0: अब प्रस्तुत होने वाले लोक भजन में भरत और कैकेयी के संवाद के माध्यम से भगवान श्री राम के वन गमन से जुड़ी परिस्थितियों का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इस संवाद में परिवार के भीतर उत्पन्न भावनाओं, पीड़ा और घटनाक्रम को लोक गायन की सहज शैली में अभिव्यक्त किया गया है। सुनते हैं यह लोक भजन जिसके बोल हैं राम कहां माई।
1: आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ फोक डिवोशनल सॉन्ग बेस्ड ऑन एन इमोशनल डायलॉग बिटवीन रिकॉलिंग द सर्कमस्टांसेस सरेंडिंग लॉर्ड रामा's exile through this simply yet powerful folk form. The song brings alive the emotions within the family, the pain, the conflict, and the sorrow of separation. Let us listen to this Lok Bhajan titled Ram Kahan Aayi.

0: बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाया जाने वाला छठी संस्कार परिवार के लिए खुशी और उल्लास का अवसर होता है। प्रस्तुत गीत में ननद और परिवार की अन्य महिलाएं बच्चे की माँ से विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्रों की मांग करती है। अब सुनते हैं ये छठी गीत जिसके बोल हैं छठिया पूजेला ननदी।
1: वन सच ट्रेडिशन इज द छठी सेरेमनी ऑब्जर्व्ड ऑन द सिक्स्थ डे आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इट इज अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन फॉर द entire family. In this song, the sister-in-law and the other women of the family playfully ask the new mother for a different kinds of clothes and ornaments. Now let us listen to this traditional chhathi geet titled Chhathiya Pujele Nandi.

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी का गायन। संगत कलाकारों में नाल पर अर्जुन कुमार चौधरी, हारमोनियम पर अभिषेक पाठक और बांसुरी पर मोहम्मद सलीम। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन आकाशवाणी पटना केंद्र में किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक फीचरिंग द रिनाउंड भोजपुरी फोक सिंगर वंदना कुमारी। द कॉम्पेनियन म्यूजिशियन अर्जुन कुमार चौधरी ऑन नाल, अभिषेक पाठक ऑन हारमोनियम एंड मोहम्मद सलीम ऑन फ्लूट। द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी पटना सेंटर।

0: बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के 723वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। उर्स के दूसरे दिन की तकरीबात का आंखों देखा हाल बराहे रास्त सुनवाने के लिए अब हम आपको बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन उर्स महल लिए चलते हैं। तो आइए उर्स महल चलें।
1: सब लाए थे मैशर में इबादत, मैं लाया था लिखा हुआ महबूब इलाही, मैं लाया था लिखा हुआ महबूब इलाही। अमाल में सब लाए थे मैशर में इबादत, मैं लाया था लिखा हुआ महबूब इलाही, मैं लाया था लिखा हुआ, मैं लाया था लिखा हुआ महबूब इलाही। अमाल में सब लाए थे मैशर में इबादत, मैं लाया था लिखा हुआ महबूब इलाही, मैं लाया था लिखा हुआ महबूब इलाही, मैं लाया था लिखा हुआ महबूब इलाही। बांटेगा इसके पंजतने पाक की दौलत, बांटेगा इसके पंजतने पाक की दौलत, जो आपका हो जाएगा महबूब इलाही, जो आपका हो जाएगा महबूब इलाही। बांटेगा इसके पंजतने पाक की दौलत, जो आपका हो जाएगा महबूब इलाही। जो हो गया है दिल से निजामी और नियाजी, जो हो गया है दिल से निजामी और नियाजी, हक उसको नजर आ गया महबूब इलाही, हक उसको नजर आ गया महबूब इलाही। करने लगी तवाफ मेरे दिल की धड़कने, करने लगी तवाफ मेरे दिल की धड़कने, जब तुम पे फिदा हो गया महबूब इलाही, जब तुम पे फिदा हो गया महबूब इलाही, जब तुम पे फिदा हो गया महबूब इलाही। मकता पेश है कि राजी है नियाजी भी फरीदी भी इसलिए, राजी है नियाजी भी फरीदी भी इसलिए, दामन को भर के जाएगा महबूब इलाही, दामन को भर के जाएगा महबूब इलाही, दामन को भर के जाएगा महबूब इलाही।
2: जनाब रजी मियां नियाजी से उनका मन

0: निजाम है। और ये बहुत ही प्यारा शेर दे रहा हूँ, तसव्वुफ का शेर है, समाअत फरमाएं। अहले नज़र से खुसूसी तवज्जो,
1: न क़ुऊद है न सुजूद है,

0: यहाँ मक्ते का शेर दे रहा हूँ। अफजल भाई ये शेर आप की जानिब से दे रहा हूँ, शेर समाप्त फरमा लीजिए।
1: मेरी शोहरतों की ना बात कर,

0: سبحان الله. بابا
1: يشهد سر.

0: बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ पूरी दुनिया ये,
1: लेकिन मुस्तकिल बातें बना रहा हूँ,
0: ये पूरी दुनिया सुन रही है महफिल, मुझ फकीर को भी इस महफिल में 45 साल हो गए हाजिरी का शरफ हासिल करते हुए, मेरी खुशनसीबी है कि आपके दरमियान हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह कह देंगे तो मेरी तबीयत भी खुश हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह मर्तबा हजरत निजामुद्दीन का, सुनो भाई मसूदी,
1: पेश करता हूँ मुलाहिज़ा फरमाएं,
0: आपका तकवा इबादत फाका मस्ती के सबब, समाप्त कीजिएगा।

0: भी आया, बहुत शुक्रिया,
1: जो भी आया
0: भोग, जो भी आया हो गया हजरत निजामुद्दीन का। समाज फरमाए हमारे ऑल इंडिया रेडियो के साथी इरफान भाई और इनके तमाम स्टाफ की नजर करता हूँ। ये शेर खास तौर पर तवज्जो फरीद मियाँ के चाहता हूँ।

0: का बहुत शुक्रिया।
1: डॉक्टर माजी देवबंदी निजामी अपना मुरस्सा मनकबती कलाम पेश कर रहे थे और आज के मुशायरे का मक्ता आखिरी शायर मैं जहमत कलाम दे रहा हूँ। डॉक्टर अफजल मंगलौरी साहब को इस शेर के साथ कि जिस बज्म में सागर हो ना सहबा हो ना खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज्म में तुम हो। डॉक्टर अफजल मंगलौरी साहब माइक पर।
0: शुक्रिया साहिब सज्जादा। है अली के लाडले हसनैन के जानी निजाम। अभी हजरत कासिम मियां साहब ने मनकबत सुनाई और ये फैज़े साबिर पाक है, फैज़े महबूब इलाही है, क्योंकि ये मनकबत हमेशा रहता है कि अभी एक मनकबत ताज़ा इसी बहर में हो गई है। और मैं इजाज़त हो, क्योंकि फैज़ान नियाजी तो सब जानते हैं कितने फनकार माज फैजियाब होते हैं, तो मुझे भी फैज़ मिलता है। अभी मनकबत कही है फरीद मियाँ साहब कबला, आपकी दुआएं चाहूँगा। सैयद अरफान निज़ामी साहब, तमाम ऑल इंडिया रेडियो के हमारे यहाँ पर कारकुनान बैठे हैं, सबको मुबारकबाद के अपने फिर तरनुम से एक मनकबत के शेर पेश करूँगा कि अपने कस्बे फैज से सरकार नूरानी निज़ाम। तुम्हारा अलग स्टेज से भी आनी चाहिए। आखिरी शायर के तौर पर हमारे बीच कलकत्ता से जीशान कबर साहब, देखिए स्पेशल इस उर्स में शिरकत के लिए आए हैं, जैनब साहिबा और एयर इंडिया की यहाँ और तमाम सज्जादगान बैठे हैं कि अपने कस्बे फैज से सरकार नूरानी निज़ाम कर रहे हैं अहले दिल्ली की निगहबानी निज़ाम। सुभानअल्लाह, वाह वाह, क्या कहना है। इसी तरह शुक्रिया बहुत बहुत, कर रहे हैं अहले दिल्ली की निगहबानी निज़ाम। इल्म में इरफान में, इरफान भाई इल्म में, इरफान में, इल्म में, इरफान में, विजदान में, फैजान में, इल्म में, इरफान में, इल्म में, इरफान में, विजदान में, फैजान में, हो नहीं सकता जहां में आपका सानी निजाम। हो नहीं सकता जहां में आपका सानी निजाम। और ये शेर चाहूंगा आपसे दुआएं, खासतौर से जाहिद मियां निजामी, रजी मियां साहब और कासिम मियां साहब की दुआएं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मकतब मैंने कहा है। वकील साहब सुनिएगा कि जमजमे उस शाख है, जमजमे उस शाख है। अरे आप कहाँ देख रहे हैं, मैं घर पर रहा हूँ। जमजमे उस शाख है हर दौर में आबे शिफा, जमजमे उस शाख है। इंशाल्लाह हर जो सामईन है वो सुभान अल्लाह कहेगा, आपके मतलब की बात है कि जमजमे उस शाख है हर दौर में आबे शिफा, हर दौर में आबे शिफा, आपकी इस बावड़ी का मुक्तदर पानी निजाम। आपकी इस बावड़ी का मुकदर पानी निजाम। ये फिलबती मनकबत हुई है, अल्लाह करम है, साबिर पाक का, महबूब पाक का सदका मिलता रहता है के, और फैज़े फैज़ बाबा का है बेशक आपके दरबार में। हुजूर सुनिएगा, फैज़ बाबा फरीद साहब का फैज़ कलियर शरीफ भी है, यहाँ भी है, और पूरे ये समझिए कि समझता हूँ पूरे बर्रे सगीर में है कि फैज़ बाबा का है बेशक आपके दरबार में। हश्र तक यूं ही रहेगी नूर अफशानी निजाम, हश्र तक यूं ही रहेगी नूर अफशानी निजाम। और ये मक्ता पेश कर रहा हूं क्योंकि कासिम मियां साहब की मनकबत सुन के ही मौलाना वकील साहब दाद दे रहे हैं, तबर्रुक दे रहे हैं। मैं खुलदाबाद से तशरीफ लाए हमारे सज्जाद नशीन।

0: भारत।
1: आमीन कहिएगा, जोर से कहिए आमीन। ये अपने मुल्क के अजीम की दुआ आज हो रही है, यहाँ सुबह भी कुल में भी हुई कि जय दुआए हर शत्रु से, कि जय दुआए हर दुश्मन से, बद नजरों से दूर रहे अपना भारत। यारा प्यारा या ख्वाजा महबूब इलाही, और प्रेम दया की आपने जिस पर, प्रेम दया की आपने जिस पर

0: अभी रंग और कॉल पेश कर रहे थे खास कव्वाल रफीक अहमद और आजम निजामी और दरगाह शरीफ की तमाम चौकियां। महफिल समा में अब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं सुल्तान नियाजी, उस्मान नियाजी और हमनवा। सुल्तान नियाजी और उस्मान नियाजी और उनके हमनवा कव्वाली पेश करेंगे।
1: अभी आप उर्स महल बस्ती हजरत निजामुद्दीन से सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के 723वें उर्स की तकरीबात का आंखों देखा हाल बराहे रास्त सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब 12 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं और सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर प्रसारण जारी है। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश विश्व के कई हिस्सों में व्याप्त युद्ध और संघर्ष के माहौल में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने देश में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों का वैश्विक समुदाय व्यापक रूप से सम्मान करता है। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के कई सुधार शुरू किए हैं। परिचालन दक्षता और कामकाज सुगमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी देते हुए नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि व्यापक बदलाव का उद्देश्य कामकाज डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उच्चतम सुरक्षा मानक के साथ उत्तरदायी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीआईबी इम्फाल के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, दूरदर्शन केंद्र आइजोल के निदेशक

से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 33 कांस्य पदकों सहित 66 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Ministry, Sibi George and Deputy Minister of Foreign Affairs of Bulgaria, Christo Polendakov, co-chaired the seventh round of India-Bulgaria Foreign Office consultations in New Delhi yesterday. The ministry said India and Bulgaria enjoy long-standing, warm and friendly relations marked by high-level exchanges in recent times. At the Asian Games 2026 in Japan, India enjoyed another action-packed day yesterday with the men's hockey and cricket teams reaching their respective finals. Now India's medal tally has risen to 66, including 10 gold, 23 silver and 33 bronze medals. Men's hockey team defeated their arch-rivals Pakistan 4-3 in the thrilling semi-final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. Greco-Roman wrestler Nitesh Sivach bagged silver medal in men's 97 kg at Asian Games in Japan. Nitesh lost to Japan's Yuri Nakazato 0-4 in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 12:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम शुरू का सफरनामा। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम शुरू का सफरनामा में। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरू का सफरनामा यानी कि सुर के साथ, सुर के ताल के साथ जो जुड़ा हो उन्हीं का सफ़रनामा, और किस तरीके से ये ताल उनसे जुड़ा इसी के बारे में बात करते हैं। और इस कार्यक्रम में जब हम बात करते हैं किसी के बारे में तो उनके जीवन, उनके जीवन से जुड़े उन अनछुए पहलुओं को लेकर आते हैं जिससे आप भी अनभिज्ञ हैं। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही हमारे सामने सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि पूरा एक संगीत का संसार खड़ा हो जाता है। एक ऐसा धुन जो कभी प्रेम बनकर दिल को छूती है, कभी देश की मिट्टी की खुशबू बनकर मन में उतरती है, और कभी सूफियाना रंग लेकर आत्मा को सुकून देती है, और कभी इतनी ऊर्जा से भर जाती है कि कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। तो आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक संगीतकार की है। नाम है AR रहमान। वही AR रहमान जिनके संगीत ने दक्षिण भारतीय सिनेमा से निकलकर हिंदी फिल्मों और फिर अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा तक अपनी अलग पहचान बनाई।

जी हाँ, तुम तक। संगीत, सिर्फ और सिर्फ संगीत, संगीत तक ही ए आर रहमान घूमते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा सफर होता है। रहमान का जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में हुआ। उनका बचपन का नाम दिलीप कुमार था और उनके पिता आर के शेखर दक्षिण भारतीय फिल्मों में संगीतकार और संगीत संयोजक के रूप में काम करते थे। इसीलिए बचपन से ही रहमान का रिश्ता संगीत से जुड़ गया था। ए आर रहमान का फिल्मों में आना किसी अचानक मिले मौके की कहानी नहीं है, या फिर कोई गॉड फादर उनके सर पे हाथ रख दे और कह दे कि तुमने यहाँ पर काम करना है। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि बचपन से शुरू हुए लंबे संगीत सफर का परिणाम था। जी हाँ, ए आर रहमान के बारे में और भी बात बहुत खास है। रहमान का सफर कैसा रहा, आसान रहा या मुश्किल से भरा रहा, जानेंगे। लेकिन उन्हीं के संगीत से सजा एक और गीत।

जी हाँ, रहमान के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि रहमान का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। जब रहमान लगभग 9 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया था। परिवार के सामने आर्थिक मुश्किलें भी आ गई। बहुत ही कम उम्र में रहमान ने संगीत के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। और कहते हैं ना, कीबोर्ड और पियानो से खेलने लग गए। जी हाँ, उसे बजाते थे और अलग-अलग संगीतकारों के साथ काम करते हुए अनुभव हासिल करते थे, लेकिन बहुत छोटे तौर पर। यही शुरुआती दौर था उनके लिए, संगीत की सबसे बड़ी पाठशाला बना। उन्होंने दक्षिण भारत की फिल्म संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा के साथ काम किया। इसके अलावा दूसरे संगीतकारों के साथ कीबोर्ड बजाते रहे। धीरे धीरे उन्हें स्टूडियो रिकॉर्डिंग, ऑर्केस्ट्रेशन और आधुनिक संगीत तकनीक की गहरी समझ होने लग गई थी। बाद में रहमान ने विज्ञापनों के लिए भी जिंगल्स बनाने शुरू कर दिए थे। छोटे छोटे विज्ञापनों के लिए कुछ सेकंड की धुन तैयार करना आसान काम नहीं था। उन्हें बहुत कम समय में ऐसी धुन बनानी होती थी जो लोगों के कानों को तुरंत बैठ जाए। कहते हैं ना कि धुन अगर बहुत कम समय का है तो कैसे कोई याद रख सकता है, तो धुन में ही तो कुछ अलग होना चाहिए। यही काम किया A.R. रहमान ने। उनकी छोटी धुन भी लोगों के कान खड़े हो जाते थे। ये धुन बहुत ही खूबसूरत है, ये समझ में आ जाता था। यही काम आगे चलकर उनके फिल्म संगीत के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। फिर आया वो मोड़ जिसने रहमान की जिंदगी बदल दी। जानेंगे लेकिन एक और गीत।

यार रहमान के बारे में बात कर रहे हैं तो बताएं आपको कि चेन्नई में रहमान अपने संगीत स्टूडियो में काम कर रहे थे। इसी के दौरान उनकी प्रतिभा पर निर्देशक मणि रत्नम की नज़र पड़ गई। मणि रत्नम अपने नई फिल्म रोजा के लिए एक नए तरह के संगीत की तलाश में थे। रहमान ने जो संगीत सुनाया वो मणि रत्नम को पसंद आ गया और इसी तरह रहमान को 1992 की फिल्म रोजा में संगीत देने का मौका मिला। ये उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन किसी को शायद ही अंदाज़ा था कि ये पहली फिल्म भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास बदलने वाली है। रोजा के संगीत को जब इन्होंने सजाया तब ये संगीत बेहद लोकप्रिय

और रहमान को इसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। यानी जिस कलाकार ने कभी कम उम्र में परिवार की मदद के लिए संगीत बजाना शुरू किया था, वहीं कुछ ही वर्षों बाद अपनी पहली ही फिल्म में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका था और यहीं से शुरू हुआ ए आर रहमान का फिल्मी सफ़र।

ए आर रहमान, जिसने भारतीय फिल्म संगीत में एक नए अध्याय की शुरुआत तो कर दी। ए आर रहमान ने शुरुआती जीवन की एक दिलचस्प बात कि उन्होंने बहुत कम उम्र में पेशेवर संगीत की दुनिया देखनी शुरू कर दी थी। कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, संगीतकार इलैया राजा के साथ उन्होंने काम किया। ए आर रहमान के काम ने रहमान को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दी, प्रयोग करने की आज़ादी। उनके द्वारा तैयार किए गए कुछ सेकंड की धुन भी सुनने वाले का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित करता था। रहमान ने चेन्नई में अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी स्थापित किया, और स्टूडियो उनके लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग की जगह नहीं थी, यह उनका प्रयोगशाला था, ऐसा संसार जहाँ वो संगीत के साथ प्रयोग करते थे, नई तकनीक, नए साउंड और अलग अलग संगीत पर काम करते थे। उनके संगीत में भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का इस्तेमाल भी सुनाई देता है। उस समय भारतीय फिल्म संगीत में यह दृष्टिकोण बिल्कुल सामान्य नहीं था।

ए आर रहमान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि 1998 में जब उनकी फिल्म दिल से आई, शाहरुख खान, मनीषा कोराला, गुलजार के गीत और ए आर रहमान का संगीत, इस फिल्म का सबसे यादगार गीत जो हम सब की जुबान पर है वो है छैया छैया। लेकिन इस गीत की लोकप्रियता के पीछे केवल संगीत ही नहीं था, इसका फिल्मांकन भी असाधारण था। शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा को चलती ट्रेन के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाया गया। आज के दर्शक डिजिटल तकनीक के दौर से बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन उस समय इस तरीके का दृश्य बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ग्रैमी के एक विशेष सामग्री के अनुसार इस गीत का प्रसिद्ध ट्रेन से सीक्वेंस यानी नीलगिरी एक्सप्रेस पर फिल्माया गया, और इससे उस तरह के डिजिटल प्रभावों का सहारा नहीं लिया गया था, लेकिन आज ये बात आम हो चुका है। और जब गीत शुरू हुआ, तब ढोल, ताल, आवाज़ और ट्रेन की गति, सब कुछ एक साथ मिल जाता है। यही वो जगह है जहाँ रहमान का संगीत सिर्फ गीत ही नहीं, वो दृश्य का हिस्सा बन गया। और साथ ही साथ फिर आपको बताएं कि जब हम बात करते हैं फिल्म दिल से की, तो गीत दिल से, फिल्म से, ये

वाकई में ये गीत ये संगीत सिर्फ और सिर्फ रहमान के ही एक्सपेरिमेंट से बन सकता है। उन्होंने अपने संगीत में इतना एक्सपेरिमेंट किया कि संगीत का अलग ही रूप लोगों ने देखा। रहमान जब रोज़ा में हिट हुए तब फिल्म उनकी आई बॉम्बे। रोचक किस्सा अक्सर चर्चा में आता है, यह फिल्म मणिरत्नम और एआर रहमान की शुरुआती महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक है। इस फिल्म के एक लोकप्रिय गीत हम्मा हम्मा ने इसकी धुन से लेकर काफ़ी इंतज़ार हो रहा था और उसका धुन मिल नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में निर्देशक को लगा कि शायद अब उन्हें कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा, लेकिन रहमान के पास उस समय गीत की तैयार धुन नहीं थे। इस वजह से उन्होंने फिल्म के लिए एक अलग ही थीम सुझाई। वो थीम इतना प्रभावशाली था कि माहौल ही बदल गया। इस प्रसंग को सिनेमेटोग्राफर राजीव मेनन के बाद याद किया जाएगा। कहा जाता है कि मणिरत्नम उस समय संगीत से इतने प्रभावित हुए कि उनका गुस्सा भावुकता में बदल गया। अब तो बात करते हैं 1958 की दिल से, जो अभी हमने सुना छैया छैया, और फिर आगे बढ़ते हैं और जाने कि ग्रैमी के एक विशेष सामग्री के अनुसार इस गीत का प्रसिद्ध ट्रेन सीक्वेंस नीलगिरी एक्सप्रेस इस पर फिल्माया गया, और उस वक्त इस ट्रेन को देखने के लिए भी भीड़ उमड़ आती थी। ताल ने जो लोकप्रिय हिंदी फिल्म संगीत के आधुनिक ध्वनि, भारतीय लय और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के मेल को एक नया अंदाज दिया है। इस फिल्म के गीत ने युवाओं के बीच खास जगह बनाई, और रहमान की खासियत यही थी। वो एक ही संगीतकार होकर भी हर फिल्म के लिए अलग दुनिया बना देते थे। एक फिल्म में पहाड़ों का संगीत, दूसरी में शहर की धड़कन, तीसरी में प्रेम, चौथे में आध्यात्मिकता और पांचवी में उत्सव। यही हुनर था एआर रहमान का। अब बात उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा में क्रिकेट इतिहास और संगीत को एक साथ लिया। वो फिल्म थी लगान, और लगान की भी तरक्की से एआर रहमान को बहुत दूर बहुत आगे ले गया। लेकिन वो समय आया जब दुनिया ने सुना जय हो। ये वो पड़ाव जिसने एआर रहमान की वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई उसको दी। स्लम डॉग मिलियनेयर का ये गीत, निर्देशक थे डैनी बॉयल, फिल्म में मुंबई की पृष्ठभूमि पे थी, और संगीत था एआर रहमान का। 2009 के एकेडमी अवार्ड्स में 8 पुरस्कार जीते। एआर रहमान ने ओरिजिनली स्कोर के लिए ऑस्कर जीता, और जय हो ने ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर भी जीता, और इसके बाद आया ग्रैमी। रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ग्रैमी जीता और जय हो को भी ग्रैमी सम्मान मिला। ये सिर्फ एक संगीतकार की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, ये भारतीय फिल्म के संगीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण क्षण था। दोस्तों, जय हो की खासियत ये थी कि इसमें भारतीय संगीत की ऊर्जा के साथ अंतर्राष्ट्रीय पॉप संवेदना के साथ मेल सुनाई देती थी। अब एआर रहमान की उपलब्धियों को अगर हम गिनवाते रहें तो ये पूरी रात कम पड़ जाएगी। तो अब कार्यक्रम समेटने का वक्त आ गया है। इनकी फिल्म जो सबसे ज़्यादा हिट हुई, बॉम्बे, दिल से, लगान, रॉकस्टार, स्वदेश, कई सारी, और स्लम डॉग मिलियनेयर हम लोगों ने भी सुना। तो इनके बारे में बात करते जा रहे हैं, कार्यक्रम खत्म होने का नहीं हो पाया।

आएगा, लेकिन आपको ये बताएं कि एक छोटे से इस अंतराल में हमने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है और आपको बताने की कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एआर रहमान का सफ़र इसी बदलाव की एक खूबसूरत कहानी है। सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मैं पूजा भारती आपसे लेती हूँ विदा। इजाज़त दीजिए मुझे, अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए कलाकार के साथ और संगीत से जुड़ी कुछ ऐसी ही यादों के साथ। फिलहाल नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। इसके अंतर्गत आज आपने सुना और जाना एआर रहमान के बारे में। आप सुन रहे हैं एआईआर लाइव न्यूज 24x7। 1 बजने को है। अब सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश विश्व के कई हिस्सों में व्याप्त युद्ध और संघर्ष के माहौल में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों का वैश्विक समुदाय व्यापक रूप से सम्मान करता है। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ अक्टूबर से दिसंबर 2026 के लिए निजी कॉरपोरेट क्षेत्र कैपेक्स निवेश आशय कैपेक्स 2026 पर भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण कर रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि यह सर्वेक्षण विशाल निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियोजित और क्रियान्वित पूंजी पर व्यय पर व्यापक और समयबद्ध जानकारी प्रदान करेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के कई सुधार शुरू किए हैं। परिचालन दक्षता और कामकाज सुगमता को बढ़ाने के उपायों की जानकारी देते हुए नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि व्यापक बदलाव का उद्देश्य कामकाज डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उच्चतम सुरक्षा मानक के साथ उत्तरदायी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए विशेष टीम का गठन करने का निर्देश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और

फिल्म महल से आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, पुराने गीत गोल्डन एरा फिल्म संगीत सुन रहे हैं हम, गीत सुनहरे। और गोल्डन एरा की बात हो रही है तो इस फिल्म को तो भूलना नामुमकिन है, उस वक्त का सबसे डराने वाला फिल्म। जी हाँ, लोग उस वक्त ऐसी फिल्में देखते नहीं थे, ये सोचते थे कि बच्चों के साथ नहीं देख सकते, परिवार के साथ नहीं। लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म में इस काम को देखा, इस फिल्म के गाने को देख सुना, और उनमें जब फिल्मों का अलग सा रूप नज़र आया, तब जाकर ये गाना भी हिट हुआ और ये फिल्म भी हिट हुई। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जो हिट हुए और वो गोल्डन एरा के गीत थे। और तो और, जब आप कहीं भी जाएं, कोई गीत गुनगुनाने को कहे, तो याद रखिए सबसे पहले याद तो आता है गोल्डन एरा के फिल्म संगीत। जी हाँ, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ।

फिल्म के इस गीत को सुरैया और श्याम की आवाज़ों ने सजाया। गीत इतना हिट हुआ कि आज भी हम उसे गुनगुनाते हैं। तो हिट गीतों का सफ़र चल रहा है एक तरीके से गोल्डन एरा फिल्म संगीत के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं वो फिल्म संगीत जो अपने ज़माने में इतना मशहूर हुआ, इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि उसके हर गीत में एक खूबसूरती लोगों को नज़र आने लगी थी। और गीतों का सफ़र है चुकी है तो आपको ये बताते हैं कि गीत में जब श्याम की आवाज़ सुरैया के साथ दी गई तो वो गीत बहुत ही सफल रहा और लोग श्याम को और काम करने के लिए मनाने लग गए।

लता मंगेशकर के स्वर ने इस गीत को और खूबसूरत बना दिया। कहते हैं गीतों में उस जमाने में जब लता मंगेशकर गीत के लिए आई तब उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लोगों की चुनौती और साथ में रिजेक्शन उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किलदायक था। फिर क्या था, एक समय ऐसा भी आया कि सारे डायरेक्टर, इन लोगों ने सारे संगीतकार गीतकार सबकी एक टेस्ट नुमा लेने लग गए, जिससे वो लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। उसमें से कोई भी गीत ऐसा नहीं था जो हिट ना हो। इस फिल्म के सारे गीत हिट थे।

वाकई में एक से एक बढ़कर खूबसूरत गीत, आवाज़ भी अलग तो भी गीत खूबसूरत। जी हाँ, अलग अलग गीतों को खूबसूरत बनाने का श्रेय जाता है गीतकार और जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद गाने के लय को, धुन को अपने जीवन में उतार रहे थे, वो सब इस गीत के लिए तारीफ के काबिल है। कहते हैं इंसानों ने अपना काम बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानी के बाद करना शुरू किया, लेकिन जब गीत संगीत का दौर शुरू हुआ तब लोगों ने मनोरंजन के साथ लगातार अनवरत काम करते चले गए। संगीत का जादू बिखेरता है उस 90s और 50s तक के दौर के बीच में। जब 50s में गीत शुरू हुआ तब उस वक्त गीतों को इतने सुनने का प्रचलन नहीं था। धीरे धीरे बदलाव आता गया और आज गीत और संगीत की दुनिया एक अलग ही और अनोखा ही रूप ले चुकी है।

जी हाँ, ख्यालों में किसी के इतना भी आया नहीं करते। और वाकई में गीतों के बोल तो देखिए, कह देते हैं ना सीधे ही कि सपनों में ना आया करो, लेकिन क्या खूबसूरत लाइन है, ख्यालों में किसी के भी इतना आके तड़ पाया ना करते। गीतों का ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस गीत को गाया था गीता दत्त ने और मुकेश ने। आगे बढ़े तो गीतों का वो दौर जहाँ महिलाओं ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि एक समय था जब पुरुष साथी ही गीतों को खूबसूरत बनाते थे, लेकिन जैसे ही वो शुरुआत हुई, महिला साथियों ने भी अपने कदम से कदम मिलाया और खूबसूरत गीत से हम लोगों को सराबोर कर दिया।

बहुत ही खूबसूरत संगीत, दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी। और वाकई में गीतों के बोल इतने खूबसूरत, तभी तो गीत भी सुंदर बन गया। लेकिन गीत गाने में जो संयम, जो ठहराव चाहिए होता है, एक संगीतकार ही उसे अपने हुनर से सही गा सकता है। हर किसी में संगीत और गीत की लय एक साथ, उसका समावेश एक साथ देखने का जब मौका मिलता है तो सुनहरे गीत का ऐसा ही सफर बनता है। और इन्हीं गीतों में से आइए सुनते हैं एक और फूल।

फिल्म संगीत का वो दौर हम लोग सुन रहे हैं जिस दौर में फिल्म संगीत सबसे आगे था, वो दौर जो रेस था, उसमें ये गीत जो सुनहरे गीत थे, जी हाँ, गोल्डन इरा के सुनहरे गीत सबसे आगे और सबसे तूफान से आगे बढ़ा, क्योंकि उन गीतों में म्यूजिक और आवाज, स्वर, उसके साथ साथ धुन, उसके साथ साथ राग, उसके साथ साथ लिरिक्स, सब कुछ अपने चरम सीमा पर खूबसूरत तरीके से निभाया जाता था। तो फिर जो भी दौड़ हो, जो भी रेस हो, गीत तो आगे बढ़ेंगे ही, और यही कारण है कि उस जमाने के गीतों को आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं, आज भी उनके घरों में उसकी अलग जगह है।

जी हाँ, ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना। फिल्म सजा, और इस गीत के बाद अगला गीत भी उसी एरा का है, जिस एरा ने हम सबको एक खूबसूरत गीत सुनने का मौका दिया।

फिल्म संगीत ना जब हम सुनते हैं तब हमारा मन करता है कि वो गीत जो हमारे कान को और सुंदर बना देता है, उसमें रस घोल देता है, उन गीतों को अनवरत हम सुनते जाएं। लेकिन वक्त की पाबंदी हर जगह होती है और यहाँ भी है। वक्त अब ख़त्म होने को है, गीत सुनहरे का ये सफ़र यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार, और आपके लिए एक गीत जिसे जरूर सुनिएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। 2 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी होगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास पर जोर देकर उपलब्धता, वहनीयता और संधारणीयता के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। श्री पुरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा और भारत ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 70 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापक व्यापार समझौते पर वार्ता आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सिद्धू ने कहा कि वार्ता का 5वां दौर सोमवार को ओटावा में शुरू होगा, जिसमें दोनों पक्ष आगामी महीनों में वार्ता को अंतिम रूप दे सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलंगाना के मेदचल मलकाजगिरी जिले के बचुपल्ली स्थित एक निर्माण स्थल पर उत्तर प्रदेश के 12 सदस्यों के एक परिवार को लगभग 1 वर्ष तक बंधुआ मजदूर बनाकर रखे जाने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने तेलंगाना के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मेदचल मलकाजगिरी के जिला मजिस्ट्रेट और साइबराबाद के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में बचाए गए सभी बाढ़ पीड़ितों की स्थिति और उनके वर्तमान ठिकाने, उनकी तत्काल सुरक्षा, आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। RBI ने कहा है कि इन संशोधनों का उद्देश्य पात्र संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी के बाद के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान 7 अक्टूबर को केपटाउन में ग्रुप ए में पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से शुरू होगा। 10 अक्टूबर को भारत जोहान्सबर्ग के वंडर्स

News Bulletin. आप जुड़े हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 2:10 और 10 सेकेंड हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत बहार, फिल्म म्यूजिक नॉन स्टॉप। जी हाँ, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का ये कार्यक्रम आपके लिए, लगातार गीत संगीत का कार्यक्रम। जी हाँ, आइए आनंद लेते हैं और सुनते हैं बेहतरीन से बेहतरीन गीत। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7 से आप जुड़े हैं। 3 बजने को है, आप सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इस अवसर पर पूरे देश में और विदेशों में स्थित दूतावासों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित होगी। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मनाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में कांग्रेस केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान रिवॉच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से आवाज से लिपि तक पूर्वोत्तर भारत में भारतीय लिपि वर्तनी के विकास के माध्यम से मातृभाषाओं का पुनरुद्धार परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत के लिए इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य पात्र संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी के बाद के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना में घायल हुए कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने जानकारी दी। प्रसार भारती से विशेष बातचीत में राजदूत मित्तल ने बताया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में कैप्टन मछार और उनके परिवार से मुलाकात की और पायलट मछार को अच्छी स्थिति में पाया। डॉक्टर मित्तल ने कहा कि कैप्टन को अच्छी चिकित्सा मिल रही है और भारतीय दूतावास संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा की संभावना जताई है। केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, अगली दो गजलें आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र साहब की आवाज में।
1: बिलाखिर भूपेंद्र, जो मशहूर प्लेबैक सिंगर भी थे और कंपोजर भी, गजल के सफर में शामिल हुए।
2: हमें

0: श्रोताओं, गजलों और गीतों के कार्यक्रम के इस के अंत में चलते चलते आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।

0: आप सुन रहे हैं एआईआर लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बजे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर सन 2026 सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे और 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर समय होगा कार्यक्रम चिंतन का और 6:45 पर आप सुन सकते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 66। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप हिंदी समाचार सुन सकते हैं और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम संगीतिका का और 7:25 पर आप सुनेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राजघाट समाधि समिति द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का गांधी समाधि राजघाट से सजीव प्रसारण। सुबह 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं और 8:45 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम गांधी चर्चा का। सुबह 9:30 पर आप सुन सकेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक और सुबह दस बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे। 10:10 पर समय होगा आपकी पसंद फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, आप समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि

0: अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मना रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों को देखते हुए विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ये व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सकें। पांचवा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें लगभग 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन के दौरान कई मुख्य सत्र, समानांतर चर्चाएं और गोलमेज बैठकें होंगी। इन बैठकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने और दीर्घकालिक निवेश के लिए घरेलू पूंजी जुटाने जैसे प्रमुख विषयों पर मुख्य चर्चा होगी। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान रीवॉच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से आवाज से लिपि तक पूर्वोत्तर भारत में भारतीय लिपि वर्तनी के विकास के माध्यम से मातृभाषाओं का पुनरुद्धार परियोजना कार्यान्वयन की शुरुआत के लिए इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। बांग्लादेश में आगामी दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हिंदू समुदाय 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की तैयारियों में जुटा है। बांग्लादेश सरकार ने इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का अवकाश घोषित किया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, proactive and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reform in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office but by public service. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's food security measures and reaffirmed its commitment to a rules-based multilateral trading system. Participating in the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, Wisconsin, Mr. Goyal said ensuring food security for all and creating greater opportunities for farmers are central to India's policy. He said food must never be used as an instrument of pressure against any country. Mr. Goyal noted that countries of the global south are among those most

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे

और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ

पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आएं। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:20। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 5:30। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।